मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 17वीं तिथि, तदनुसार 8 अगस्त सन 2026। प्रातः के 5:58 और 33 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर पर। सवेरे के 6 बजे हैं, अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और 587 PhD शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी IIT दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे। भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि UPI के माध्यम से किए जाने वाला डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बना रहेगा। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने बताया कि बैंक, फिनटेक कंपनियां, NPCI और भारतीय रिजर्व बैंक UPI को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाए रखने के लिए तकनीक, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकने और नई सुविधाओं में लगातार निवेश कर रहे हैं। भारत ने महज 3 वर्षों में 1000 किलोमीटर से अधिक सुरक्षित क्वांटम संचार स्थापित किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में 3रे भारत अंतर्राष्ट्रीय फिनटेक महोत्सव में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र, वित्तीय संस्थानों, प्रौद्योगिकी कंपनियों और स्टार्टअप्स के बीच नजदीकी सहयोग से भारत का फिनटेक क्षेत्र देश के आर्थिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण चालक बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि देश के फिनटेक क्षेत्र में विकास के अगले चरण में AI, क्वांटम प्रौद्योगिकियों, साइबर सुरक्षा, ब्लॉकचेन और विश्वसनीय डिजिटल नवाचार की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और छात्र प्रतिनिधिमंडल के बीच कल पहली औपचारिक वार्ता हुई। करीब 1.5 घंटे तक चली बैठक में छात्रों ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं के

0: निष्पक्ष जांच और भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार की मांग दोहराई। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: सरकार की ओर से चार मंत्रियों और विकास आयुक्त ने वार्ता में भाग लिया। मंत्रियों ने छात्रों की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए कहा कि वार्ता में उठाए गए सभी मुद्दों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता को सकारात्मक बताया, लेकिन स्पष्ट किया कि लिखित निर्णय और मांगों पर ठोस कार्रवाई होने तक धरना और भूख हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यदि 10 अगस्त तक संतोषजनक निर्णय नहीं लिया गया तो पूर्व निर्धारित विधानसभा घेराव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार छात्रों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और संवाद के माध्यम से समाधान निकालना चाहती है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 2 दिन के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दौरे पर रहेंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति श्री विजयपुरम स्थित सेलुलर जेल राष्ट्रीय स्मारक का दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति कल विजयपुरम के फ्लैग पॉइंट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मुंबई में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर अमित शाह महाराष्ट्र के राज्य शहरी सहकारी बैंक महासंघों और जिला संघों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमेरिका के सांसदों की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस निर्णय पर संसद निर्णय करती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका सहित कई देशों में भी विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों की मौत के मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को नुकसान पहुंचा है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टुर्क ने अशांति के दौरान हुई सभी मौतों की जल्द निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की थी। खबरों के मुताबिक ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में हुए हाल के प्रदर्शनों में करीब 50 लोगों की मौत की खबर है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और राजस्थान में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। इस बीच दिल्ली में कल रात से ही लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। सवेरे के 6:05 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। जीवन में जब सब रास्ते श्रोताओं बंद दिखाई दें, तब ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। वो हमें वो नहीं देता जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि वो देता है जो हमारे लिए सही होता है। उसकी योजनाएं हमारी सोच से कहीं बड़ी और कल्याणकारी होती है। जो इंसान सब कुछ प्रभु को सौंप देता है, वो जीवन के हर तनाव से मुक्त हो जाता है।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। ईश्वर हर इंसान के भीतर विवेक और अंतर आत्मा की आवाज बनकर रहता है। जब भी हम कोई गलत काम करते हैं तो अंदर से जो रोकने वाली आवाज होती है वही ईश्वर है।

वाहे गुरु का नाम केवल शब्दों का उच्चारण नहीं बल्कि अपनी आत्मा को उस परम पिता से जोड़ने का माध्यम। जी हाँ श्रोताओं, सतनाम वाहे गुरु का निरंतर सिमरन करने से मन के सारे विकार, डर और चिंताएं पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। पैगंबर साहब का जीवन श्रोताओं नफरत को मोहब्बत से और बुराई को अच्छाई से बदलने का एक जीवंत उदाहरण है। वो रास्ते में कांटे बिछाने वालों के लिए भी हमेशा अल्लाह से हिदायत और भलाई की ही दुआ मांगते थे।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, मीडियम वेव 314.47 मीटर पर। यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। सवेरे के 6:30 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान। गायक कलाकार हैं महेंद्र कपूर और संगीत सतीश भाटिया का।

श्री राम के चरणों में भरत की प्रीति किसी से छिपी नहीं है। फिर भी राजा जनक अपनी रानी सुनैना से भरत के गुणों का बखान करते हैं। रानी की मनोदशा भांप कर राजा जनक भी यही चाहते हैं कि भरत श्री राम के साथ वन में रहें और लक्ष्मण अयोध्या लौट जाएं, क्योंकि भरत ने स्वार्थ तथा निजी सुखों की ओर स्वप्न में भी नहीं ताका है। उधर श्री राम के मन में ये विचार आता है कि मिथिलापति जनक अयोध्यावासियों तथा माताओं को चित्रकूट में वन प्रवास के कष्ट सहते कई दिन बीत गए हैं। वो कुल गुरु वशिष्ठ से निवेदन करते हैं कि अब वे जो उचित समझें आदेश दें।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। गायक कलाकार थे महेंद्र कपूर और संगीत था सतीश भाटिया का। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है मीडियम वेव 314.47 मीटर पर। प्रस्तुत है चिंतन।
1: हमारे ग्रंथों में एक बड़ा सुंदर मंत्र इन शब्दों में मिलता है, उठो जागो और जब तक ध्येय की प्राप्ति ना हो प्रयत्न करते रहो। जीवन में सफलता की यही कुंजी है, बिना सक्रियता के कुछ नहीं हो सकता। हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें तो क्या मिलेगा? दुनिया उसी को प्यार करती है, उसी को मान देती है जो मेहनत करता है और मेहनत की कमाई करके खाता है। आदमी का काम प्यारा होता है, चाम नहीं। हिमालय की चोटी पर चढ़ने के अवसर कम ही आते हैं, लेकिन हाथ के काम को कुशलता से करने का मौका तो हर पल सामने रहता है। कुछ लोग जीवन की सफलता पैसे से आंकते हैं। जिसने अधिक कमाई कर ली उसके लिए माना जाता है कि वो जिंदगी में सफल रहा है, पर धन सफलता की असली कसौटी नहीं है। धन साधन है, जीवन का साध्य नहीं हो सकता। यदि पैसा ही सब कुछ होता तो बुद्ध, महावीर, गांधी जी आदि महापुरुष क्यों गरीबी का जीवन अपनाते? आदमी को निराशा तभी होती है जब वो आशा रखता है। जो काम वो करता है उसके फल में उसकी आसक्ति रहती है। गीता में कहा गया है, काम करो, फल की इच्छा मत रखो। मेहनत कभी अकारथ नहीं जाती। फलों के पेड़ों पर फल आते ही हैं, पर फलों पर हमारी इतनी निगाह रहती है कि पेड़ लगा

0: के आनंद को हम भूल जाते हैं। अच्छी तरह से काम करने का अपना निराला ही उल्लास होता है। कुछ लोग कहते हैं यह भी कोई जिंदगी है कि हर पल काम करते रहो। बहुत दिन जीने के लिए आराम बहुत आवश्यक है। ऐसा कहने में एक बुनियादी दोष है। हर पल काम करने का मतलब यह नहीं है कि आदमी कभी आराम ही ना करे। इसका मतलब है आदमी कर्मठ रहे, आलस्य ना करे। सच बात यह है निष्क्रिय जीवन से बढ़कर दूसरा अभिशाप नहीं है। जो लोग क्रियाशील रहते हैं वो काम करने का संतोष पाते हैं और अपनी प्रसन्नता से धरती का बोझ हल्का करते रहते हैं। इसके विपरीत जो काम से बचते हैं वो स्वयं तो परेशान होते ही हैं, समाज में भी बड़ा दूषित वायुमंडल पैदा कर देते हैं। कर्म में जीवन दूसरों पर अच्छा असर डालता है। आलसी दूसरों को आलसी बनाता है। किसी ने कहा है उठो दिन बीता जा रहा है और तुम सपने लेते हुए पड़े हो। दूसरे लोगों ने अपने कवच धारण कर लिए हैं और रणभूमि में चले गए हैं। सेना की पंक्ति में एक खाली जगह है जो तुम्हारी राह देख रही है। हर मनुष्य को अपना कार्य करना होता है। हर आदमी के लिए ऊंचाई पर स्थान है लेकिन वहां पहुंचता वही है जिसके भीतर आत्मविश्वास होता है। हाथ पैरों में ताकत होती है, निगाह में ऊंचाई होती है और हृदय में सबके लिए प्रेम और सहानुभूति का सागर उमड़ता रहता है। ऐसा व्यक्ति जानता है कि उसके ऊपर सदा निर्मल आकाश है। अगर कभी बादल घिर भी आते हैं तो वे अधिक समय तक नहीं टिकते। अपने लक्ष्य पर आंख रखकर मजबूती से बढ़ते चलना इंसान का सबसे बड़ा कर्तव्य है।
1: ये था आज का चिंतन। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। सवेरे के 6:45 हुए हैं। काव्यधारा कार्यक्रम के अंतर्गत श्रोताओं ये सुनते हैं अर्चना का काव्य पाठ।
2: चुन चुन तिनका चोंच में, चुन चुन तिनका चोंच में लाए विहग हर बार निरंतर निज प्रयास से मिले नीर आकार, निरंतर निज प्रयास से मिले नीर आकार। सावन सरस बरस रहा छाई धरा बहार तपती भू को मिल रही जैसे अमृत धार। जितना सूरज ही तपे उतना हो उजियार। जो सूरज ना तपे रहे धरा अंधियार। खारा जल बदरा लिए मीठा कर बरसाए, खारा जल बदरा लिए मीठा कर बरसाए। सज्जन कठोर वचनों को सहज बन सहजाए। मान अपमान से परे जग में रहना सीख। भिक्षा सज्जन से मिले दुर्जन मिले न भीख, दुर्जन मिले न भीख। दो फलक सरोता धरे मिलकर काटे साथ मिलजुल उद्यम करें लगे मनोरथ हाथ। और एक मुक्तक माँ के नाम। माँ की चरण पादुका से बनता हर घर वंदन। उसके चरणों की धूली से लगता है माथे चंदन। उसकी चरणों की धूली से लगता है माथे चंदन। मामे बसे सभी देवी देवता

और हो कुल रंजन माँ के आशीष से कल और आज बनता है कुंदन, और आज बनता है कुंदन। और एक और मुक्तक मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। खिल गई है फिर कुमुद जामुनी, खिल गई है फिर कुमुद जामुनी, आज मुखरित हुई है ऋतु पावनी, आज मुखरित हुई है ऋतु पावनी। खिल रहे हैं झीलों में अनगिन कमल, खिल रहे हैं झीलों में अनगिन कमल, चांद का बिंब बनी है धवल चांदनी, चांद का बिंब बनी है धवल चांदनी। खिल गई है फिर कुमुद जामनी, खिल गई है फिर कुमुद जामनी। और एक और कविता मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रही हूँ। ना

नहीं बनता पावन आकार है, नहीं बनता पावन आकार है ना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और 587 PhD शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी IIT दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे। भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि UPI के माध्यम से किए जाने वाला डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बना रहेगा। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने बताया कि बैंक, फिनटेक कंपनियां, NPCI और भारतीय रिजर्व बैंक UPI को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाए रखने के लिए तकनीक, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकने और नई सुविधाओं में लगातार निवेश कर रहे हैं। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमेरिका के सांसदों की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस पर निर्णय संसद करती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका सहित कई देशों में भी विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं। झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और छात्र प्रतिनिधिमंडल के बीच कल पहली औपचारिक वार्ता हुई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: सरकार की ओर से 4 मंत्रियों और विकास आयुक्त ने वार्ता में भाग लिया। मंत्रियों ने छात्रों की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए कहा कि वार्ता में उठाए गए सभी मुद्दों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता को सकारात्मक बताया, लेकिन स्पष्ट किया कि लिखित निर्णय और मांगों पर ठोस कार्रवाई होने तक धरना और भूख हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यदि 10 अगस्त तक संतोषजनक निर्णय नहीं लिया गया तो पूर्व निर्धारित विधानसभा घेराव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार छात्रों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और संवाद के माध्यम से समाधान निकालना चाहती है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों की मौत के मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र के उपप्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को नुकसान पहुंचा है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर ट्रुक ने अशांति के दौरान हुई सभी मौतों की जल्द, निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की थी। खबरों के मुताबिक ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में हुए हाल के प्रदर्शनों में करीब 50 लोगों की मौत हुई है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने आपसी साझेदारी के विभिन्न पहलुओं में प्रगति की समीक्षा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। श्री नेतन्याहू ने कल श्री मोदी की सोशल मीडिया पोस्ट के जवाब में ये बात कही। बृहस्पतिवार को टेलीफोन पर बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने भारत इजराइल विशेष रणनीतिक साझेदारी के क्षेत्र में प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने पश्चिम एशिया में मौजूदा स्थिति पर भी चर्चा की। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति श्री विजयपुरम स्थित सेलुलर जेल राष्ट्र स्मारक का दौरा करेंगे। वे शहीद स्तंभ पर स्वतंत्रता ज्योति पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उपराष्ट्रपति कल श्री विजयपुरम के फ्लैग पॉइंट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित

0: और जिला संघों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और राजस्थान में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, केरलम, माहे और कर्नाटक सहित पूर्वोत्तर भारत में भी तेज बारिश, गरज और बिजली गिरने की संभावना है। इधर दिल्ली में कल से ही लगातार बारिश हो रही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर धात 954 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। सवेरे के 7:05 हुए हैं। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत श्रोताओं आइए सुनते हैं जानकारी, जिसका विषय है बरसात में होने वाले रोग और सावधानियां।
2: गर्मी के मौसम के बाद वर्षा का आगमन सुहाना लगता है। मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी गर्मी के प्रकोप से राहत की सांस लेते हैं। पेड़ हरे भरे हो जाते हैं, चारों तरफ खुशहाली का वातावरण छा जाता है। लेकिन दूसरी तरफ यही वर्षा अनेक बीमारियों का कारण भी है, क्योंकि इस मौसम की आर्द्रता और तापमान जीवाणुओं और कीटाणुओं को पनपने में सहायक होते हैं। यही कारण है कि बरसात में खांसी, जुकाम, आंख आना आदि बीमारियां अधिक होती हैं। यदि इस ऋतु में खान पान पर ध्यान नहीं दिया गया तो स्वास्थ्य बिगड़ते देर नहीं लगती, क्योंकि वर्षा ऋतु में पानी गंदा होने के कारण कीटाणु अधिक होते हैं, जो तरह तरह के रोगों के उत्पादक होते हैं। गंदे पानी के कारण खाद्य पदार्थों में अम्लता बढ़ जाती है और शरीर का पित्त दूषित हो जाता है। भारी पानी और गंदगी के कारण कफ भी दूषित हो जाता है। इस प्रकार बरसात में वात, पित्त, कफ तीनों के दूषित होने के कारण रस रक्तादि धातुओं में विकार उत्पन्न होने लगता है। वर्षा ऋतु में हल्के सादे आहार पदार्थों का सेवन करना उत्तम होता है। यदि संभव हो तो वर्षा ऋतु के 4 महीने एक ही बार भोजन करना चाहिए। यदि सुबह का भोजन ना पचा हो तो दोबारा ना खाएं। इसी प्रकार यदि रात का किया भोजन भली भांति ना पचा हो और प्रातःकाल भोजन या नाश्ता किया जाए तो इससे मंदाग्नि और अधिक मंद हो जाती है। वर्षा ऋतु में पहले किया हुआ भोजन भली भांति पचने पर ही दोबारा भोजन करें। वर्षा ऋतु में वायु प्रबल और कुपित होता है। इसके शमन के लिए मधुर रसों वाले पदार्थों का विशेष रूप से सेवन करना चाहिए। जठराग्नि की रक्षा बरसात में हल्के और पुराने अन्न से होती है, इसलिए इस ऋतु में पुराना जौ, गेहूं, साठी चावल का सेवन विशेष लाभप्रद है। साठी चावल की ये विशेषता है कि इसमें स्निग्ध तत्व बहुत कम होते हैं। वर्षा में मंदाग्नि के कारण भी ये आहार आसानी से पच जाता है, लेकिन पॉलिश किए हुए चावलों का सेवन यथासंभव कम से कम करें। हाथ से कुटे चावल उनकी अपेक्षा विशेष उपयोगी होते हैं। इस ऋतु में चावल का चिवड़ा वायुनाशक होने के कारण सेवनीय है। दालों में छिलके वाली दाल, विशेषकर मूंग की दाल का सेवन उत्तम होता है। वर्षा ऋतु में भोजन बनाते समय आहार में थोड़ा सा मधु मिला देना चाहिए, क्योंकि शहद भूख बढ़ाता है। इसके अतिरिक्त अजीर्ण, थकान, वायु विकारों से भी बचाव होता है। इस ऋतु में भोजन के बाद छाछ का सेवन अत्यंत हितकारी होता है। वैज्ञानिकों का भी मानना है कि छाछ का सेवन विशेषकर वर्षा ऋतु में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, लेकिन इस ऋतु में दही खाना हानिकारक है, विशेषकर सावन भादो के महीने में। इस ऋतु में तेल और मसालों का सेवन कम से कम करें। वर्षा ऋतु में फल और सब्जी हमेशा धोकर खाएं, क्योंकि इनमें मिट्टी, कीड़े आदि मिलते हैं। सब्जियों में भिंडी, परवल, बैंगन, कुमड़ा, लौकी, तोरई, चिचिंडा, पालक आदि का सेवन करना चाहिए। इसमें सर्वश्रेष्ठ परवल है। करेले का सेवन भी लाभप्रद है, लेकिन कुवार महीने में ये नहीं खाना चाहिए। ये सब्जियां पचने में हल्की होती हैं, साथ ही वात आदि तीनों दोषों को संतुलित भी रखती हैं। इस ऋतु में पानी को उबालकर और छानकर पिए। इन दिनों पसीने के कारण त्वचा रोग, घमौरियां, खाज, खुजली तथा अन्य व्याधियां हो जाती हैं। शरीर को स्वच्छ और सूखा रखें। रसायन के रूप में वर्षा ऋतु में बराबर मात्रा में शक्कर और हरड़ चूर्ण

0: मिलाकर सेवन करना चाहिए। इस प्रकार जो लोग वर्षा ऋतु में उचित आहार विहार के नियमों का पालन करते हैं वे इस ऋतु में विकारों से बचे रहते हैं।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे, ये जानकारी विषय था बरसात में होने वाले रोग और सावधानियां। मीडियम वेव 314.47 मीटर था 954 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। सवेरे के 7:10 हुए हैं, किसान भाई सुने खेती की बातें। इस कार्यक्रम में श्रोताओं आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं ऊसर भूमि का सुधार विषय पर।
2: किसान भाइयों, खेती की बातें कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए आज हम चर्चा करेंगे ऊसर भूमि का सुधार के संदर्भ में। किसान भाई, देखिए, हम सब खेती करते हैं और वर्षों से कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों को भी ये भूमि हम सौंप कर जाएंगे, लेकिन बढ़ती जनसंख्या और खेती की कम होती जोत को देखते हुए हमें जो अब बंजर भूमि पड़ी है या ऐसी भूमि है जिस पर हमारे बुजुर्ग या बहुत पुराने समय से खेती नहीं हो रही है, तो उसको भी खेती योग्य बनाने पर अब जोर देना पड़ेगा। तो इसी क्रम में आज हम ऊसर भूमि को किस प्रकार से हम सही कर सकते हैं या किस प्रकार से उसे उपजाऊ बना सकते हैं या ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिससे हमारी भूमि और अच्छी हो सकती है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो किसान भाई, देखिए, ऊसर भूमि जो होती है या जिसे हम क्षारीय भूमि भी कहते हैं, तो उसको उपजाऊ बनाने के लिए कई सारे काम करने होते हैं, जैसे भैया खेत की मेनबंदी है, मिट्टी की जाँच के बाद जिप्सम का प्रयोग है और हरी खाद का उपयोग हम करके ऊसर भूमि को सही कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि हम इसको किन किन चरणों से होकर गुजारें कि हमारी भूमि सही हो जाए। तो देखिए, ऊसर भूमि के सुधार के प्रमुख चरणों की अगर हम चर्चा करें तो पहले मेनबंदी और समतलीकरण का कार्य करना चाहिए। भाई देखिए, जो उबड़ खाबड़ भूमि है, पहले उसे आजकल कंप्यूटर का युग है तो कंप्यूटराइज्ड जो हमारा लेवलर होता है उससे हम समतल कराएं, और जैसे ही आपकी भूमि समतल होगी तो आपकी भूमि में देखेंगे कि बहुत सारे जो कंकड़ पत्थर और जो ऐसी चीज़ें थी उनको हम निकाल के बाहर फेंक देंगे। दूसरी बात यह है कि हम खेत के चारों ओर मजबूत मेड़बंदी करें ताकि जो बारिश का पानी है या अन्य बहाव का पानी है वो भी सीधा उसमें आए और नियंत्रित हो जाए। तो खेत की मजबूत मेड़बंदी करनी आवश्यक होती है, और अच्छा रहेगा कि अगर आप जो मेड़बंदी है वो थोड़ी सी ऊँची कर दें, और उसके साथ भैया जो हमारा एक बार और थोड़ा सा उसको समतलीकरण कर दें। जब आपका खेत पूरी तरह से मेड़बंदी से मजबूत हो जाएगा और समतल हो जाएगा तो उसमें एक समान पानी भरेगा और आपकी जो भूमि है वो जो है बंजर से उपजाऊ की तरफ कदम बढ़ाएगी। साथ साथ भैया ये है कि खेत को पानी से भरकर कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए, तो उससे होता क्या है, जो हानिकारक लवण है और जो सोडियम आदि के जो तत्व होते हैं वो घुल के उससे बाहर निकल जाएंगे और आपकी जो भूमि है वो उपजाऊ होने की तरफ कदम बढ़ाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उस मिट्टी की जांच करा लें, और जांच कराने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मिट्टी में जो है जिप्सम की कमी है या नहीं, और या जो अन्य चीज़ें हैं उसमें किसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ रही है, तो उसके बाद जो है जिप्सम मिला के हम अपने खेत को जो है उपजाऊ बना सकते हैं, क्योंकि उसमें जो सोडियम की मात्रा है उसको कम करने में जो है जिप्सम बहुत ही मददगार साबित होता है। और सबसे महत्वपूर्ण अगर हम कदम की तरफ चलें तो वही सबसे महत्वपूर्ण कदम ये है कि हरी खाद उसमें बोनी पड़ेगी आपको। देखिए, हरी खाद बोने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो ज़मीन में जो जीवांश होते हैं जो उनकी कमी होती है तो उनमें बढ़ोतरी हो जाती है। अब बात याद आ रही है कि हरी खाद में हम कौन कौन सी फसलें ले सकते हैं, तो देखिए बढ़िया बात तो यह है कि आप ढेंचा बोएं, सनई बोएं, और इसके अलावा भैया जो दाल वाली फसलें हैं उसमें मूंग बो सकते हैं, लोबिया बो सकते हैं। तो इस तरह की फसलें अगर आप बोएंगे तो उसकी बढ़िया करके आप जब जुताई करेंगे, आजकल तो भैया आप समझ रहे हैं रोटावेटर चल गया है तो बढ़िया करके मिट्टी मिला देता है, तो आपकी जो हरी खाद है वो अच्छी तरह से अगर मिट्टी में मिलेगी तो आपकी भूमि उपजाऊ होती चली जाएगी। साथ साथ भैया एक काम और भी हमें किसान भाई को करना है कि गोबर की सड़ी हुई खाद जो है वो उसमें काफ़ी मात्रा में डालनी है। जब एक बार गोबर की सड़ी हुई खाद डल जाएगी और आप उसकी बढ़िया करके जुताई करके छोड़ेंगे और बढ़िया तरीके से जब आपकी खाद मिट्टी में मिल जाएगी तो आपकी भूमि निश्चित रूप से उपजाऊ हो जाएगी। तो भैया देखिए, उपजाऊ मिट्टी करने के लिए हम फसल को जब एक बार बो दी तो हो सकता है पहली बार थोड़ी सी फसल कमज़ोर हो तो फिर बदल बदल के फसल बोनी है, तो फसल चक्र अपना के धीरे धीरे आपकी जो मिट्टी है वो बहुत ही अच्छी स्थिति में आ जाएगी।

0: के उपजाऊ हो जाएगी। तो इस तरह से जो है आप अपनी जो ऊसर भूमि है उसको भैया उपजाऊ कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, हमें उम्मीद है कि हमारे किसान भाई इस तरह से अपने प्रयोग करके जो अपनी भूमि है उसको उपजाऊ बनाने में कदम बढ़ाएंगे और अपनी खेती किसानी को और मजबूत करेंगे। तो किसान भाइयों, आज तो हम अपनी खेती की बातें यहीं पर संपन्न करते हैं, कल आपको अन्य विषयों की जानकारी अवश्य देंगे। किसान भाइयों, राम राम।
1: अभी किसान भाई सुन रहे थे खेती की बातें। जानकारी का विषय था ऊसर भूमि का सुधार। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है।

श्रोताओं, आइए अब आपको जानकारी देते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में। श्रोताओं, आज रात 9:30 पर आप सुनेंगे राष्ट्रीय संस्कृति पत्रिका कार्यक्रम संस्कृति भारती। रात 10 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम और रात 8 इस सप्ताह संसद में। ये सभी कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। रात 8:20 पर आप सुनेंगे साप्ताहिक विधानमंडल समीक्षा। ये कार्यक्रम लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। एक ही फिल्म से फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम होगा श्रोताओं रात 8:30 पर। सुमन कल्याणपुर के गाए भजन हम आपको सुनवाएंगे सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत। शाम 7:32 पर, शाम 6:55 पर होगा कार्यक्रम छाया गीत। 6:50 पर श्रोता सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी और 6:05 पर कृषि जगत कार्यक्रम में श्रोताओं आज क्रम होगा लोकगीतों व रागनियों का सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो लोक मंजरी का।

0: ये वो वाणी कार्यक्रम आप सुनेंगे रोजाने की तरह शाम 5:15 पर। इस कार्यक्रम में आज क्रम होगा गीत आपके नाम, स्क्रैप बुक और मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। मेरा सपना उन्नत भारत। इस कार्यक्रम में आज शाम 5 बजे जानकारी के विषय रहेंगे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना और दुकानदारों, व्यापारियों और स्वनियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना। एक ही गीतकार कार्यक्रम के अंतर्गत दोपहर 2:30 पर आज के गीतकार होंगे गुलशन बावरा। लोक संगीत के कार्यक्रम लोकधारा में दोपहर 1:45 पर आज आप सुनेंगे सुमित्रा रावत और साथियों के गाए गढ़वाली लोकगीत। लोक संगीत के एक अन्य कार्यक्रम में सवेरे 9:25 पर धरती गाती है में आप सुनेंगे विविध कलाकारों के गाए रुहेलखंडी लोकगीत। महिला जगत कार्यक्रम का समय रहेगा 1:15 पर और 12:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम जिंदगी लाइव। श्रोताओं, ये थी कुछ कार्यक्रम संबंधी जानकारी। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। थोड़ी देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
2: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि करार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
2: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है। और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है, और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है, और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
2: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती, और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
3: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैष्णवी त्रिपाठी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में वाराणसी के 2 बुनकरों समेत 22 लोगों को प्रदान किए राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार। कहा, हथकरघा केवल आजीविका का साधन नहीं, समावेशी विकास का एक सशक्त माध्यम भी है। संसद ने पारित किया सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026। भुगतान में देरी और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाएगा ये विधेयक। मुख्यमंत्री ने अम्बेडकर नगर में 194 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, सिद्धार्थनगर से शुरू होने वाले नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का केंद्र बिंदु बनेगा अम्बेडकर नगर। और प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने अभी आगामी 5 दिनों तक और बारिश की जताई संभावना। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर कल नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में वर्ष 2025 के लिए संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए। वस्त्र मंत्रालय के इस कार्यक्रम में वाराणसी के 2 बुनकरों समेत 22 लोगों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि हथकरघा क्षेत्र केवल आजीविका का साधन ही नहीं, बल्कि समावेशी विकास का एक सशक्त माध्यम भी है। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने हथकरघा क्षेत्र से जुड़े लोगों की आय बढ़ाने के लिए कई पहल की है।
4: हमारे हदकोता सेक्टर में भारत की रूरल प्रीवियन इकोनॉमी का सबसे सुंदर और मानवीय उदाहरण बनने की संभावनाएं बलबती हुई। महत्वपूर्ण हैंडलूम क्लस्टर्स को आधुनिक प्रौद्योगिकी और सामूहिक प्रशिक्षण विधियों से जोड़ा जा रहा है। बुनकरों की आय बढ़ाने के लिए अनेक पारदर्शी उपाय सरकार ने हाथ में लिए। बुनकरों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ सीधे मिलने के रास्ते खुले हैं।
3: कार्यक्रम में वाराणसी के नसीम अंसारी को इश्कत गुलदस्ता जामदानी साड़ी बुनाई में उत्कृष्टता के लिए बुनाई श्रेणी में राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं शाह मोहम्मद अंसारी को संत कबीर हथकरघा पुरस्कार लुप्त प्राय बुनाई श्रेणी में सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस उपलब्धि के लिए इन दोनों बुनकरों को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट शिल्पकारों और बुनकरों के लिए प्रेरणा स्रोत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर कल लखनऊ में उत्कृष्ट बुनकरों को संत कबीर राज्य स्तरीय हथकरघा पुरस्कार से सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री हैंडलूम एवं पावरलूम उद्योग विकास योजना और झलकारी बाई कोरी हथकरघा एवं पावरलूम विकास योजना के लाभार्थियों को आर्थिक सहायता के चेक वितरित किए। कार्यक्रम में हथकरघा उत्पादों के विपणन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रमुख संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान भी किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हथकरघा और पावरलूम से करीब 30 लाख लोगों की आजीविका जुड़ी है। सरकार ने 40,000 से अधिक हस्तशिल्पियों को विद्युत सुविधा के रूप में 109 करोड़ रुपए का लाभ दिया है। श्री योगी ने हथकरघा उत्पादों को डिजाइन, तकनीक, पैकेजिंग और मार्केटिंग के जरिए वैश्विक बाजार से जोड़ने पर जोर दिया। उन्होंने स्वदेशी उत्पादों को उपहार में देने की अपील भी की।
5: हमारा प्रयास यही होना चाहिए, विदेश में बने हुए उत्पाद को नहीं बल्कि हमारे कारीगर और हस्तशिल्पियों के द्वारा जो उत्पाद तैयार होता है उसी को किसी को गिफ्ट के रूप में उपलब्ध करो। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, अब दीपावली हो, होली हो, ईद हो, कोई भी पर्व और त्योहार होता है, किसी के घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है तो लोग उत्तर प्रदेश के अंदर बने हुए उत्पाद को ही भेंट करते। हम लोगों ने सरकारी विभागों में जो हथकरघा से जुड़े हुए उत्पाद को खरीदने के लिए व्यवस्था बनाई है। विभाग तत्काल इस पर आगे कार्रवाई करें और इसके लिए जिस भी स्तर पर प्रयास होने चाहिए इस पर भी हमारे प्रयास आगे बढ़ने चाहिए।
3: संसद ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने कल इस विधेयक को पारित किया। एक रिपोर्ट।
6: यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR News गोरखपुर और X हैंडल AIR News _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अंबेडकर नगर में 706 करोड़ 81 लाख रुपए की लागत वाली 194 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र और प्रमाण पत्र भी बांटे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज अंबेडकर नगर विकास के मॉडल के रूप में खुद को स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अंबेडकर नगर को एक्सप्रेसवे से जोड़कर जिले में विकास को गति दी है। सिद्धार्थनगर से शुरू होने वाले नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का केंद्र बिंदु भी अंबेडकर नगर को बनाया जा रहा है।
7: नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में भी हम लोग सिद्धार्थ नगर के बांसी से होते हुए, बसी होते हुए और प्रयागराज को जोड़ने और चित्रकूट से लेकर के फिर हम सुदूर दक्षिण भारत तक उस मार्ग को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उसका केंद्र बिंदु भी हमारा अंबेडकर नगर जनपद बनने जा रहा है। अंबेडकर नगर जनपद से ही उसको प्रयागराज तक जाएंगे।
3: नशा मुक्त भारत अभियान को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कल प्रदेश के सभी राजकीय विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों और परीक्षा नियंत्रकों के साथ बैठक की। इस दौरान उच्च शिक्षण संस्थानों में नशा मुक्ति अभियान को प्रभावी और सतत बनाने के लिए कार्य योजना बनाई गई। एक रिपोर्ट।
8: बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश के सभी राजकीय और निजी विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में प्रतिदिन विद्यार्थियों को नशा मुक्ति शपथ दिलाई जाएगी। साथ ही रन फॉर नशा मुक्ति, मैराथन, नुक्कड़ नाटक जैसी जन जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। अभियान की प्रभावी निगरानी के लिए पूरे प्रदेश को 5 जोन में विभाजित किया गया है। प्रत्येक जोन के लिए विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया जाएगा। सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के 500 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों की बिक्री पर सख्ती से रोक सुनिश्चित की जाएगी। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
3: बैठक में ये भी तय हुआ कि सभी राजकीय और निजी विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के छात्रावास, कैंटीन और पूरे परिसर का नियमित निरीक्षण किया जाएगा। ऑनलाइन डिलीवरी और कुरियर से आने वाली सामग्री की प्रवेश द्वार पर ही जांच होगी। ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी अन्य माध्यमों से कोई नशीला पदार्थ परिसर में ना पहुंचे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने राज्यों के मुख्य सचिव

बारिश के चलते वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, मिर्जापुर, प्रयागराज, जौनपुर और आजमगढ़ में गंगा और उसकी सहायक नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। वाराणसी में गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन और आपदा प्रबंधन एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। बढ़ते जलस्तर के कारण अस्सी घाट पर होने वाली आरती के स्थान को 10 फीट ऊपर कर दिया गया है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में वाराणसी के दो बुनकरों समेत 22 लोगों को प्रदान किए राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार। कहा, हथकरघा केवल आजीविका का साधन नहीं, समावेशी विकास का एक सशक्त माध्यम भी है। संसद ने पारित किया सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026। भुगतान में देरी और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाएगा ये विधेयक। मुख्यमंत्री ने अम्बेडकर नगर में 194 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, सिद्धार्थनगर से शुरू होने वाले नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का केंद्र बिंदु बनेगा अम्बेडकर नगर। और प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने अभी आगामी 5 दिनों तक और बारिश की जताई संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। धन्यवाद।

0: छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: मीडियम वे 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत कार्यक्रम सूरज के साथ साथ।

0: साथ साथ।
1: नमस्कार श्रोताओं, स्वागत आप सभी का कार्यक्रम सूरज के साथ साथ में। और आज के इस अंक में मैं हूं आपके साथ धर्मेंद्र। श्रोताओं, आपसे बातें होंगी अलग अलग विषयों पर, साथ ही होगा आपका मनोरंजन और जानकारी। तो सबसे पहले श्रोताओं, बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की। भारत छोड़ो आंदोलन की बात इसलिए श्रोताओं की आज है उसकी वर्षगांठ 8 अगस्त। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत श्रोताओं 8 अगस्त सन 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुई थी। इस वर्ष यानी कि आज 8 अगस्त 2026 को इस ऐतिहासिक जन आंदोलन की 84 वर्षगांठ मनाई जाएगी। इसे हम अगस्त क्रांति दिवस के रूप में भी जानते हैं। इसी तारीख को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में ये प्रस्ताव पास हुआ था। महात्मा गांधी जी ने इसी ऐतिहासिक अवसर पर देशवासियों को करो या मरो का ओजस्वी मंत्र दिया था। आंदोलन के ऐलान के ठीक अगले दिन यानी 9 अगस्त सन 1942 की सुबह ही गांधी जी सहित देश के तमाम बड़े नेताओं को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। शीर्ष नेतृत्व के जेल जाने के बाद भी ये आंदोलन देश भर में स्वतः स्फूर्त और एक जन आंदोलन के रूप में फैल गया, जिसने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी थी। विश्व युद्ध में इंग्लैंड को बुरी तरह फंसता देख नेताजी आजाद हिंद फौज को दिल्ली चलो का नारा दिया। वहीं गांधी जी ने मौके की

0: का देख 8 अगस्त सन 1942 की रात में ही मुंबई में अंग्रेजों को भारत छोड़ो और भारतीयों को करो या मरो का आदेश जारी कर दिया और सरकारी सुरक्षा में यरवदा यानी पुणे स्थित आगा खान पैलेस चले गए। 9 अगस्त 1942 के दिन की अगर बात करें श्रोताओं, तो इस आंदोलन को लाल बहादुर शास्त्री सरीखे एक व्यक्ति ने ही इसे प्रचंड रूप दे दिया। 19 अगस्त सन 1942 को शास्त्री जी गिरफ्तार हो गए। पूरे देश में 9 अगस्त को काकोरी कांड स्मृति दिवस मनाने की परंपरा भगत सिंह ने प्रारंभ कर दी थी और इसी दिन बहुत बड़ी संख्या में नौजवान एकत्र होते थे। गांधी जी ने एक सोची समझी रणनीति के तहत ही 9 अगस्त 1942 का दिन चुना था। 9 अगस्त 1942 को दिन निकलने से पहले ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सभी सदस्य गिरफ्तार हो चुके थे और कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था जिसमें लाखों आम हिंदुस्तानी शामिल थे। इस आंदोलन ने युवाओं को बड़ी संख्या में अपनी ओर आकर्षित किया था।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
0: 800 अब बात अंतर्राष्ट्रीय बिल्ली दिवस यानी कैट डे। तो श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय बिल्ली दिवस हर साल 8 अगस्त को मनाया जाता है और ये दिन मनाने का एक खास और आनंदमय अवसर है जिसका मुख्य उद्देश्य श्रोताओं हमारे समाज और घरों में बिल्लियों के महत्व को रेखांकित करना और उसके संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। इस दिवस की शुरुआत श्रोताओं साल 2002 में इंटरनेशनल फंड फॉर एनिमल वेलफेयर द्वारा की गई थी ताकि दुनिया भर में भटकती, बेघर और सहारा ढूंढती बिल्लियों की मदद की जा सके और उनके साथ होने वाले दुर्व्यवहार को रोका जा सके। बिल्लियां न केवल श्रोताओं हमारे घरों को अपनी मासूम और चुलबुली हरकतों से खुशियों से भर देती है बल्कि ये इंसानी मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी एक बेहतरीन सहारा साबित होती है क्योंकि उनके साथ तनाव और अकेलेपन को दूर करने में बेहद मददगार होता है। बिल्लियां सदियों से मानव इतिहास का हिस्सा रही हैं। जैसे प्राचीन मिस्र में तो उन्हें देवी के रूप में पूजा जाता था और उनकी रक्षा के लिए कड़े कानून होते थे। आज के आधुनिक दौर में जब हम इस विशेष दिन को मनाते हैं तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है श्रोताओं कि हम न केवल अपने घरों में पाली गई बिल्लियों का ध्यान रखें बल्कि अपने आसपास की आवारा बिल्लियों के प्रति भी दया भाव रखकर उन्हें भोजन, पानी और सुरक्षित वातावरण प्रदान करें। बहुत से पशु प्रेमी और संस्थाएं इस दिन विशेष रूप से एडॉप्शन ड्राइव चलाती हैं जहां लोग बेघर बिल्लियों को गोद लेकर उन्हें एक नया जीवन देते हैं जो कि इस दिवस को मनाने का सबसे सार्थक तरीका है। इसके साथ ही बिल्लियों के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना, उनका समय पर टीकाकरण करवाना और उनके व्यवहार को समझना भी जरूरी है क्योंकि एक शांत और खुशहाल बिल्ली ही एक बेहतर साथी बन सकती है।

और श्रोताओं, अब बात करते हैं मौसम की, क्योंकि देखिए श्रोताओं, बरसात का मौसम चल रहा है और बरसात में इधर उधर जल भराव होता है जिसमें मच्छर पैदा होते हैं और अनेक

0: संक्रामक रोग होने की संभावना रहती है। जी हाँ श्रोताओं, और उस सभी का एक ही उपाय है स्वस्थता। तो हम बात करें श्रोताओं कि रोग अनेक लेकिन बचने का उपाय केवल एक, स्वच्छता। जी हाँ श्रोताओं, स्वच्छता से ही हम इन सभी संक्रामक रोगों को रोक सकते हैं। जी हाँ श्रोताओं, बीमारी से अच्छी रोकथाम। और ये मूल मंत्र हमें डेंगू मलेरिया जैसे अनेक जानलेवा संक्रामक रोगों से बचाने में सबसे अचूक और शक्तिशाली हथियार हो। क्योंकि श्रोताओं, चिकित्सा विज्ञान की कितनी भी तरक्की कर ले पर रोकथाम हमेशा इलाज से बेहतर होती है। मलेरिया और डेंगू दोनों ही घातक संक्रामक रोग हैं जो मच्छरों के काटने से फैलते हैं। जहां मलेरिया श्रोताओं एनाफिलीज मादा मच्छर के काटने से होता है और इसके परजीवी हमारे लीवर और लाल रक्त कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं, वहीं डेंगू एडीज मच्छर के काटने से फैलने वाला एक वायरल बुखार है। इसमें मरीज को असहनीय बदन दर्द, तेज बुखार और प्लेटलेट्स की भारी कमी का सामना करना पड़ता है। इन दोनों बीमारियों की सबसे बड़ी विडंबना यह है श्रोताओं कि इनके फैलने का मुख्य कारण कोई बाहरी नहीं बल्कि हमारे आसपास पसरी गंदगी और हमारी लापरवाही है। क्योंकि एडीज मच्छर साफ और ठहरे हुए पानी में पनपता है जो हमारे घरों के कूलरों, पुराने टायरों, गमलों के नीचे रखी जो प्लेटें होती हैं उनमें और छतों पर जमा कबाड़ में होता है। जबकि मलेरिया का मच्छर नालियों और गंदे गड्ढों में रुके हुए पानी में अंडे देता है। इसलिए जब तक हम व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर स्वच्छता को अपनी जीवन शैली का हिस्सा नहीं बनाएंगे तब तक हम इन बीमारियों का चक्रव्यूह तोड़ना हमारे लिए असंभव है। जी हाँ श्रोताओं, स्वच्छता का तात्पर्य अगर हम बात करें तो केवल सुबह घर में साफ सफाई करना ही नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि हर हफ्ते घर के कूलरों का पानी बदलें, पानी की टंकियों को कसकर बंद रखें, आसपास जल जमाव ना होने दें, यदि कहीं जल जमा होता भी है तो उसमें केरोसिन या कीटनाशक का छिड़काव कर दें ताकि मच्छरों को लार्वा वहां अगर है तो वो नष्ट हो जाए। इसके अलावा खुद को मच्छरों से बचाने के लिए पूरी आस्तीन के कपड़े पहने, सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें और साथ ही खिड़कियों व दरवाजों पर जाली लगवाएं। ये बेहद सुरक्षित कदम है। श्रोताओं, सरकार तो सफाई का ध्यान रखती है लेकिन हमें खुद भी ये जिम्मेदारी उठानी होगी, तभी हम एक स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं। हमें ये संकल्प लेना होगा कि डेंगू और मलेरिया जैसी अनगिनत बीमारियों की जड़ हमारे पर्यावरण में अशुद्धि है और यदि केवल स्वच्छता के एक साधारण लेकिन सबसे प्रभावी नियम का पूरी निष्ठा से अगर हम पालन करें तो हमें न केवल इन मच्छरों के आतंक को कम कर सकते हैं बल्कि देश के करोड़ों लोगों के कीमती जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा करके एक समृद्ध, निरोगी और खुशहाल समाज की मजबूत नींव रख सकते हैं।
1: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं
2: तो इंतजार किस बात का,
1: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें,
1: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
2: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
1: और हमारा ईमेल आईडी है
2: akashwaninajibabad@gmail.com।
1: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
2: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
0: स्वागत आप सभी का कार्यक्रम सूरज के साथ साथ में एक बार फिर से। और श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और बताते हैं आपको आज 8 अगस्त के दिन घटी कुछ घटनाओं के विषय में। देखिए श्रोताओं, यूं तो हर रोज कुछ ना कुछ खास होता है लेकिन आज 8 अगस्त के दिन क्या कुछ खास हुआ था उस पर एक नजर डालते हैं। तो हम आपको बता दें श्रोताओं कि 8 अगस्त 1864 में जिनेवा में रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी। एटी मार्शल ने 8 अगस्त सन 1899 में रेफ्रिजरेटर का पेटेंट करवाया था। 8 अगस्त

अगस्त 1947 को ही पाकिस्तान ने अपने राष्ट्रीय ध्वज की मंजूरी दी थी। तेजस्विनी सावंत 8 अगस्त 2010 को म्यूनिख में आयोजित विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता में 50 मीटर की स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर पहली भारतीय महिला बनी थी। और 8 अगस्त 1786 में आज ही के दिन श्रोताओं, अमेरिकी कांग्रेस ने अमेरिकी डॉलर को देश की आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने का निर्णय लिया था। इसी फैसले ने अमेरिका की आधुनिक मौद्रिक व्यवस्था की नींव रखी और डॉलर वैश्विक अर्थव्यवस्था की प्रमुख मुद्रा बना। इसका प्रभाव आज भी हमें देखने को मिलता है। और श्रोताओं, अब बात करते हैं उन महान व्यक्तियों की जिनका आज जन्म है। तो श्रोताओं, हम बता दें कि 8 अगस्त 1908 में शास्त्रीय संगीत गायिका सिद्धेश्वरी देवी का जन्म हुआ था। 8 अगस्त 1921 में भारतीय चिकित्सा वैज्ञानिक बुलिमिरी रामलिंग स्वामी का जन्म हुआ था। तो वहीं दूसरी तरफ बात अगर खेल जगत की करें तो श्रोताओं, 8 अगस्त 1940 में जन्म हुआ था भारतीय क्रिकेटर दिलीप सरदेसाई का। 12वीं व 13वीं लोकसभा सदस्य प्रसन्न आचार्य का जन्म भी 8 अगस्त 1949 में हुआ था। और श्रोताओं, हम आपको बताएं कि भारतीय वायुसेना के साहसी और सम्मानित अधिकारियों में गिने जाने वाले विंग कमांडर जगमोहन नाथ का जन्म 8 अगस्त सन 1930 में जयपुर में हुआ था। 1948 में कोयम्बटूर स्थित एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज से ट्रेनिंग के बाद सन 1950 में भारतीय वायुसेना में कमीशन प्राप्त किया। उन्होंने सन 1962, 1965 और 1971 के युद्धों में असाधारण वीरता का परिचय दिया। 1965 व 1971 के भारत पाकिस्तान युद्धों के दौरान उन्होंने दुश्मन के इलाके में कई अभियान सफलतापूर्वक पूरे किए। उनकी सटीक खुफिया जानकारी ने सेना की रणनीति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो 2 बार महावीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने थे। और अब बात उस महान व्यक्ति की जो आज के दिन इस दुनिया को अलविदा कह गए। तो श्रोताओं, उनमें हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1968 से 1969 तक अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा। इनका निधन 8 अगस्त सन 2000 में हुआ था। तो श्रोताओं, ये तो थी बात 8 अगस्त के दिन घटी कुछ घटनाओं के बारे में। और अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आपको बताएंगे आज के अखबारों में प्रकाशित सुर्खियों के विषय में।

तो श्रोताओं, ये पहली खबर हमने ली है दैनिक हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान लिखता है कि सीएम योगी के नेतृत्व में दुग्ध उत्पादन में बना यूपी नंबर वन। नंदनी कृषक समृद्धि और मिनी नंदनी योजनाएं बनी ग्रामीण क्षेत्रों में आय का मजबूत जरिया। 38.8 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन के साथ देश में दुग्ध उत्पादन में सबसे आगे उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन में प्रदेश की 16% हिस्सेदारी। संवर रही यूपी की ग्रामीण अर्थव्यवस्था। ये खबर श्रोताओं दैनिक जागरण से। तो दैनिक जागरण लिखता है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। जी हां श्रोताओं, इन पंक्तियों को उत्तराखंड के अल्मोड़ा निवासी युवा नवाचारी रवि टमटा ने सच साबित कर दिखाया। बचपन में आसमान में उड़ने का सपना देखने वाले रवि टमटा ने 20 वर्ष की उम्र में अपने गांव में हेलीकॉप्टर बनाने का सपना देखा था, लेकिन तब उनका सपना अधूरा रह गया। लेकिन 12 वर्ष बाद उन्होंने सिंगल सीटर फ्लाइंग कार तैयार कर अपनी वर्षों की मेहनत को उड़ान दे दी। शुक्रवार को इस हेलीकॉप्टर का सफल परीक्षण किया गया। श्रोताओं, खबर अमर उजाला से। अमर उजाला लिखता है कि बुनाई के हुनर ने कफील को दिलाई पहचान। प्रदेश में पहले स्थान पर रहे राजा का ताजपुर के कफील को सीएम योगी ने किया सम्मानित। श्रोताओं, बिजनौर में बुनाई के हुनर से पहचान बनाने वाले राजा का ताजपुर निवासी कफील को प्रदेश में पहला स्थान मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर हथकरघा द्वारा निर्मित बेडशीट की उत्कृष्ट बुनाई के लिए उन्हें सम्मानित किया।

और अब कुछ खबरें श्रोताओं खेल जगत से। तो हम आपको बताएं कि अमर उजाला लिखता है, 9 सिखियों के सामने भी हुए फेल। अभ्यास मैच में भारत की टेस्ट स्तरीय गेंदबाजी SLC 11 को ऑल आउट नहीं कर सकी। 28 साल में पहली बार भारतीय एम्पायर के बिना होगा विश्व कप। जी हां श्रोताओं, नीदरलैंड और बेल्जियम की संयुक्त मेजबानी में 15 अगस्त से होने वाले FIH हॉकी विश्व कप में इस बार कोई भी भारतीय अंपायर या तकनीकी अधिकारी मौजूद नहीं होगा। करीब 3 दशक में यह पहला मौका है जब हॉकी का यह सर्वोच्च टूर्नामेंट भारतीय अंपायरों के बिना आयोजित होगा। 11 की उम्र में फिडे मास्टर बनी श्रवणिका। जी हां श्रोताओं, तमिलनाडु की 11 साल की चेस मास्टर AS श्रवणिका ने 11 साल 4 महीने की उम्र में महिला फिडे मास्टर खिताब पा लिया। वो लाइव क्लासिकल रेटिंग को भी 2200 के पार पहुंचाने वाली देश की सबसे कम उम्र की चेस मास्टर बन गई। और एक खबर यह भी श्रोताओं अमर उजाला से ही है, प्रज्ञा नंदा ने एक राउंड रहते जीता सेंट लुइस चेस खिताब। जी हाँ श्रोताओं, भारतीय ग्रैंड मास्टर एग प्रज्ञानंदा ने सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्ज खिताब जीत लिया। पहली बार यहां जीते प्रज्ञानंदा ने बाकी प्रतिभागियों को इतने पीछे छोड़ दिया कि उन्हें एक राउंड शेष रहते ही विजेता घोषित कर दिया। तो श्रोताओं, ये तो थी कुछ खबरें आज के समाचार पत्रों से। और अब ये गीत।

0: साथ साथ।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सूरज के साथ साथ, ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। सवेरे के 8 बजे हैं, अब आप समाचार सुनेंगे।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य
3: घर। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में मेधावी छात्रों को संस्थान का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करेंगे। भारतीय भुगतान परिषद ने स्पष्ट किया, उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों के लिए यूपीआई लेन देन निःशुल्क रहेगा। भारत ने प्रस्तावित एफसीआरए विधेयक पर एक अमरीकी सांसद की आपत्तियों को खारिज किया, विधेयक को देश का आंतरिक मामला बताया। झारखंड सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से पहली औपचारिक बातचीत की। रूस से तेल खरीदने वाले 5 देशों पर 100% शुल्क लगाने का विधेयक अमेरिका के सेनेट में पारित, और पूर्वी राजस्थान तथा ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। वे 3000 से अधिक विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे, जिनमें स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र छात्राओं के साथ 587 पीएचडी शोधार्थी शामिल हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह के दौरान संस्थान के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान जैसे प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल, डायरेक्टर्स गोल्ड मेडल, शंकर दयाल शर्मा गोल्ड मेडल और परफेक्ट 10 गोल्ड मेडल मेधावी छात्रों को प्रदान करेंगे। इसके अलावा श्री मोदी परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे, जो आईआईटी दिल्ली के सोनीपत कैंपस में स्थापित एआई संचालित हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग सुविधा है। यह आधुनिक सुविधा एआई, डेटा साइंस, एडवांस कंप्यूटिंग और अंतर विषयक शोध के क्षेत्रों में संस्थान की क्षमताओं को मजबूत करेगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि आईआईटी दिल्ली ने हमेशा अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। श्री मोदी ने कहा कि वह इस अग्रणी संस्थान के छात्रों और शिक्षकों के बीच जाने के लिए उत्सुक हैं। श्री वांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
4: कल नई दिल्ली में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में आईआईटी दिल्ली के निदेशक रंजन बैनर्जी ने बताया कि प्रधानमंत्री संस्थान का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करेंगे। श्री रंजन बैनर्जी ने नई सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा के बारे में भी जानकारी दी।
6: इस कॉन्वोकेशन में 3000 से अधिक ग्रेजुएट्स डिग्रीज ले लेंगे। कॉन्वोकेशन में हमारी एक नई सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा एआई बेस्ड सुपर कंप्यूटर 250 पेटाफ्लॉप्स, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स इन एन एकेडमिक एनवायरनमेंट लॉन्च्ड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर।
4: भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से किया जाने वाला डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए निःशुल्क बना रहेगा। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने स्पष्ट किया है कि व्यापारियों और भुगतान सेवा प्रदाताओं के बीच होने वाले व्यावसायिक शुल्क का भुगतान उपभोक्ताओं को नहीं करना होगा। एक रिपोर्ट।
7: यूपीआई के जरिए लेनदेन पर चार्ज लगने की खबरों ने आम उपभोक्ताओं और छोटे दुकानदारों के बीच चिंता पैदा कर दी थी। इस भ्रम को पूरी तरह दूर करते हुए पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई ने साफ किया है कि ग्राहकों के लिए यूपीआई सेवाएं पूरी तरह मुफ्त बनी रहेंगी। डिजिटल इंडिया की रफ्तार को बनाए रखने और वित्तीय समावेशन को सुरक्षित रखने के लिहाज से ये स्पष्टीकरण एक बड़ा राहत देने वाला कदम है। पीसीआई ने कहा है कि यूपीआई देश की महत्वपूर्ण डिजिटल व्यवस्था बन चुका है, जिसका इस्तेमाल करोड़ों लोग रोजाना करते हैं। बढ़ते लेनदेन को देखते हुए सुरक्षा, तकनीक और ढांचे को मजबूत बनाए रखना जरूरी है, ताकि भविष्य में भी यूपीआई उपभोक्ताओं और कारोबारियों के लिए सुचारू रूप से काम करता रहे। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
4: भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक FCRA पर एक अमरीकी सांसद की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस पर निर्णय संसद करती है। उन्होंने कहा कि अमरीका सहित कई देशों में भी विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं।
0: We have seen the comments.
8: हमने टिप्पणियां देखी हैं। ये देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस पर निर्णय संसद करती है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अमेरिका सहित कई देशों में विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं।
0: Regulate the flow of foreign funds.
4: भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा के संबंध में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत इस मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि सहायता की आवश्यकता वाले लोगों के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन संचालित की जा रही हैं।
8: पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र में हम स्थानीय नौवहन मंत्रालय और अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों पर सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के आवाजाही और व्यापार के निर्बाध संचालन की मांग दोहराते रहे हैं। हम सभी पक्षों से अपील करते हैं कि वे लोगों के बुनियादी ढांचे और नागरिकों, खासकर वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाने से बचें।
4: पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच हुए रक्षा समझौते पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत इस घटनाक्रम पर भी नजर बनाए हुए है। झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और छात्र प्रतिनिधिमंडल के बीच कल पहली औपचारिक वार्ता हुई। करीब डेढ़ घंटे तक चली बैठक में छात्रों ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार की मांग दोहराई। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
9: सरकार की ओर से चार मंत्रियों और विकास आयुक्त ने वार्ता में भाग लिया। मंत्रियों ने छात्रों की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए कहा कि वार्ता में उठाए गए सभी मुद्दों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता को सकारात्मक बताया, लेकिन स्पष्ट किया कि लिखित निर्णय और मांगों पर ठोस कार्रवाई होने तक धरना और भूख हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यदि 10 अगस्त तक संतोषजनक निर्णय नहीं लिया गया तो पूर्व निर्धारित विधानसभा घेराव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार छात्रों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और संवाद के माध्यम से समाधान निकालना चाहती है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
4: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिकी सेनेट ने रूस से तेल खरीदने वाले चीन और अन्य देशों को दंडित करने संबंधी विधेयक को पारित कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि चीन और अन्य देश रूस से पेट्रोलियम उत्पाद खरीद रहे हैं, जिससे रूस को यूक्रेन युद्ध में मदद मिल रही है। लिंडसे ग्राहम के नाम पर रखे गए इस विधेयक को समर्थन में 86 और विरोध में 11 वोट पड़े। ये विधेयक राष्ट्रपति डोनाल्ड

0: ट्रंप को रूस से तेल और गैस खरीदने वाले 5 बड़े देशों पर 100% शुल्क लगाने की अनुमति देगा। विधेयक में ईरान पर प्रतिबंध संबंधी 1996 के अधिनियम को बढ़ाकर 2031 तक करने का भी प्रावधान किया गया है। 1996 के इस अधिनियम में ईरान के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों की मौत के मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को नुकसान पहुंचा है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। एक रिपोर्ट।
1: संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टुर्क ने अशांति के दौरान हुई सभी मौतों की जल्द निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की थी। इनमें प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बल दोनों शामिल हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में चुनाव में कथित गड़बड़ियां और स्थानीय विधानसभा चुनाव में बाहरी लोगों के लिए सीटें आरक्षित किए जाने के विरोध में प्रदर्शन जारी है। खबरों के मुताबिक ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में हुए हाल के प्रदर्शन में करीब 50 लोगों की मौत हुई है। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में आज हवा के निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण ओडिशा में तेज बारिश की आशंका है। इसके चलते राज्य में व्यापक वर्षा होगी।
2: मौसम विज्ञान विभाग ने 6 जिलों के लिए ऑरेंज चेतावनी और 24 जिलों के लिए येलो चेतावनी जारी की है, जिसमें कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। ऑरेंज चेतावनी वाले जिले सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, केंदुझर और मयूरभंज है। भारी बारिश के अनुमान के देखते हुए एहतियात के तौर पर मयूरभंज में आज सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इस बीच बालेश्वर के बस्ता में जड़का नदी का जलस्तर बढ़ने से जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: केरलम से हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी जिलों में आज भी बारिश की चेतावनी दी गई है। राज्य के 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है।
3: केरलम में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। राज्य के सभी जिलों में बीते सप्ताह से ही बारिश संबंधी अलर्ट जारी किए गए हैं। कासरगोड, कुन्नूर, वायनाड, कोझिकोड, कोट्टायम, अलापुजा और पथनामथिट्टा जिले आज ऑरेंज अलर्ट पर, जबकि बाकी जिले येलो अलर्ट पर हैं। केरलम और लक्षद्वीप में आज तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्कैन एंड रजिस्टर सेवा ने 25 करोड़ ओपीडी पंजीकरण की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इस उपलब्धि से पता चलता है कि मिशन के तहत नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल सेवाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। एक रिपोर्ट।
4: अक्टूबर 2022 में शुरू होने के बाद से स्कैन एंड रजिस्टर सेवा ने मरीजों के लिए आसान QR कोड स्कैन के जरिए अस्पताल में डिजिटल रूप से पंजीकरण कराने की सुविधा देकर OPD रजिस्ट्रेशन के अनुभव का कायाकल्प कर दिया है। यह सेवा अभी देश भर के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा 756 जिलों में 30,800 स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार स्कैन एंड रजिस्टर ट्रांजेक्शन के साथ देश में सबसे आगे है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर है। सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में एम्स नई दिल्ली में सबसे ज्यादा मरीजों ने इस सेवा से पंजीकरण कराए हैं। इस उपलब्धि के बारे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार बरनवाल ने कहा कि स्कैन एंड रजिस्टर के जरिए 25 करोड़ लोगों के OPD में पंजीकरण की उपलब्धि भारत के डिजिटल स्वास्थ्य पारितंत्र में नागरिकों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। आनंद के रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चिराग झा।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: धन्यवाद कनक। आज अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी हेडलाइन बनाया है। नीट पेपर लीक को लेकर CBI द्वारा दाखिल आरोप पत्र के हवाले से दैनिक जागरण ने लिखा है, NTA के ही 3 विषय विशेषज्ञों ने किया नीट का पेपर लीक। अमर उजाला ने लिखा है, CBI का दावा, पेपर बनाते समय ही सवाल याद करते, टेलीग्राम व्हाट्सएप से बिचौलियों तक पहुंचाते, NTA के 3 विशेषज्ञ मास्टरमाइंड कई महीने पहले रची साजिश। लोकसत्य लिखता है, CBI ने दाखिल की चार्जशीट, NTA के एक्सपर्ट निकले विभीषण। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है, जिस तेजी से CBI ने इस जांच को अंजाम दिया है उसी तेजी से आगे भी कार्रवाई करने की जरूरत है। देश में जो भी पेपर लीक के मामले हाल के महीनों में सामने आए हैं उनकी

0: सीबीआई जांच करनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। दिल्ली एनसीआर में कल हुई घनघोर बारिश को जनसत्ता ने आफत की बरसात कहा है। अखबार लिखता है राजधानी में अगस्त के पहले सप्ताह में 2011 के बाद सबसे अधिक बारिश दर्ज, सड़कों पर भारी जलभराव। राजस्थान पत्रिका ने बदल रहा मानसून का पैटर्न शीर्षक से लिखा है, देश भर में अभी तक 11% कम बरसे बादल, 14 राज्यों में कम बारिश, 10 दिन में नहीं मिली राहत तो सूखे जैसे हालात। विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियमन संशोधन विधेयक पर पंजाब केसरी के शब्द हैं, संसद में अब आर पार की तैयारी, एफसीआरए पर शाह संभालेंगे मोर्चा, कांग्रेस ने जारी की व्हिप। मोदी और सुखबीर की मुलाकात से पंजाब में चुनावी हलचल तेज, जनसत्ता के पहले पन्ने पर है। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल भाजपा गठबंधन की अटकलें तेज। स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान इस बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगान के साथ गूंजेगा वंदे मातरम, राजस्थान पत्रिका में है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में मेधावी छात्रों को संस्थान का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करेंगे। यूपीआई लेन देन उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों के लिए निःशुल्क बना रहेगा, भारतीय भुगतान परिषद ने स्पष्ट किया। भारत ने प्रस्तावित एफसीआरए विधेयक पर एक अमरीकी सांसद की आपत्तियों को खारिज किया। झारखंड सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से पहली औपचारिक बातचीत की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to present IIT Delhi's highest honours to meritorious students during its convocation ceremony today. UPI transactions to remain free for consumers and small merchants, clarifies Apex Digital Payments Body PCI. India rejects objections raised by a US lawmaker on proposed FCRA bill, says legislation is country's internal matter. Jharkhand government holds first formal talks with protesting students over alleged irregularities in recruitment examinations. US Senate passes Russia sanctions bill seeking 100% tariff over five countries. And heavy to very heavy rainfall likely over East Rajasthan and Odisha today. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will address the 57th convocation ceremony of the Indian Institute of Technology, IIT Delhi, today. He will address over 3,000 graduating students, including 587 PhD scholars, who will be conferred their degrees during the ceremony. We have more from our correspondent.
3: Prime Minister Narendra Modi will present the institute's most prestigious honours, including the President's Gold Medal, Director's Gold Medal, Shankar Dayal Sharma Gold Medal and Perfect 10 Gold Medal to the meritorious students during the ceremony. Further, Mr. Modi will also inaugurate Param Pragya, an AI-powered high-performance supercomputing facility established at the Sonipat campus of IIT Delhi. The state-of-the-art facility is expected to significantly enhance the institute's capabilities in AI, data science, advanced computing and interdisciplinary research. In a social media post, the Prime Minister has said that IIT Delhi has always made a rich contribution in the fields of research and innovation. Mr. Modi said that he looks forward to being among the students and teachers of this pioneering institute. Shivang Mishra, Akashwani News, Delhi.
2: Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu has thanked Prime Minister Modi after the two leaders reviewed progress in various aspects of partnership. Mr. Netanyahu wrote in a social media post, responding to Mr. Modi's post regarding the conversation between the two leaders. During the phone call on Thursday evening, both leaders reviewed progress on various aspects of the India-Israel Special Strategic Partnership and also discussed the current situation in West Asia. Payments Council of India, PCI, has announced that UPI will continue to be free for consumers. We have a report.
4: In a statement, the PCI affirmed that every Indian can continue to make instant digital payments without any transaction charges. It also noted that small merchants will not be charged for accepting digital payments. The PCI added that banks, fintech companies, NPCI and the RBI have been investing in technology, cybersecurity, fraud prevention and innovation to maintain UPI's

0: carries a story marking a major leap in human-wildlife conflict management, with AI-driven digital sentries bringing new hope to Kerala's high-risk forest zones in repelling wild animals with 100% success rate. And with that, it's back to you, Anuja.
1: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to present IIT Delhi's highest honours to meritorious students during convocation ceremony today. UPI transactions to remain free for consumers and small merchants clarifies APEX digital payments body PCI. India rejects objections raised by a US lawmaker on proposed FCRA bill, says legislation in country's internal matter. Jharkhand government holds first formal talks with protesting students over alleged irregularities in recruitment examinations. U.S. Senate passes Russia sanctions bill seeking 100% tariff over five countries. And heavy to very heavy rainfall likely over East Rajasthan and Odisha today. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज असनाद की सालाना तकसीम की तकरीब में होनहार तलबा को आईआईटी दिल्ली के आला तरीन एजाजात से नवाजेंगे। डिजिटल पेमेंट्स के आला तरीन इदारे पीसीआई ने वजाहत की है कि यूपीआई लेन देन सारिफीन और छोटे कारोबारियों के लिए मुफ्त रहेगा। भारत ने एक अमरीकी कानून साज की तरफ से मुजवजा एफसीआरए बिल पर जाहिर किए गए एतराजात को मुस्तरद कर दिया है। भारत ने कहा है कि कानून साजी मुल्क का अंदरूनी मामला है। झारखंड सरकार ने भर्ती इम्तहानात में मुबैना बदउनवानियों पर मुजाहरे करने वाले तलबा के साथ पहली मरतबा बाकायदा बातचीत की। अमरीकी सेनेट ने रूसी बंदिशों से मुतालिक उस बिल को मंजूरी दे दी है जिसमें 5 मुल्कों पर 100% महसूल आयात करने के लिए कहा गया है। और मशरकी राजस्थान और ओडिशा में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की गई है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म जनाब नरेंद्र मोदी आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी दिल्ली के 57वें तकसीम असनाद तकरीब से खिताब करेंगे। वो 587 पीएचडी स्कॉलर समेत 3000 से ज्यादा ग्रेजुएशन करने वाले तलबा से भी खिताब करेंगे जिन्हें तकरीब के दौरान डिग्रियों से सरफराज किया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट।
3: वज़ीर-ए-आज़म जनाब नरेंद्र मोदी तकरीब के दौरान आईआईटी दिल्ली के आला तरीन एजाजात जिनमें सदर का गोल्ड मेडल, डायरेक्टर का गोल्ड मेडल, शंकर दयाल शर्मा गोल्ड मेडल और इम्तियाजी नंबरों से कामयाब होने वाले तलबा को परफेक्ट 10 गोल्ड मेडल्स अता करेंगे। इसके अलावा जनाब मोदी आईआईटी दिल्ली के सोनीपत कैंपस में कायम एआई से आरास्ता आला कारकर्दगी वाली सुपर कंप्यूटिंग सहूलत प्राम प्रज्ञा का भी इफ्तिताह करेंगे। इस जदीद तरीन सहूलत से इदारे की एआई डेटा साइंस एडवांस कंप्यूटिंग और मुख्तलिफ मजामीन पर मबनी तहकीकी सलाहियत में इजाफा होगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आईआईटी दिल्ली में हमेशा ही तहकीक और इख्तिरा के शोबों में आला ताउन दिया है। न्यू डेस्क से शिवांग मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
2: भारत की रकूम के लेन देन से मुतालिक कौंसिल पीसीआई ने ऐलान किया है कि यूपीआई सारिफीन के लिए मुफ्त ही रहेगा। कौंसिल ने एक बयान में तस्दीक की है कि हर भारतीय लेन देन पर बगैर कोई चार्जेस दिए डिजिटल वसीले से रकूम का फौरी लेन देन कर सकता है। कौंसिल ने यह भी कहा है कि अगर कोई कारोबारी डिजिटल वसीले से कोई रकम हासिल करता है तो उससे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। पीसीआई ने यह भी कहा कि बैंक, फिनटेक कंपनियां, एनपीसीआई और आरबीआई टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, घोटालों की रोकथाम और इख्तरा के मैदानों में यूपीआई की मोतबरियत को बरकरार रखने के लिए सरमाया लगा रहे हैं। पीसीआई ने वजाहत की है कि कारोबारी खिदमात पर आयद ऐसे कोई भी चार्जेस जो कारोबारियों और रकूम फराहम करने वाली कंपनियों के दरमियान महज कारोबारी इल्तिजामात हों, उनका मतलब ये नहीं है कि ये चार्जेस सारिफीन डिजिटल पेमेंट्स को इस्तेमाल करने के लिए अदा कर रहे हैं। उसने खास तौर पर कहा है कि यूपीआई एक ऐसा अहम कौमी डिजिटल बुनियादी ढांचा बन गया है जिसे बहुत से शहरी रोजमर्रा इस्तेमाल करते हैं। भारत ने एक अमरीकी कानून साज की तरफ से बैरूनी अतियात के जाब्तों में तरमीम से मुतालिक भारत के मुजवजा

0: से ओ ग्रहम का 2026 बिल रखा गया है, जिसे सेनेट ने 11 के मुकाबले 86 वोटों से मंजूरी दे दी है। इस बिल की रूह से सदर ट्रंप इंतजामिया को यह इजाजत मिल गई है कि वो उन मुल्कों से अपने यहां आने वाली अशिया पर 100% महसूल लागू कर दें जो रूसी तेल और गैस के 5 सरकर्दा बरामदकार हैं। इस बिल के साथ ही ईरान पर आयात बंदिशों के 1996 के कानून को 2031 तक तौसी हासिल हो जाएगी। इस कानून के तहत उन कंपनियों पर जुर्माना आयद है जो ईरान के तवानाई शोबे में सरमाया लगाते हैं। ऐसे मौके पर जबकि मुल्क असीमा यौम आजादी मनाने की तैयारियां कर रहा है, इस दौरान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के देही खुद के रोजगार तरबियती इदारे RSETI उधमपुर में तरबियत हासिल करने वाली 30 खवातीन और लड़कियों को हर घर तिरंगा मुहिम के तहत हाथ से कौमी परचम, तिरंगा के मौजू पर मबनी लवाजमात और सजावटी सामान तैयार करके हुब्बुल वतनी के जज्बे को फरोग दिया जा रहा है। भारतीय महकमा मौसमियात ने मशरकी राजस्थान और उड़ीसा में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे के मुताबिक लक्षद्वीप, शिमाली अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकाल में आज गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश जारी रहने का इम्कान है।
1: रियासत के सभी अजला में रेल से मुतालिक तंबी पिछले 7 दिनों से जारी है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया जाना इस बात का इशारा है कि इक्का दुक्का मकामात पर बहुत शदीद बारिश का इम्कान है। कासरगोड, कन्नूर, वायनाड, कोझिकोड, कोट्टायम, अलापोजा और पत्तनम तिट्टा जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि बकिया अजला में येलो अलर्ट नाफिज है। केरलम और लक्षद्वीप में 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का भी इम्कान है। रियासत के सभी अजला में आधी रात से औसत दर्जे की बारिश जारी है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
0: ओडिशा में खलीज बंगाल में कम दबाव का हल्का बनने का इम्कान है, जिसके बायस रियासत भर में वसी पैमाने पर बारिश हो सकती है। कई दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा होने के बायस बारिश से मुतासर इलाकों में सैलाब के अंदेशे में इजाफा हो गया है, जिसके पेश नजर मयूरभंज जिले में एहतियात के तौर पर स्कूलों को बंद कर दिया गया है। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
2: आज खलीज बंगाल पर कम दबाव का हल्का बनने के इम्कान के साथ ही ओडिशा में शदीद बारिश जारी रहने का अंदेशा है। महकमे मौसमियात ने 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 24 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान बालासोर के बस्ता इलाके में जलाका दरिया में पानी की सतह में इजाफा हो रहा है, जिसके सबब जिले में सैलाब का खतरा बढ़ गया है। हुक्काम सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं, जबकि नशेबी इलाकों में रहने वाले लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी गई है। भुवनेश्वर से प्रकाश दाश की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: बैडमिंटन में कोरिया मास्टर सुपर 300 टूर्नामेंट के खवातीन के सिंगल्स के सेमीफाइनल्स में आज सुबह आसन में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अश्मिता चालिहा का मुकाबला अपनी हमवतन खिलाड़ी रक्षिता रामराज से होगा। अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज अपने मुतालिका क्वार्टर फाइनल मैच जीतकर सेमीफाइनल्स में पहुंची हैं। अश्मिता ने जापान की आला दर्जे के आलमी नंबर 22 खिलाड़ी हेना अकेची को 20-22, 21-15, 21-19 से हराया, जबकि रक्षिता ने तीसरे सीट की अपनी हमवतन खिलाड़ी तन्वी शर्मा को 18-21, 21-19, 21-18 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। ताशकंद में जारी एशियन यूथ एंड जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत की तितली माझी ने मुल्क के लिए शानदार कारकर्दगी का आगाज करते हुए खवातीन के 45 किलोग्राम के जुमरे में चांदी का तमगा हासिल किया है। उन्होंने स्नैच में 65 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 80 किलोग्राम के साथ कुल 145 किलोग्राम वजन उठाकर यह तमगा जीता है। इसी जुमरे में परश्मिता गोगोई ने चौथा मकाम हासिल किया है। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
1: शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के अखबारात ने अलग अलग खबरों को सुर्खी बनाया है। वज़ीर-ए-आज़म आज IIT दिल्ली की 97वीं तकसीम इस्नाद तकरीब में मेहमान खुदूसी के तौर पर शिरकत करेंगे। इस खबर को रोजनामा प्रताप ने पहले सफ़े पर जगह दी है। जनाब मोदी डिग्रियां अता करने के साथ होनहार तलबा को इदारे के सबसे बावकार इजाज़ात से नवाजेंगे और खिताब भी करेंगे। रोजनामा इनकलाब ने नीट UG 2026 पेपर लीक मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट में CBI की तरफ से 94 सफहात पर मुश्तमिल चार्जशीट दाखिल किए जाने की खबर को खसूसी तौर पर शाया किया है, जिसमें CBI ने दावा किया है कि पेपर लीक की साजिश कई माह कबल रखी गई थी और माहरीन ने पेपर तैयार करने के दौरान ही सवालात याद कर लिए थे। सऊदी अरब, तुर्की

किशोर कुमार और आशा भोसले को श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे, फिल्म का नाम था सम्राट। गीत के बोल थे आनंद बख्शी के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार को श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे फिल्म बेताब में। गीत के बोल थे आनंद बख्शी के और संगीत आर डी बर्मन का था। आकाशवाणी नजीबाबाद से श्रोताओं इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गोल्डन हिट्स। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में, बोले हैं हसरत जयपुरी के, आवाजें मोहम्मद रफी और आशा भोसले की, फिल्म का नाम छोटी सी मुलाकात।
1: छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई,

कार्यक्रम गोल्डन हिट्स का अंतिम गीत श्रोता हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में, जिसे हमने लिया है फिल्म चोरी चोरी से। गीत के बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने और संगीत शंकर जयकिशन का।

फिल्म चोरी चोरी में लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम गोल्डन हिट्स अब संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 9:15 हुए हैं। जिले की हलचल हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए कन्नौज और पीलीभीत जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं कन्नौज जिले की हलचल, आलेख और स्वर है रवि द्विवेदी का।
1: कन्नौज जिले में गंगा और काली नदी के जल स्तर में लगातार बढ़त जारी है। प्रशासन ने बाढ़ की आशंका को लेकर तटवर्ती ग्रामीणों से सचेत रहने को कहा है। गंगा नदी का जल स्तर चेतावनी बिंदु के करीब पहुंच गया है। प्रशासन ने बाढ़ से निपटने के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए हैं। राजस्व कर्मी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण कर पैनी नजर बनाए हुए हैं। राजस्व आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गई फ्लोटिंग मोटर बोट का उपयोग बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी एवं खोज बचाव कार्यों के लिए किया जाएगा। कन्नौज जिले में नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना के अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में जनपद को 28 लाभार्थियों के चयन का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक इकाई की कुल लागत 2 लाख रुपए निर्धारित है, जिसमें पात्र लाभार्थियों को 80,000 रुपए अनुदान मिलेगा। कन्नौज में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत बालक बालिकाओं को पौष्टिक संतुलित एवं स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। जनपद के 1576 विद्यालयों के बालक बालिकाओं को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। कन्नौज में समाज कल्याण विभाग की एकीकृत विकास योजना के अंतर्गत जिले की 10 ग्राम पंचायतों में आधुनिक सामुदायिक केंद्र के निर्माण का काम प्रगति पर है। सामुदायिक केंद्र के निर्माण के लिए अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों को प्रमुखता दी जा रही है। योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को सामाजिक सांस्कृतिक और शादियों के लिए उचित स्थान उपलब्ध कराना है। राज्य मंत्री असीम अरुण ने बताया कि बारात घरों का निर्माण पूरा होने पर ग्रामीणों को काफी सहूलियत मिलेगी। आगे अन्य ग्राम पंचायतों में भी सामुदायिक केंद्रों का निर्माण होगा।
2: आज जरूरत है कि हर गांव में एक बरातघर या मोटी बात कहूँ तो एक सामुदायिक केंद्र होना चाहिए, जिसमें कि हर तरह के कार्यक्रम वहाँ पे हो जाएं। ये सभी वर्गों के लिए है, ग्राम पंचायत इसका संचालन करेगी। मेरा सुझाव है कि इसका एक छोटा सा शुल्क रखा जाए, जिससे कि उसका मेंटेनेंस भी होता रहे।
1: कन्नौज जिले में पशुओं का खुरपका मुंहपका जैसी अत्यंत संक्रामक बीमारी से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से FMD टीकाकरण अभियान का 8वां चरण चल रहा है। अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए ग्राम एवं वार्ड स्तर पर टीकाकरण कर्मियों की तैनाती की गई है। जनपद में कुल 28 टीमें गठित की गई हैं। अब तक करीब 20% पशुओं का टीकाकरण हो चुका है। भारत पशुधन ऐप पर पशुओं का पंजीकरण कराने की सलाह दी जा रही है। कन्नौज जिले में जल संरक्षण, भूजल संवर्धन तथा वर्षा जल संचयन को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए 16 जुलाई से 22 जुलाई तक वर्षा जल संचयन सप्ताह के अंतर्गत ग्राम पंचायत, विकासखंड एवं जनपद मुख्यालय स्तर पर गोष्ठियों एवं जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान आमजन को जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। जल संरक्षण प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। जनपद में 3 नदियां होने के बावजूद भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। वर्ष 2021 में विकासखंड छिबरामऊ का भूजल स्तर 15.19 मीटर था, जो वर्तमान में घटकर 21.06 मीटर तक पहुंच गया है। इसी प्रकार हसेरन, कन्नौज, जलालाबाद, तालग्राम एवं सोनरिक विकास खंडों में भी भूजल स्तर में निरंतर गिरावट दर्ज की जा रही है। किसानों को आधुनिक एवं वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों को अपनाने, सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों का उपयोग करने तथा कम सिंचाई वाली फसलों को उगाने की सलाह दी जा रही है। कन्नौज में वृक्षारोपण महाअभियान के तहत अमृत सरोवरों, विद्यालयों, ग्राम पंचायतों, सार्वजनिक स्थलों एवं अन्य चिन्हित क्षेत्रों में लगभग 39 लाख का रोपण किया गया है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत 20 जून से 4 जुलाई तक कन्नौज जिले में 1,700 लक्ष्य के सापेक्ष 851 आवेदन बैंकों को प्रेषित किए गए, जिनमें 217 आवेदन स्वीकृत, 221 को ऋण वितरण, 326 आवेदन अस्वीकृत तथा 321 आवेदन बैंक स्तर पर लंबित हैं। विकास अभियान की रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिल रही है। अब तक बड़ी संख्या में युवा रोजगार हासिल कर चुके हैं। कन्नौज जिले में पीएम सूर्य घर योजना के तहत जुलाई तक 2,352 सोलर रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित था, जिसके सापेक्ष 2,329 संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। इसके बावजूद पात्र परिवारों को योजना से जोड़कर लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। कन्नौज जिले में लखपति दीदी योजना के अंतर्गत अब तक 22,376 स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक की है। महिलाओं को स्वरोजगार एवं आजीविका गतिविधियों से जोड़कर उन्हें लखपति दीदी बनाने का काम प्रगति पर है।
0: कन्नौज जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं पीलीभीत जिले की हलचल, आलेख और स्वर है सतीश मिश्र का।
3: पीलीभीत में सावन के महीने में शिव मंदिरों पर पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालु सुबह से ही जुटते हैं और पूरे दिन बम बम भोले के स्वर सुनाई देते रहते हैं। शहर के गौरी शंकर मंदिर जंगल में स्थित इकोत्तरनाथ शिव मंदिर, मन कामेश्वर महादेव मंदिर, त्रेतानाथ शिव मंदिर, मोटे महादेव मंदिर, लीलाहार शिव मंदिर सहित विभिन्न शिव मंदिरों व शिवालयों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सोमवार के दिन श्रद्धा का सैलाब और अधिक बढ़ जाता है। जिले की देवहूति, देवहा, शारदा और गोमती नदी के विभिन्न घाटों से भरकर श्रद्धालु जनपद के शिव मंदिरों व छोटी काशी कहे जाने वाले लखीमपुर जिले के गोला गोकर्णनाथ मंदिर जाकर शिव जी का जलाभिषेक कर रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा कांवड़ियों की सुविधा के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। कांवड़ मार्गों व मंदिरों के आसपास पुलिस तैनात की गई है और साफ सफाई की समुचित व्यवस्था कराई गई है। श्रद्धालुओं के ठहरने व भोजन के लिए कई जगह भंडारे भी आयोजित किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह और पुलिस अधीक्षक सुकृत माधव मिश्रा मंदिरों व घाटों पर खुद जाकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री एवं पीलीभीत के सांसद जितिन प्रसाद ने पीलीभीत जिले के पूर्णपुर रेलवे स्टेशन पर ऐशबाग कासगंज एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री प्रसाद ने कहा कि इस नई ट्रेन के चल जाने से पीलीभीत का कार्य, व्यापार और पर्यटन बढ़ेगा, साथ ही पीलीभीत व आस पड़ोस के जनपद वासियों को राजधानी लखनऊ की यात्रा भी सुगम हो जाएगी। प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार के गृह जनपद पीलीभीत में गन्ने की फसल का उत्पादन बढ़ाने पर खासा जोर दिया जा रहा है। जिला गन्ना अधिकारी खुशीराम भार्गव ने कहा कि गन्ने की अधिक पैदावार लेने वाले किसानों को सम्मानित किया जाएगा।
4: समिति स्तर पर जो सबसे अच्छी खेती करने वाले किसान हैं, जिनकी पैदावार अधिक आ रही है, उनको सम्मानित किया जाएगा। इसमें पेड़ी गन्ना के सबसे अधिक पैदावार लेने वाले किसान हैं और पौधे गन्ने की सबसे अधिक पैदावार लेने वाले किसानों को इसमें सम्मिलित किया जाएगा। क्रॉप कटिंग के आधार पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी में किसानों को विभाजित किया जाएगा। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं किसान, उनको भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा।
3: पीलीभीत जिले में इस बार अच्छी बरसात हो रही है, इससे धान व गन्ने की फसल को काफी लाभ हो रहा है। पहाड़ों पर हो रही बरसात और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण पीलीभीत में शारदा और देवहा का जलस्तर भी बढ़ रहा है। कई जगह नदियां कटान भी कर रही हैं। जिला प्रशासन ने बाढ़ चौकियों को सक्रिय कर दिया है और पूरी स्थिति पर नजर रखने को कहा है। पीलीभीत जिले में वैश्विक बाघ दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। टाइगर रिजर्व प्रशासन द्वारा बाघ मित्रों को समारोह पूर्वक सम्मानित किया गया। वैश्विक बाघ दिवस के बारे में पीलीभीत टाइगर रिजर्व के प्रभागीय अधिकारी मनीष सिंह ने बताया।
5: पीलीभीत टाइगर रिजर्व आज की डेट में देश का एक अग्रणी टाइगर रिजर्व है, जहां न केवल बाघों की संख्या बढ़ी है बल्कि बाघों की संख्या बढ़ने के फलस्वरूप यहां के स्थानीय निवासियों को रोजगार भी मिला है और साथ ही साथ जो है यहां पे बाढ़ या बाकी जो चीजें होती हैं उसको भी हमें लगता है रोकने में कमी मिली है।
3: पीलीभीत जिले में वन एवं सामाजिक वानिकी विभाग द्वारा जंगल की सबसे महंगी सब्जी कटरुआ को जंगल से लाने और जिले भर में परिवहन व बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया है। प्रभागीय निदेशक भरत कुमार डीके के निर्देशन में कटरुआ बिक्री रोकने के लिए निरंतर अभियान चलाया जा रहा है और कई लोगों को कटरुआ के साथ गिरफ्तार किया गया है। पीलीभीत जिले की पुलिस को माह जुलाई की रैंकिंग में आई जीआरएस शिकायतों के निस्तारण में संपूर्ण प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इस पर आईजीआरएस पर नियुक्त पुलिस कर्मियों को अपर पुलिस अधीक्षक आईपीएस विक्रम दहिया द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। उन्होंने सभी से और अच्छा कार्य करने को कहा है।
0: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। हम अपने श्रोताओं को एक बार पुनः याद दिला दें कि आज रात 9:30 पर राष्ट्रीय संस्कृति पत्रिका कार्यक्रम संस्कृति भारती और रात 10 बजे सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:05 पर आज क्रम रहेगा लोक गीतों व रागनियों का सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो लोक मंजरी। युववाणी कार्यक्रम में शाम 5:15 पर क्रम होगा गीत आपके नाम स्क्रैप बुक और मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। दोपहर 12:05 पर श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम जिंदगी लाइव। लोकधारा कार्यक्रम में दोपहर 1:45 पर आज हम आपको सुनवाएंगे सुमित्रा रावत और साथियों के गए गढ़वाली लोकगीत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर। सवेरे के 9:25 हुए हैं। लोक संगीत के कार्यक्रम धरती गाती है में श्रोताओं आइए अब सुनते हैं विविध कलाकारों के गाए रुहेलखंडी लोकगीत।

आकाशवाणी नजीबाबाद से लोक संगीत के कार्यक्रम धरती गाती है में श्रोताओं आप सुन रहे हैं विविध कलाकारों के गाए रुहेलखंडी लोकगीत।

0: लोक संगीत के कार्यक्रम धरती गाती है में श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे विविध कलाकारों के गाए रुहेलखंडी लोकगीत। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 10 बजे हैं। श्रोताओं आइए सुनते हैं आपके फरमाइशी पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित कार्यक्रम गीत तुम्हारे। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत आप सभी का कार्यक्रम गीत तुम्हारे में। और आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ और मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित हैं
1: तो श्रोताओं अनुपम मिश्रा की ओर से आपको नमस्कार। तो धर्मेंद्र जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले क्यों ना जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है वो अपने श्रोताओं को बता दिया जाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए श्रोता सब जानते ही हैं अनुपम जी, तो लेकिन कुछ हमारे जो नए श्रोता हैं जो हमारे कार्यक्रम से जुड़ते हैं उनको व्हाट्सएप नंबर एक बार बता दीजिए।
1: जी, तो हमारा नंबर है 9457078288।
0: बिल्कुल, और इस नंबर पर श्रोताओं आप अभी सीधे हमारे स्टूडियो में व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और सुन सकते हैं अपनी पसंद का कोई गीत, और कार्यक्रम में कुछ पत्र भी हम शामिल करेंगे क्योंकि आप लोग कुछ हमारे श्रोता हैं जो पत्रों के माध्यम से भी जुड़े रहते हैं और व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से भी जुड़े रहते हैं, क्यों अनुपम?
1: जी हाँ बिल्कुल, तो हम कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं धर्मेंद्र जी एक आज का पहला मैसेज जो कि हमें मिला है नई बस्ती गंज डुंडवारा से, और भेजने वाले हमारे श्रोता हैं नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद यासीन हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी और मोहम्मद कलीम अंसारी।
0: और कार्यक्रम में ये पत्र हम शामिल करते हैं। ये पत्र हमें मिला है जेल रोड जलंधर से अमरजीत सोनम कौर, परमजीत असमा और धर्मजीत फातिमा कौर का। और ये अगला पत्र हमें मिला है,
1: ये है दतरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा।
0: ये हमारे श्रोता हैं वाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजु श्रीवास्तव, दिव्यांशु भूषण, संस्कृति पौरुष और रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और कुलदीप कमल।
1: कार्यक्रम में अपनी फरमाइश मैसेज के माध्यम से हमें लिखकर भेजी है सप्तरंग श्रोता परिवार, कुंभार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, ऋषिकेश दले और जीविका ने। साथ ही पुनावले पुणे से हैं अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका सोनवने और विशाखा सोनवने।
0: और हमारे साथ हमारे श्रोता जुड़े हैं और ये हैं

0: अब्दुल हक डावर और जिया उल हक डावर।
1: यह है फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से श्रोता हमारे, जो कि हमें मैसेज के माध्यम से अपनी फरमाइश भेज रहे हैं। नासिर शेख, नाजिया नसीर, साजिद शाहिद और साथ ही गोविंदपुरा अहमदनगर से हैं जुनैद मुजावर, सबीहा मुजावर और मिखाइल जैन, जैनब मुजावर।
0: और ये श्रोता हैं हमें हमें पत्र के माध्यम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पटियाला रोड गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, अकील कुरैशी और बेबी अरिबा हबीबा।
1: गांव पांडर कवड़ा से हैं अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, अनुश्री बुरांडे और धनश्री बुरांडे।
0: ये हमारे श्रोता जुड़े हैं हमारे साथ और ये पत्र हमें मिला है मजनू का टीला से, और भेजने वाले हैं कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक।
1: ग्राम गाधरोना, जिला हरिद्वार उत्तराखंड से हैं मदनगिरी, विमलागिरी, भारतगिरी, सोनियागिरी, बलरामगिरी, मधुगिरी, सिमरनगिरी, गोविंदगिरी, वंशिकागिरी, रमनगिरी और दिव्यगिरी।
0: कृष्णा पार्क दिल्ली से हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं सुखविंदर सिंह जोड़ा और सीटी दीवाना।
1: कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से हैं ओम प्रकाश रॉय, श्रीमती उषा रॉय, अमित कुमार रॉय और हैप्पी रॉय। दुबिहा नेवादा, जिला गाजीपुर से हमें मैसेज भेजा है प्रतीक रॉय, श्रीमती रोशनी रॉय और प्रांजल रॉय ने।
0: और अनुपम जी, हमारी सभी श्रोता सुनना चाहते हैं फिल्म सच्चा झूठा का ये गीत, जिसे आवाजें दी हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने। गीत के बोल हैं इंदिवर के और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।
2: यूं ही तुम

0: गीत के बाद स्वागत है श्रोताओं आप सभी का कार्यक्रम की तुम्हारे में। और एक बार नंबर हम श्रोताओं आपको एक बार फिर से बता देते हैं, हमारा नंबर है 9457078288 9457078288 इस नंबर पर आप अभी सीधे हमें स्टूडियो में हमारे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और सुन सकते हैं अपनी पसंद का कोई गीत। और कार्यक्रम में ये पत्र हम शामिल कर रहे हैं, ये पत्र कहाँ से मिला अनुपम जी?
1: ये पत्र है धर्मेंद्र जी राजधानी रायपुर से, नीलू मेघ नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार, बिट्टू कुमार और इनके परिवार के सभी सदस्यों का।
0: और ये अगला पत्र हमें मिला है, और ये पत्र हमें मिला है मोहल्ला हलवाईयान कस्बा शेरकोट जिला बिजनौर से, भेजने वाले मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी खान, बिट्टू, साजदा रानी और हिना कौसर।
1: कार्यक्रम में अगले गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमें लिखकर भेजी है दीदार रेडियो श्रोता संघ बिलराम गेट कासगंज से, एम असरफ सैफी, जैबुनिशा बेगम, सद्दाम सैफी, सोनी सैफी, जाहिद सैफी और आबाद खान ने।
0: और ये अगला मैसेज हमें मिला है मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से, भेजने वाले मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक सुबना और यश मंसूरी।
1: यह है डाबकी रोड अकोला से हमारे श्रोता सुशीला देवी मंडूरकर, सनानंद और कुमार गौरव मंडूरकर।
0: खैल बाजार पानीपत से हमारे श्रोता हमारे साथ मैसेज के माध्यम से जुड़ रहे हैं, और मैसेज भेजने वाले हमारे श्रोता हैं नरेश मल्होत्रा नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा और नानक चंद मल्होत्रा।
1: यह है पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से, अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत और सुलोचना भगत।
0: ये मैसेज हम पढ़ चुके हैं और श्रोताओं से अनुरोध है कि दोबारा से मैसेज ना भेजें। और ये अगला मैसेज हमें मिला है जिला मुरादाबाद गांव दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से, भेजने वाले हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह।
1: इसी के साथ कार्यक्रम में हम शामिल कर रहे हैं एक और मैसेज जो कि हमें मिला है शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से, लिखने वाले हमारे श्रोता हैं आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी।
0: विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से हमारे श्रोता हैं दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन। ये श्रोता हमारे हमें मैसेज भेज रहे हैं थाना शिवाला कला से, रविपाल राजपूत, रक्षु राजपूत, वशल राजपूत, कुहू राजपूत।
1: ये हैं बागरी मोहल्ला रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से, मनभावन नैना, सत्यनारायण, कपिल, शोभा, फुनदीबाई बागरी, साथ ही हैं हर्षिता रामेश्वर, परमेश्वर मीनाक्षी कान्हा, श्रीमती मनोहर बाई बागरी और प्रभुलाल बागरी।
0: और ये अगला मैसेज हमें श्रोताओं मिला है गांव करेली पुरानी मस्जिद बरेली से, भेजने वाले हैं लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी, भाई निशा परवीन तमन्ना और आशिक हुसैन अंसारी। रिपीट मैसेज हमें बहुत मिल रहे हैं, श्रोताओं से हम अनुरोध करते हैं कि जिन लोगों का कार्यक्रम में पत्र या मैसेज शामिल हो चुका है वो दोबारा से हमें मैसेज ना करें। और कस्बा अग्रवाल मंडी टटीरी बागपत से ये हमारे श्रोता हमें मैसेज भेज रहे हैं, और ये हमारे श्रोता हैं आसिफ अली खान और मुस्कान आसिफ।
1: इसके साथ ही हमें एक और मैसेज मिला है धर्मेंद्र जी। जय जिनेंद्र श्रोता संघ परभणी महाराष्ट्र से, और भेजने वाले हमारे श्रोता हैं रुपेश संघई।
0: और अनुपम जी इन सभी श्रोताओं की फरमाइश है कार्यक्रम में, और ये सब सुनना चाहते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में साजन का घर फिल्म का ये गीत, गीत के बोले समीर के और संगीत नदीम श्रवण का।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: आकाशवाणी नजीबाबाद से श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत तुम्हारे।
3: और धर्मेंद्र जी, कार्यक्रम को इस संदेश के बाद हम आगे बढ़ा रहे हैं।
2: बिल्कुल।
3: KH रही गुड़िया बेगम, वकील प्रेमी और हम्मा जमील जी के मैसेज के साथ, जो कि इन्होंने हमें भेजा है तहसील रोड गंज डुंडवारा से।
2: बिल्कुल। और कार्यक्रम में ये अगला मैसेज हम शामिल कर रहे हैं, और ये मैसेज हमें मिला है, भेजने वाले हमारे श्रोता हैं। कहाँ से इन्होंने भेजा है ये, इन्होंने कहीं लिखा नहीं है, मेरठ कैंट से। हाँ, ये हमारे श्रोता मेरठ कैंट से हमें मैसेज भेज रहे हैं, और भेजने वाले हैं दिग्दर्शन और कविता गौड़।
3: इसके साथ हमारे श्रोता हैं ये ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से इन्होंने हमें मैसेज भेजा है।
2: और अगला मैसेज हमें मिला है मालवा रेडियो श्रोता संघ प्रमिलागंज अलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से। भेजने वाले हैं बलवंत कुमार वर्मा, राजू भाई वर्मा, माया, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल वर्मा, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा।
3: यह है ग्राम नंगला उपवन नजीबाबाद से ठाकुर विजयपाल सिंह, जबर सिंह, जयपाल सिंह, राहुल, सचिन, सविता, नोनी, लालू, नमन, काजल, छोटी, शिवी, क्रीधा, ओम प्रकाश, बलवंत, पूनम और इनके परिवार के सभी सदस्य।
2: और कुलम रोड हरगोबिंद नगर नुआ शहर पंजाब से हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, सुरेंद्र संधु, अनीता संधु, रोहित, रितेश, शिखा, प्रीतिशा और मैक्स संधु। गांव लहोडडा जिला बागपत से हमारे श्रोता हैं जगमोहन सिंह प्रजापत, श्रीमती मुनेश देवी, अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि, जितिन जगमोहन, सुधीर नूतन और भुवनेश्वरी देवी।
3: यह है जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी और नौरीन अंसारी, साथ में है मोहम्मद कैफ अंसारी।
2: बिल्कुल। और ये अगला मैसेज हमें मिला है अनुपम जी, और ये मैसेज भेज रहे हैं हमें बटिंडा रोड मंडी डब्वाली से। भेजने वाले राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लक्की नारंग, तानिया नारंग, और लिख रहे हैं कि कोई भी गीत हमें सुनवा सकते हैं। और ये अगला मैसेज,
3: ये है जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर।
2: मरहरा दरवाजा एटा से ये हमारे श्रोता हैं हमारे साथ, नबी हसन अब्बासी, सहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम, यशफ अब्बासी और रसीद वारसी।
3: ये है बलहार शाह से सूरज लोढ़े, प्राची लोढ़े और एकलव्य लोढ़े।
2: और हमारे श्रोता बडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती खेड़ा। और ये अगला मैसेज अनुपम जी किसका है?
3: ये अगला मैसेज धर्मेंद्र जी हमें मिला है जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से, और इसे भेजने वाले हमारे श्रोता हैं मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार वोड़ाना और सुदामा नगर खंडवा से हैं लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु और मुकेश जगताप।
2: और अगला मैसेज हमें भेजा है, और अगला मैसेज भेजने वाले हमें तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, हमजा सिद्दीकी, गुलशन साहिबा, और ये हमें भेज रहे हैं जिला मुरादाबाद गांव महेशपुर खेम से।
3: और धर्मेंद्र जी, इनके मैसेज में बहुत सारे सेब, संतरे और फूलों का
2: गुलदस्ता सारा सजावट के साथ भेजा है। बिल्कुल, फूल भी हैं और फल भी हैं।
3: फल भी हैं
2: जी, बिल्कुल। और ये अगला मैसेज,

0: मैं गांव हीरा वाली फाजिल्का पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा और इनके परिवार के सभी सदस्य।
1: और ये सभी लोग सुनना चाहते हैं फिल्म गदर 2 का ये गीत। आवाज अरिजीत सिंह और मिथुन की है, गीत के बोले हैं सईद कादरी के और संगीत मिथुन
0: तो
1: का।
0: सभी श्रोताओं की पसंद पर पेश है गदर 2 का ये गीत।

0: श्रोताओं, अभी आपने गदर 2 का ये गीत सुना और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और कार्यक्रम में अगला गीत अब आप जो सुनेंगे उसके लिए फरमाइश हमें भेजी है हिंदुस्तान रेडियो मित्र बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से हमारे इन श्रोताओं ने, ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा ने।
1: और ये अगला मैसेज हमें मिला है दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू का। ये मैसेज हम कार्यक्रम में शामिल कर चुके हैं अनुपम जी, और
0: जी
1: ये अगला मैसेज देखते हैं ये किसका है।
0: ये है आर्य नगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदनी जंघेल। साथ में है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि,

0: शीलपुरी, बीकेपुरी, कैलाशपुरी, नीलमपुरी, रामापुरी, पालीपुरी, सुनील पाठक और साथ में है बीकेपुरी, विनोदपुरी।
1: ये हमारे श्रोता हैं मजनू का टीला
0: ये तो
1: से,
0: रिपीट
1: हमारे
0: है
1: ये
0: ये
1: बिल्कुल ये मैसेज रिपीट
0: जी।
1: है। और कुर्मा जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से दिलदार मेरी, ज्योति जानवी और दीक्षांत मेरी हमारे साथ जुड़े हैं। और ये अगला मैसेज है,
0: ये है गांव टोरोवाल नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांडी और तृप्ता कुमारी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम, बेबी वमिका और वाणी।
1: जलालाबाद वेस्ट से हमारे साथ हमारे श्रोता जुड़ रहे हैं, सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, प्रिया, विशाल, दिशानी और निमित आहूजा।
0: यह है शाही मार्केट सिवहारा जिला बिजनौर से आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना, अराफात चौधरी, अदीब चौधरी, कादिर चौधरी।
1: और ये हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं किशोर नगर अमरावती से, हीरामण शेंडे और सिद्धार्थ गोंडाने।
0: यह शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल, साईंराज सपकाल और विशाल सपकाल।
1: और ये सभी श्रोता सुनना चाहते हैं फिल्म गैमलर का ये गीत, आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: आकाशवाणी नजीबाबाद से श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत तुम्हारे। अगर आप भी श्रोता हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं तो आप अभी सीधे हमारे स्टूडियो में व्हाट्सएप भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 9457078288। और कार्यक्रम में ये अगला मैसेज श्रोताओं हमें भेज रहे हैं, मोहल्ला अफगान शेरकोट से नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बाकी, अदीम बाकी, अब्दुल गनी, अलमीर, मोहम्मद जैन और जन्नत।
2: इसके साथ ही हैं ग्राम जुझेला थाना सिवाला कला बिजनौर से हमारे श्रोता राशिद अंसारी, परवीन जहां, निशात, आयसा, सायना, महविश, मोहम्मद अफान और अदीना नूर।
1: अगला मैसेज है गांव और पोस्ट राहु नंगली से आचार्य सत्यवीर सिंह, अलका चौहान, भूमिका चौहान और अक्षत चौहान।
2: यह है पुराने बस स्टैंड नगर पंचायत बढ़ापुर बिजनौर से एम ताहिर और इदरीश हिलाल, जैन प्लांट देहरादून से।
1: पश्चिम सिंह भूम चाईबासा झारखंड से ये हमारे श्रोता हैं, शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश, संगीता, लिपि और दीपाली गोप।
2: यह है गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से हमारे साथ मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाजिश शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी और राधा नामदेव।
1: और हमारे साथ हमारे श्रोता हैं रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगपाल सिंह डागला, जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार।
2: यह है कवाईवारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, प्रेम लता श्रीवास्तव, हिमानी, हर्षिता और अभिषेक श्रीवास्तव।
1: ये मैसेज शामिल हुआ क्या?
2: नहीं, अभी नहीं हुआ।
1: चलिए इस कार्यक्रम में हम शामिल कर लेते हैं। और ये मैसेज हमें मिला है रेलवे रोड गंज डुंडवारा से, भेजने वाले हमारे श्रोता हैं मोहम्मद कलीम जख्मी, इंजीनियर भुवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दबीरुल हसन, नजमा बेगम नाज और सरिता गौतम।
2: यह लक्षनपुर छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति और कुंती साहू।
1: अहमदपुर खैगांव खंडवा से कैलाश फूलमाली, दीपक फूलमाली, समर फूलमाली और वेदिका फूलमाली।
2: यह ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना हिरामन, किशोर हिम्मत राव, संजय कुमार और राजेंद्र गुप्ता।
1: किशनगंज बिहार से हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव कुमार, भानु प्रिया और माधुरी किरण।
2: यह 16 नंबर वार्ड गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर से पूजा रघुवंशी, नंदनी रघुवंशी, बबीता, शोभा, कुमारी वंदना, मराठा देवी

0: वंदना मराठा, देविका, लड्डू चौधरी, स्वाति, प्रज्ञा चौधरी और इनके परिवार के सभी सदस्य।
1: और ये सभी सुनना चाहते हैं फना फिल्म का ये गीत। आवाजें शान और कैलाश खेर की है, गीत के बोल हैं प्रसून जोशी के और संगीत जतिन ललित का।

0: कार्यक्रम का जो गीत अगला हमने लिया है श्रोताओं, वो लिया है हमने फिल्म फर्ज से। आवाजें लता मंगेशकर और मुकेश की है, गीत के बोल आनंद बख्शी के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, और फरमाइश आप सबकी।
1: यह है जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन आसना और मोहम्मद कैफ अंसारी।
0: और ये हमारे श्रोता हैं,
1: इनको
0: ये
1: शामिल
0: सन
1: किया जा
0: जी
1: चुका है।
0: जी जी
1: जी
0: एक मैसेज हम शामिल कर चुके हैं, और ये हमारे श्रोता हैं जवाहर नगर उदयपुर से, बाबू भाई और भारती देवी। तेलंगाना भोंगीर से हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और ये मैसेज भेजने वाले हमारे श्रोता हैं मोहम्मद बुरहानुद्दीन, फजान लल्ला, फरहान लल्ला और समीरा आजमीन गुड़िया।
1: यह है कवीर रेडियो श्रोता संघ डोंडिलो हारा बालो छत्तीसगढ़ से, देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी पूजा, राधिका प्रभा देवी और अल कबीर तामुरिया।
0: और मुंदीचक भागलपुर से हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और ये श्रोता हैं दिलीप कुमार सोनी। और ये अगला मैसेज देख लेते हैं किसका है।
1: जी ये है मेन रोड तेलहारा से प्रकाश पुहरकार, नर्मदा पुहरकार और कुमारी सुजाता पुहरकार।
0: और अगला मैसेज धनोरी तेलीवाला से हमारे श्रोता जुड़ रहे हैं, और हमारे मैसेज भेजने वाले हैं निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू। हनुमानगढ़ राजस्थान से हमारे श्रोता हैं रज्जाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान और इरफान खान।
1: यह चंडी

0: से सतीश अनेजा और विमला अनेजा।
1: कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशबद सिंह राहुल।
0: परिमहल कासगंज से हैं आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, एम असलम सैफी मास्टर, जाहिद अली। और गंज डुंडवारा से हैं इरफान कुरैशी, शमसुल कमर राही।
1: और दीवाना रेडियो लिसनर्स क्लब जमानिया, जिला गाजीपुर से हमारे श्रोता हैं सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल।
0: ये हैं गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत।
1: तो लीजिए श्रोताओं, अपनी पसंद पर सुनिए फिल्म फर्ज का ये गीत।

0: आकाशवाणी नजीबाबाद से श्रोता, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत तुम्हारे, और कार्यक्रम में अगले गीत के लिए फरमाइश हमें मिली है
1: बीजना मुरादाबाद से। हमारे श्रोता हैं राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीष, अंशिका, यूसुफ खान और सोफिया खान।
0: और ये अगला मैसेज हमें मिला है गांव जाखोद राजस्थान से, भेजने वाले शंभु दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश कुमार और दीपक कुमार खटक।
1: ये हैं दत्रेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से, हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल वर्मा।
0: भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार।
1: ये हैं बरवट बकाल बुढ़ाना से, नारायण हागे, कमल, दिव्या और जय हागे।
0: जिला हावड़ा ब्रिज झीलों की नगरी उदयपुर से हमारे श्रोता हैं रमेश नाचानी, भारती नाचानी, विनीत मिथिल और तिलक तंबोली।
1: ये हैं दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से, मोहम्मद यासीन, अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नाज और बेबी चाहत।
0: गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी, मोहम्मद यासिन हाशमी और शमशुल कमर राही।
1: यह है कोल सिटी बरका काना से, अफजाल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निप्पी सहानी और मोहम्मद अफजल मलिक।
0: पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से हमारे श्रोता हैं अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक। ये मैसेज शामिल हो चुका है, रिपीट मैसेज हमारे श्रोता में भेज रहे हैं। और जिला मुरादाबाद गांव दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ श्रोता हैं मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून।
1: ये हैं उत्तम नगर दिल्ली से, कमला रानी, बोधराज खोरवाल, भानु प्रकाश और गीतिका खोरवाल।
0: और इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर फिल्म हिमालय की गोद में का ये गीत, आवाज मुकेश की।

0: और कार्यक्रम का अंतिम गीत हमने लिया है, फिल्म का नाम है पत्थर के फूल। आवाज़ लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की है, गीत के वो नूर कैसर की और संगीत राम लक्ष्मण का, और फरमाइश हमारे इन सभी श्रोताओं की।
1: नेहरू चौक पैंथर से हैं डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता, आरती, पूजा, प्रसाद जाधव और सोनल जाधव।
0: और ये हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं सब्जी मंडी बुल्डाना से शब्बीर हुसैन, शहजाद हुसैन, मुज्जू बाबा, आयजा अनम और मुदस्सिर हुसैन।
1: यह है फाइव स्टार रेडियो श्रोता संघ जिला कासगंज यूपी से योगेंद्र नायक, श्रीमती गीता नायक, निहारिका, सुशांत नायक और सुरेश चौरसिया।
0: आकोट से हमारे श्रोता हैं विनायक बेंडे, श्रीमती मंगला बेंडे, विजय कुमार, शुभम, पवन और के संजीव डाबेराव।
1: यह चंदन नगर सहारनपुर से आशा नारंग, सोनाली और सुरेश नारंग।
0: नाज पैलेस अजमेर शरीफ से हमारे श्रोता हैं सैयद आलम हाशमी, गुलनाज नाज, सलमा नाज, असद अरहाम और मोहम्मद आलम हाशमी।

0: उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से हैं उमा सिंह, श्रीमती महेश्वरी देवी, सोनू, मोनू, राहुल, रश्मि, प्रियंका, सृष्टि, बन्नी, आयुष, शौर्य और दिनेश।
1: नाला सोपारा मुंबई से हैं शेख नजमा बेगम, मोहम्मद आसिफ शेख, बेगम रुमा शेख, माहिरा नोमान और सुलेमान शेख।
0: इसी गीत को सुनना चाहते हैं हमारे ये श्रोता, रघुवीर नगर दिल्ली से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा, नायाब और लड्डू।
1: ये हमारे श्रोता हैं सदर बाजार मारवाड़ जिला भीलाड़ा राजस्थान से, रमेश चंद चौहान, जयनारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान।
0: ये है सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से, रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्बी और हिमाक्ष।
1: और ये कार्यक्रम के अंतिम गीत के लिए ये हमारा अंतिम मैसेज, और ये मैसेज हमें भेजा है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।

और श्रोताओं, इसी के साथ मुझे यानी धर्मेंद्र को कार्यक्रम गीत तुम्हारे में दीजिए अनुमति। नमस्कार, और आगे कार्यक्रम में आपके साथ जुड़े रहेंगी अनुपम।

अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गीत तुम्हारे। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत।

अमर अकबर एंथनी। श्रोताओं, भी आपने इस फिल्म का गीत सुना। आवाज़ें थीं किशोर कुमार, लता मंगेशकर और साथियों की। शब्द रचना आनंद बख्शी की थी और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत। फिल्म का नाम है गाइड। शब्द रचना शैलेंद्र की है और संगीत है SD वर्मन का। आवाज़ें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

श्रोताओं, फिल्म गाइड में अभी आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार को। गीत शैलेंद्र का था और संगीत था एसडी बर्मन का। कार्यक्रम में अब पेश है अगला गीत शब्बीर कुमार साथियों के और लता मंगेशकर की आवाजों में। फिल्म का नाम है आज का अर्जुन। गीत के बोल लिखे हैं अनजान ने और उन्हें संगीतबद्ध किया है बप्पी लहरी ने।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
0: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से समय आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत। और श्रोता, हम आपको बता दें, आज शनिवार है और आज दिन में 12:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम जिंदगी लाइव। और इसमें आज आपसे बातचीत का हमारा विषय रहेगा सावन में प्रकृति का सौंदर्य और पर्यावरण संरक्षण। तो श्रोताओं, 12:05 पर हमारे साथ जुड़ना बिल्कुल भी न भूलें। और चलिए, अब कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में फिल्म फागुन का ये गीत। गीत लिखा है कमर जलालाबादी ने और उसे संगीतबद्ध किया है ओपी नैयर ने।

आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म में फागुन का ये गीत। गीत लिखा था कमर जलालाबादी ने और संगीत दिया था ओपी नैयर ने। आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में ही आइए सुनते हैं एक और गीत। फिल्म का नाम है नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे। शब्द रचना राजेंद्र कृष्ण की है और गीत को संगीत से सजाया है मदन मोहन ने।

श्रोताओं, अभी ये गीत आपने सुना आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। शब्द रचना राजेंद्र कृष्ण की थी और संगीत था मदन मोहन का। फिल्म का नाम था नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत किशोर कुमार के स्वर में। फिल्म का नाम है ब्लैकमेल। गीत को अपनी कलम से सजाया है राजेंद्र कृष्ण ने और उसे संगीतबद्ध किया है कल्याण जी आनंद जी ने।

किशोर कुमार के स्वर में अभी आपने सुना फिल्म ब्लैकमेल का ये गीत। गीत लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने और संगीतबद्ध किया था कल्याण जी आनंद जी ने। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को फिल्म सरगम में। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और उन्हें संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

फिल्म सरगम में अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को। शब्द रचना आनंद बख्शी की थी और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ों में आइए सुनते हैं फिल्म आदमी खिलौना है का ये गीत। गीत समीर का है और संगीत है नदीम श्रवण का।

आदमी खिलौना है। श्रोताओं, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ों में। आई सुनते हैं हेमलता के स्वर में फिल्म अखियों के झरोखों से का ये गीत। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है।

और श्रोताओं, आइए अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं उदित नारायण के स्वर में फिल्म परदेसी बाबू का ये गीत। गीत और संगीत आनंद राज आनंद का है।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 12 बजे हैं। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

आज रात्रि 9:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही रात 9:30 पर सुनिएगा राष्ट्रीय संस्कृति पत्रिका संस्कृति भारती, और रात्रि 8 बजे इस सप्ताह संसद में। रात 8:20 पर आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुनेंगे साप्ताहिक विधानमंडल समीक्षा। और श्रोताओं, शाम 6:50 पर आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से ही आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

शाम 7:32 पर कार्यक्रम सुगम संगीत में आज आप सुनेंगे सुमन कल्याणपुर के स्वर में भजन। किसान भाइयों के दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत में आज शाम 6:05 पर सुनिएगा लोकगीतों व रागनियों का सजीव फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो लोक मंजरी। युवा साथियों के दैनिक कार्यक्रम युववाणी में शाम 5:15 पर मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया के अंतर्गत 80वें स्वतंत्रता दिवस के रन अप पर विशेष कार्यक्रम दुर्गा भाभी, साथ ही खास क्रम रहेंगे बूस्टर्स और स्क्रैप बुक।

दिन में 2:30 पर कार्यक्रम एक ही गीतकार में आज के गीतकार होंगे गुलशन बावरा। कार्यक्रम छाया गीत का समय रहेगा संध्या 6:55। दिन में 1:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम महिला जगत।

कार्यक्रम लोकधारा में दिन में 1:45 पर आज हम आपको सुनवाएंगे सुमित्रा रावत और साथियों के गाए गढ़वाली लोकगीत। और अब से बस थोड़ी ही देर बाद यानी 12:05 पर आप सुनेंगे कंपेयर्ड और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित कार्यक्रम जिंदगी लाइव।

अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दिन के 12:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कंपेयर्ड और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित कार्यक्रम जिंदगी लाइव। नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम जिंदगी लाइव में, और आज आपके साथ है आपके रेडियो साथी अनुपम मिश्रा। हमेशा की तरह आज भी एक रोचक और ज्ञानवर्धक विषय को हमने कार्यक्रम में शामिल किया है। अब सावन का महीना चल ही रहा है, तो क्यों ना साथियों, आज हम इसी विषय पर आपसे बातें कर लें। जी हाँ, बिल्कुल आपके मन की बात हमने जान ली है। तो आज हमारा टॉपिक है सावन में प्रकृति का सौंदर्य और पर्यावरण संरक्षण। इस विषय पर आप अपने विचार श्रोताओं हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9457078288 पर मैसेज करके। श्रोताओं, सावन यानी रिमझिम बारिश, मिट्टी की सौंधी खुशबू, हरियाली से ढके खेत, रंग बिरंगे फूलों का खिलना, कोयल की मधुर कूक और प्रकृति का मनमोहक श्रृंगार। सावन केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि प्रकृति के प्रति प्रेम, संवेदनशीलता और संरक्षण का भी संदेश देता है।

0: सावन का महीना पवन करे शोर,
1: सावन का महीना पवन करे शोर,
0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं।

श्रोताओं, आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी लाइव, और आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं सावन की, यानी कि सावन और उसके साथ जुड़े प्रकृति के सौंदर्य और पर्यावरण संरक्षण की। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आपका क्या संदेश है, और सावन को आप किस तरह से लेते हैं, व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमें ज़रूर बताएं। और मैसेज करने के लिए जो हमारे नए श्रोता हैं उन्हें अपना हम व्हाट्सएप नंबर एक बार फिर से बता देते हैं। श्रोताओं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288, यानी 9457078288। श्रोताओं, जब पहली बारिश की बूंदें धरती को छूती हैं तो लगता है जैसे प्रकृति मुस्कुराने लगी हो। सूखे पेड़ फिर से हरे हो जाते हैं, नदियां और तालाब जीवन से भर उठते हैं, खेतों में नई उम्मीदें अंकुरित होती हैं और माहौल में ताजगी घुल जाती है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही नज़ारा होता है जब सावन दस्तक देता है। और भारतीय संस्कृति में भी प्रकृति को हमेशा से पूजनीय माना गया है। श्रोताओं, हमारे ऋषि मुनियों ने पेड़ों, नदियों, पर्वतों और पशु पक्षियों को केवल संसाधन नहीं बल्कि जीवन का अभिन्न साथी माना है। भगवान शिव की बात करें तो वो स्वयं प्रकृति के देवता माने जाते हैं। उनके मस्तक पर गंगा, जटाओं में और चंद्रमा, गले में सांप, उनका निवास स्थान भी कैलाश पर्वत है। तो ये सभी हमें प्रकृति के साथ संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, मैसेज के जरिए हमें ज़रूर बताएं। और तब तक हम आपको सुनवा रहे हैं सावन का एक और खूबसूरत नगमा।

0: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी लाइव, और हमारे बहुत सारे श्रोता संदेशों के माध्यम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो ये हैं जसपुर रोड दूल्हापुर जिला मुरादाबाद से महबूब दुकानदार बेगम साहिबा महबूब, मोहम्मद समीर अंसारी, मोहम्मद वारिस अंसारी, बेटी अलशफा अंसारी और माही नूर अंसारी। इन्होंने बहुत एक पूरा पैराग्राफ हमें लिखकर भेजा है सावन के बारे में। लिखते हैं कि सावन केवल एक ऋतु नहीं है और बल्कि ये प्रकृति की एक अनूठी महाकाव्य विधा है, और ये मन को उल्लास से भर देती है और सावन के आने पे मन मयूर सा नाच उठता है। और ये साथ ही लिख रहे हैं कि भक्ति साधना और समर्पण का प्रतीक भी है सावन। तो आपने हमें मैसेज किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रिमझिम बरसे सावन की फुहार, हरियाली से महके संसार, वृक्ष रहें तो जीवन रहेगा, प्रकृति से ही हो कल साकार। जी हाँ श्रोताओं, अगर हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, तभी हम सुरक्षित हैं। आज हम देख ही रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन, बढ़ता हुआ प्रदूषण और कम होते जंगल पूरी दुनिया के लिए श्रोताओं चिंता का विषय है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी अधिक बढ़ जाती है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम पेड़ लगाएं और जो पहले से लगे हुए हैं उनके पानी और पोषण का ख्याल रखें, वर्षा के जल का संरक्षण करें, और सबसे बड़ी बात श्रोताओं, प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करें और अपने बच्चों को भी प्रकृति से प्रेम करना सिखाएं, क्योंकि प्रकृति है तभी हम हैं।

श्रोताओं, गीत के बाद कार्यक्रम जिंदगी लाइव में हम फिर से हाजिर हैं और अब हम कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं अपने श्रोताओं के भेजे गए संदेशों को। और ये मैसेज है ग्राम दूल्हापुर, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश से। और हमारे भेजने वाले श्रोता हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा मांस, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। ये लिखते हैं कि सभी को सावन महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सावन के महीने में गर्मी से बड़ी राहत मिली है और खेत हरे भरे हो गए हैं और खेतों में घूमना, हरी भरी सब्जी, बच्चों का झूला झूलना बड़ा ही अच्छा लगता है। साथ ही ये एक मौसम कई तरह की बीमारियां भी लाता है, इससे हमें सावधान रहना ज़रूरी है। जी हाँ, बिल्कुल, इतने अच्छे संदेश के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। और बड़ी अच्छी बात आपने कही है कि सावन है, हरियाली है और एक आनंद का माहौल है चारों तरफ, लेकिन इसके साथ ही साथ बीमारियों का खतरा भी है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि बासी खाना बिल्कुल भी ना खाएं, स्वच्छ पानी पिएं और हरी साग सब्जियां खाएं, जो हेल्दी फूड है उसको लें, और बहुत ऑयली है, तला भुना है, ऐसे खाने से इस समय हम परहेज करें। और इसके साथ ही एक और श्रोता हमारे साथ ये जुड़े हैं, रवि कुमार प्रजापति हैं और साथ में हैं साक्षी प्रजापति। ये लिखते हैं कि सावन का महीना प्रकृति के उल्लास और भक्ति का अद्भुत संगम है। चारों ओर फैली हरियाली, रिमझिम फुहारें, मिट्टी की सौंधी खुशबू और मंदिरों में गूंजते हर हर महादेव के जयकारे इस माह के वातावरण को पूरी तरह से भक्तिमय और रूमानी बना देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, एक माहौल ही ऐसा होता है सावन के दौरान। एक तो प्रकृति की जो छटा होती है वो अनोखी हो जाती है, दूसरा पूरा जो माहौल है वो शिवमय हो जाता है। और इसके साथ ही एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपसे ढेर सारी बातें हम करेंगे कार्यक्रम में आगे, लेकिन फिलहाल आपको सुनवा रहे हैं सावन से जुड़ा एक और गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम जिंदगी लाइव में आज हम आपसे बात कर रहे हैं सावन में प्रकृति का सौंदर्य और पर्यावरण संरक्षण विषय पर। श्रोताओं, सावन केवल बारिश का महीना नहीं है बल्कि किसानों के लिए नई उम्मीदों का भी मौसम होता है। खेतों में धान, मक्का, बाजरा जैसी तमाम फसलें लहलहाने लगती हैं। बारिश की हर बूंद किसान के चेहरे पर मुस्कान बनकर उतरती है, क्योंकि बारिश की बूंदें जब धरती को स्पर्श करती हैं तो केवल मिट्टी ही नहीं महकती बल्कि हमारा मन भी खिल उठता है। सावन हमें ये सिखाता है कि प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता केवल उपयोग का नहीं बल्कि प्रेम, सम्मान और संरक्षण का भी होना चाहिए। और इसी के साथ हमारे एक श्रोता हैं नगीना से अनिल विनोचा जी, वो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वो लिख रहे हैं कि सच में सावन का महीना जब से शुरू हुआ है बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। पूरी सृष्टि नई नवेली दुल्हन लग रही है, हर तरफ हरियाली नज़र आ रही है, मंद मंद ठंडी हवा, जीवन एक तरह से बहुत खुशी का अनुभव कर रहा है। इसके बाद इन्होंने लिखा है कि हम सभी सावन को अच्छे तरीके से मनाएं, हरियाली तीज मन को खुशी से भर देती है जो कि आने वाली है, जहां सहेलियां मिलती हैं, मेहंदी लगाती हैं और इस तरह से, लेकिन हमें अपनी हरियाली की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। इन्होंने एक बहुत अच्छा संदेश भी हमें लिखा है कि प्रकृति है तभी हम सुरक्षित हैं और सावन में हमें अपने जो आसपास का माहौल है, जो पेड़ पौधे हैं, उनका भी ध्यान रखना चाहिए। विनोचा जी, कार्यक्रम में आपने मैसेज किया, इतना अच्छा संदेश हमें दिया, उसके लिए आपका शुक्रिया। और अब आप सभी के लिए पेश है ये गीत।

और श्रोताओं, कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं आज सावन के विषय में। तो आप भी अपने मन के विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9457078288 पर मैसेज करके। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, ये हैं गांव वापोस्ट राहुल नगली, थाना नूरपुर, तहसील चांदपुर, जिला बिजनौर से आचार्य सत्यवीर सिंह, अलका चौहान, अक्षत चौहान और भूमिका चौहान। लिखते हैं कि एक साल में 12 महीने होते हैं और प्रत्येक दिन प्रत्येक महीने का अपना एक विशेष महत्व होता है। गर्मी के बाद बरसात आती है और बरसात में सावन का महीना आता है। इससे पहले साल का महीना आता है और जिसमें खूब बादल बरसते हैं और प्रकृति में हरियाली छा जाती है, खेतों में खलियानों में सुंदरता बढ़ जाती है। और सावन के महीने में जो बादल बदली रहती है तो रिमझिम फुहारे पड़ती हैं, वो मन को बहुत सुकून देती हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, सावन का महीना होता ही ऐसा है आचार्य जी, कि मन को सुकून और राहत दे

वाला होता है कार्यक्रम में आपने हमें मैसेज किया, इसके लिए आपका शुक्रिया। और साथ ही अक्सर हम देखते हैं कि बारिश का जो पानी है वो बहकर नालियों में चला जाता है। अगर हम इस पानी को टैंकों, कुओं या फिर भूजल तक पहुंचाने की व्यवस्था करें तो ये भविष्य के लिए अमूल्य संपत्ति बन सकता है। सावन हमें केवल वर्षा का आनंद ही नहीं देता श्रोताओं, बल्कि जल संरक्षण की जिम्मेदारी भी सौंपता है।

श्रोताओं कार्यक्रम जिंदगी लाइव में अगला मैसेज हम शामिल कर रहे हैं। जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से मैसेज भेजने वाले हमारे श्रोता हैं मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। इन्होंने कुछ पंक्तियां हमें लिखकर भेजी हैं कि पहली बारिश का नशा ही कुछ और होता है, पलकों को छूते ही सीधा दिल पे असर होता है। महका महका सावन आज इस दिल को बहका रहा है, गुमसुम सी नजरों को आज ये प्यार करना सिखा रहा है। हैप्पी मानसून। आपका कार्यक्रम में मैसेज करने के लिए शुक्रिया। और इसके साथ हम एक और मैसेज शामिल कर रहे हैं जिसे भेजा है हमारे श्रोता हैं आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां। लिखते हैं कि सावन की बात करें तो ये रिमझिम बरसात बरसता ही अच्छा लगता है। सावन से ही हमारे पेड़ों जंगलों को खूब पानी मिलता है और साथ ही सारा वातावरण हरा भरा हो जाता है। जी हाँ बिल्कुल, अगर बारिश ना हो तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि हमारा जीना कितना मुश्किल हो जाएगा। और श्रोताओं, सावन का नाम आते ही मन में झूले, कजरी, मल्हार और लोकगीतों की मधुर धुनें गूंजने लगती हैं। भारत के विभिन्न राज्यों में सावन का जो स्वागत है वो अलग अलग परंपराओं से किया जाता है। विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार में कजरी लोकगीतों की परंपरा है और राजस्थान और मध्य प्रदेश में तीज के गीत वातावरण को उल्लास से भर देते हैं। इन लोकगीतों में वर्षा, हरियाली, नदियाँ, पेड़ पौधे और प्रकृति के प्रति गहरा प्रेम झलकता है। यही हमारी सांस्कृतिक विरासत भी है श्रोताओं, और पर्यावरण के प्रति हमारी संवेदनशीलता का प्रतीक भी।

श्रोताओं कार्यक्रम जिंदगी लाइव में हमें ये मैसेज मिला है ग्राम खानपुर बिजनौर से। हमारे एक श्रोता हैं तारा सिंह, उन्होंने हमें भेजा है और लिखा है कि सावन का महीना प्रकृति के लिए बेस्ट महीना होता है। इसके साथ ही एक और श्रोता हैं हमारे, ये हैं ज़िला अमरोहा नई बस्ती पतेई खालसा से बहारुल हसन सिद्दीकी और आलम सिद्दीकी, मोहम्मद सिफान सिद्दीकी, यूसुफ सिद्दीकी, अनाविया सिद्दीकी, बेटिया अलीशा सिद्दीकी, शकील सिद्दीकी, फ़हीम और मोहम्मद यासीन अंसारी का। ये भी हमें लिखकर भेजते हैं कि सावन का जो महीना है वो अपने आप में बेहद ख़ास है और हमें प्रकृति के ये करीब लाता है और हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम प्रकृति की सुरक्षा में अपना थोड़ा वक्त ज़रूर दें। इसके साथ ही ये हैं हमारे एक श्रोता, ये हैं संभाजी चौक सिडको न्यू नांदेड़ महाराष्ट्र से सुधाकर गायकवाड़, विकास गायकवाड़, प्रीति गायकवाड़, आशा, दीपांजलि, दीक्षा बागमारे और शशांक बागमारे। लिखते हैं कि सावन एक ऐसी ऋतु है जो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हैं। सकारात्मक ये है कि वो पूरे साल पानी देती है और नकारात्मक ये है कि जब पानी ज़्यादा हो जाता है तो बाढ़ का रूप ले लेता है और कई बार बीमारियां भी हमें घेरने लगती हैं। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा संदेश आपने हमें भेजा है कि वाकई में दोनों पक्ष हैं बारिश के, और वो तभी होते हैं जब प्रकृति का ख्याल नहीं रखते हैं और जब अति कर देते हैं तो प्रकृति भी अपना कहर हम पे फिर बरसाती है। और ये हैं ग्राम गदरौना ज़िला हरिद्वार उत्तराखंड से, ये मदन गिरी जी ने हमें ये मैसेज भेजा है। कहते हैं कि सावन का महीना हो तो मन झूम उठता है, रिमझिम बरसते बादल, हल्की हल्की चलती फुहार, जंगल में नाचते मोर और बाग में पपियों का जो गान है वो मन को मोह लेता है। ऐसा लगता है कि प्रकृति ने सारा सौंदर्य इस सावन के महीने में ही समेट दिया है, जो कि बहुत अच्छा लगता है। जी हाँ, बिल्कुल, और आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे हम आपसे बात करना चाहेंगे श्रोताओं कि सावन केवल एक ऋतु नहीं है बल्कि ये प्रकृति के पुनर्जन्म का समय है। अगर हम इसी मौसम में अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और अच्छी तरह से उनकी देखभाल करें तो हमारे जीवित रहने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, यानी कि पेड़ रहेंगे तभी तो हम रहेंगे ना। साथियों, एक परिपक्व पेड़ वर्षा के पानी को मिट्टी में जमाने में भी मदद करता है। पेड़ तापमान को नियंत्रित करने और प्रदूषण को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और हमारे आसपास की हरियाली हमारी मानसिक शांति और स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालती है। और पेड़ों के लिए ज़रूरी क्या है श्रोताओं? पानी। जी हाँ, अभी तो सावन है और बारिश हो रही है, लेकिन जब सावन ना हो तब भी ज़रूरी है कि हम अपने पौधों को समय समय पर पानी लगाते रहें।

श्रोताओं, सावन की रिमझिम फुहारें हमें ये एहसास कराती हैं कि प्रकृति के बिना जीवन की कल्पना भी अधूरी है। इसीलिए प्रकृति हमें एक संदेश भी दे रही है आज कि मुझे बचाइए, तभी मैं आपको जीवन दे पाऊंगी। और श्रोताओं, इसी के साथ आज का कार्यक्रम जिंदगी लाइव संपन्न करने की अनुपम को दीजिएगा अनुमति और आप आनंद लीजिएगा कार्यक्रम के इस अंतिम गीत का।

0: अभी आप सुन रहे थे कंपेयर्ड और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित कार्यक्रम जिंदगी लाइव। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन का एक बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्रों के विकास से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
2: आज भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है।
1: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने आईआईटी दिल्ली में परम प्रज्ञा नामक उच्च दक्षता की कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन भी किया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना और उन्हें कानूनी मान्यता देने से जुड़े मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य दिल्ली में विश्व स्तरीय निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए

0: आधुनिक पारदर्शी और प्रभावशाली कानूनी ढांचा तैयार करना है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इस विधेयक को मॉनसून सत्र के दौरान विचार और पारित करने के लिए दिल्ली विधानसभा में पेश किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग ने भारत में ऑस्ट्रेलियाई शिक्षा प्रतिनिधियों के संघ AAERI के साथ साझेदारी में एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म AAERI सत्यापन का शुभारंभ किया। मंत्रालय ने बताया कि डिजी लॉकर से जुड़े इस प्लेटफॉर्म के जरिए ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों में आवेदन करने वाले भारतीय विद्यार्थियों को अपने शैक्षणिक पहचान और वित्तीय दस्तावेजों का सुरक्षित और डिजिटल तरीके से सत्यापन कर सकेंगे। झारखंड सरकार आज जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों से बातचीत की। ये बैठक रांची के गेस्ट हाउस में हुई। परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ पिछले दो सप्ताह से रांची में जारी विरोध प्रदर्शन के बाद ये बातचीत हुई है। सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधिमंडल के बीच कल शाम पहली औपचारिक बैठक हुई थी। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने सीमा पार आतंक की साजिश रचने में दो आरोपियों के विरुद्ध अभियोग पत्र दाखिल किया है। दोनों आरोपी पंजाब और नई दिल्ली में सुनियोजित हमले के लिए IED विस्फोटक और हेरोइन की कथित तस्करी में संलिप्त हैं। एजेंसी की मोहाली विशेष अदालत में कल शुभम कुमार और फरार जसवीर चौधरी के खिलाफ विरुद्ध अभियोग पत्र दायर किया गया। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई और 11 घायल हो गए। ये दुर्घटना सुबह करीब 7:15 बजे हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस बैरागढ़ से चंबा जा रही थी। चलुवांज मोड़ के पास चालक ने बस पर नियंत्रण खो दिया और बस सड़क से उतरकर नीचे दूसरी सड़क पर गिर गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की खराब स्थिति को देखते हुए आज जम्मू से बालतल की ओर श्री अमरनाथ जी यात्रा रोक दी गई है। हालांकि बालतल से पवित्र गुफा की ओर यात्रा सामान्य रूप से जारी है। रेलवे ने ओणम के अवसर पर केरलम के लिए विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ाकर 112 कर दी है। इन विशेष रेलगाड़ियों का मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आवागमन होगा। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अश्मिता चालिहा दक्षिण कोरिया के आसन में कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। अश्मिता ने आज सेमीफाइनल में हमवतन रक्षिता रामराज को हराया। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स U20 चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत को अपना पहला पदक मिला। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने रजत पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi has said that students graduating today are not merely completing their education, but are beginning a new chapter in their lives. He was addressing the 57th convocation ceremony of IIT Delhi today. Mr. Modi urged the graduating students to live the moment to the fullest, as they would cherish and miss the memories of their campus life in the years to come. The Prime Minister congratulated the graduating students and wished them success as they embark on a new journey.
2: आज आपके परिवार के लोग प्राउड फील कर रहे हैं, वैसे ही मुझे भी आप सब पर गर्व है, क्योंकि ये आप सब केवल एक डिग्री नहीं ले रहे हैं, आप देश के लिए बहुत कुछ करने का सपने लेकर के यहाँ से निकल रहे हैं।
1: The Jharkhand government today held talks with protesting students and job aspirants over alleged irregularities in examinations conducted by the JPSC and GSSC. The meeting began at the State Guest House in Ranchi. An 8-member delegation representing students and job aspirants is holding discussions with government officials. The talks come after protests in the state capital over the past 2 weeks against the alleged irregularities in the exams. The first formal meeting

0: सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा है कि ये कामयाबी रियासत के तमाम कारीगरों और बुनकरों के लिए तहरीक का जरिया है। इको एजुकेशनल हब की वक्फ तकरीब आज नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट CSIR लखनऊ के बंथरा कैंपस में वाकई महर्षि पराशर बायो रिवर्स सेंटर में मुनक़िद की जा रही है। साइंस और टेक्नोलॉजी और अर्थ साइंसेज के जुमरे के मरकजी वजीर मुमलिकत आजादाना चार्ज डॉक्टर जितेंद्र सिंह तकरीब में शिरकत के लिए आज चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे लखनऊ पहुंचे। हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रिसर्च के सरबराहों ने की। इस मौके पर रियासती हुकूमत के अफसरान भी मौजूद थे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज लखनऊ में नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज श्रावण के मुकदस महीने में मेरठ के मोदीपुरम में भगवान शिव के जलाभिषेक करने आए कांवड़ यात्रियों पर फूलों की बारिश के प्रोग्राम में शिरकत की। इस दौरान वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने शिव कांवड़ियों पर फूल निछावर किए। इत्तलात नशरियात की वजारत ने रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज और डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से कहा है कि वह आफात से मुतासिरा और कमजोर इलाकों में नए कम्युनिटी रेडियो स्टेशनों को फरोग दें। लोकसभा में एक तहरीरी जवाब में इत्तलात नशरियात के वजीर मुमलिकत एल मुरुगन ने कहा कि कम्युनिटी रेडियो स्टेशन कुदरती आफात और दीगर हंगामी हालात के दौरान मकामी जुबानों में बरवक्त और काबिल एतमाद मालूमात फैलाने में अहम किरदार अदा करते हैं। पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा है कि UPI के जरिए की जाने वाली डिजिटल अदायगी सार्फीन के लिए मुफ्त रहेगी। डिजिटल अदायगियों को कबूल करने के लिए ताजिरों से भी कोई फीस नहीं ली जाएगी। काउंसिल ने वाजे किया है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक सार्फीन को ताजिरों और अदायगी सर्विस को फराहम करने वालों के दरमियान कोई तजारती फीस अदा करने की जरूरत नहीं होगी। एक रिपोर्ट।
1: UPI के जरिए लेनदेन पर चार्ज लगने की खबरों ने आम उपभोक्ताओं और छोटे दुकानदारों के बीच चिंता पैदा कर दी थी। इस भ्रम को पूरी तरह दूर करते हुए पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया PCI ने साफ किया है कि ग्राहकों के लिए UPI सेवाएं पूरी तरह मुफ्त बनी रहेंगी। डिजिटल इंडिया की रफ्तार को बनाए रखने और वित्तीय समावेशन को सुरक्षित रखने के लिहाज से ये स्पष्टीकरण एक बड़ा राहत देने वाला कदम है। PCI ने कहा है कि UPI देश की महत्वपूर्ण डिजिटल व्यवस्था बन चुका है, जिसका इस्तेमाल करोड़ों लोग रोजाना करते हैं। बढ़ते लेनदेन को देखते हुए सुरक्षा, तकनीक और ढांचे को मजबूत बनाए रखना जरूरी है, ताकि भविष्य में भी UPI उपभोक्ताओं और कारोबारियों के लिए सुचारू रूप से काम करता रहे। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: मुजफ्फरनगर जिले के तेटावी थाना इलाके में पानीपत खतीमा हाईवे पर सड़क हादसे में दो कांवड़ियों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त पेश आया जब उनकी मोटरसाइकिल को कार ने टक्कर मार दी। दोनों कांवड़िये शदीद तौर पर जख्मी हो गए और उन्हें जिला अस्पताल में मुर्दा करार दे दिया गया। हलाक होने वाले दोनों कांवड़िये हरियाणा के रहने वाले थे। रियासत के कई जिला में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने अगले 5 दिनों तक रियासत के मशरकी और मगरबी इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की से मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। दरियसना पहाड़ी इलाकों समेत मशरकी उत्तर प्रदेश में मुसलसल बारिश की वजह से वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, मिर्जापुर, प्रयागराज, जौनपुर और आजमगढ़ में गंगा और उसकी मुआवन नदियों के पानी की सतह मुसलसल बढ़ रही है। वाराणसी में गंगा के पानी की सतह बढ़ने की वजह से इंतजामिया और डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। पानी की सतह बढ़ने की वजह से 80 घाट पर आरती का मकाम 10 फीट बुलंद हो गया है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। इस समय दिन के 1:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला जगत।

कुछ तारीखें कैलेंडर पर नहीं होती, वे इतिहास के पन्नों पर लिखी होती हैं, जो हमें याद दिलाती हैं बदलाव की शुरुआत एक विचार से होती है। नमस्कार बहनों, आज सुन रही हैं आप कार्यक्रम महिला जगत, और कार्यक्रम में आपके साथ हूं मैं, आपके

की मीनाक्षी अग्रवाल। बहनों, आज से लगभग 84 वर्ष पूर्व 8 अगस्त 1942 को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था। महात्मा गांधी ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ निर्णायक संघर्ष का आह्वान किया। इसके अगले दिन 9 अगस्त को आंदोलन ने व्यापक रूप लिया और देश के अलग अलग हिस्सों में आजादी की आवाज और तेज हो गई। बहनों, वो दौर हमें याद दिलाता है कि बड़े बदलाव अचानक नहीं आते, उनके पीछे होता है हौसला, संघर्ष, विश्वास और लगातार प्रयास। आज हमारा देश आजाद है, लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में अपने अपने संघर्ष हैं, खासकर हम महिलाओं के जीवन में। कभी परिस्थितियां चुनौती बनती हैं, कभी जिम्मेदारियां और कभी समाज की सोच। लेकिन जब कोई महिला इन चुनौतियों के सामने हार नहीं मानती और अपने लिए एक नई राह बनाती है, तो उसकी कहानी सिर्फ उसकी अपनी नहीं रहती, वो दूसरी महिलाओं के लिए भी उम्मीद और प्रेरणा बन जाती है। और यहीं से हम पहुंचते हैं अपने आधी आबादी सेगमेंट तक, जहां हम बात करते हैं ऐसी ही महिलाओं की जिन्होंने संघर्ष को अपनी ताकत बनाया, मुश्किलों को पार किया और अपने जीवन में सफलता की नई कहानी लिखी। तो आइए मिलते हैं अपनी आज की आधी आबादी की नायिका से अपने आधी आबादी सेगमेंट में। कहा जाता है कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। जब मेहनत, लगन और आत्मविश्वास साथ हो, तो साधारण सी शुरुआत भी असाधारण मंजिल तक पहुंच जाती है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही बेटी की जिसने अपने शुरू से देश का दिल जीता और फिर जन सेवा का दायित्व भी संभाला। उनकी मीठी मीठी आवाज जब सुनाई देती है तो मन मंत्रमुग्ध हो जाता है।

0: जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं बिहार की बेटी, सुप्रसिद्ध लोक एवं शास्त्रीय गायिका और युवा जन प्रतिनिधि मैथिली ठाकुर की। 25 जुलाई सन 2000 को बिहार के मधुबनी जिले में जन्मी मैथिली ठाकुर का बचपन संगीत के माहौल में बीता। उनके पिता रमेश ठाकुर संगीतकार हैं और माँ भारती ठाकुर ने हर कदम पर उनका उत्साह बढ़ाया। उनके दोनों भाई ऋषभ और अयाची भी संगीत में उनका साथ देते हैं। बात करें इनकी शुरुआत की तो इनका परिवार बेहतर अवसर के लिए गांव से शहर आ गया, जहां मैथिली ने पढ़ाई के साथ साथ कठिन रियाज जारी रखा।
1: जब मैंने शुरुआत की तो गांव से जब शुरुआत हुई, जब हम छोटे थे, वहां बहुत आनंद आता था, बहुत मजे में बिना कुछ किए खाना पीना सब आराम से मिल रहा है, अच्छा अच्छा सब कुछ हो रहा है। और जैसे ही शहर में आए, शहर के वातावरण में लगा कि यहाँ पे तो एडजस्ट होना ही बहुत मुश्किल है हर एक चीज़ के लिए। वहाँ आराम था, थोड़ा ऐसा महसूस होता था कि चल रहा है जीवन, बहुत आसानी से कट रहा है, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बाहरी किसी चीज़ की अपेक्षा नहीं है और बहुत बड़ी बड़ी चाहते भी नहीं है, सपने भी नहीं है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि मैं उस समय बहुत छोटी थी तो कीर्तन करते करते दिन से रात हो रहा है तो बहुत आनंद आता था। नहीं, जब शहर आए तो पता चला स्कूल भी जाना पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा, कमाना भी पड़ेगा, बड़े होकर के कुछ करके दिखाना होगा, तब वहां से टेंशन शुरू।
0: मैथिली ने बचपन से शास्त्रीय संगीत की और लोक गीतों की शिक्षा अपने पिता से ली। उन्होंने बहुत सारे रियलिटी शोज में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जहां कई बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बावजूद इसके उनका उत्साह कम नहीं हुआ। इसके बारे में मैथिली कहती है,
1: बिल्कुल नहीं, अगर रियलिटी शो में आप जा रहे हैं तो दिल इतना ज़्यादा टूटता है और वो भी ज़ोर ज़ोर से टूटता है, जिस तरीके से जब आप सिलेक्ट नहीं होते तो आपके कपड़े पे से जो स्टिकर लगाते हैं ना, तो स्टिकर को ऐसे जब हटाते हैं और ऐसा लगता है इतनी बेइज्जती की है कि आप सिलेक्ट नहीं हुए, अब आप घर जाओ।

0: और जो सेलेक्ट होते हैं वो खुशी मना रहे होते हैं। तो ऐसे तो कम से कम 6-7 बार मुझे चोट पड़ी, तब जाके हुआ कि अब जो 2017 में मैं जब राइजिंग स्टार में गई, हो ना हो जो भी हो इसके बाद यूपीएससी की तैयारी में लग जाएंगे, आखिरी है। तो उस मानसिकता के साथ 2017 के आखिरी कॉम्पिटिशन में मैंने पार्टिसिपेट किया था।
1: कई प्रयासों के बाद उन्हें एक शो में सफलता मिली जिसने उन्हें देश भर में पहचान दिलाई। उनको सफलता उनके इस गीत से मिली, आइए सुनते हैं।

अपनी इस सफलता के बाद मैथिली यहाँ नहीं रुकी। उन्होंने अपने भाइयों के साथ मिलकर मैथिली, भोजपुरी, हिंदी और भक्ति गीतों को सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया भर के लोगों तक पहुँचाया। आज उनके करोड़ों श्रोता हैं। उनकी सफलता इस बात का प्रमाण है कि अपनी मातृभाषा और संस्कृति से जुड़कर भी वैश्विक पहचान बनाई जा सकती है। उनके सांस्कृतिक योगदान को देखते हुए वर्ष 2024 में भारत सरकार के नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड में उन्हें कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों प्राप्त करना उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव रहा। संगीत के क्षेत्र में अलग पहचान बनाने के बाद मैथिली ठाकुर ने समाज सेवा का संकल्प लिया। वर्ष 2025 में बिहार अलीनगर जिले की विधानसभा सीट से उन्होंने चुनाव जीता। इस जीत के साथ ही वे बिहार की सबसे कम उम्र की विधायकों में शामिल हुई। आज वे जन प्रतिनिधि के रूप में युवाओं, महिलाओं और समाज के विकास के लिए कार्य कर रही हैं। बिहार के लोकप्रिय पर्व छठ का एक गीत आइए सुनते हैं मैथिली से।

0: अपनी हम उम्र लड़कियों को अपना संदेश देते हुए मैथिली कहती हैं,
1: यही कि हम एक कदम बढ़ाने से पहले बहुत सोचते हैं कि अगर कुछ उल्टा पुल्टा हो गया तो मम्मी पापा भी डांटेंगे, रिश्तेदार भी डांटेंगे, इधर से भी गए उधर से भी गए, और जितना ये सोचते हैं उतना ही हमारा जो पैर है उसमें बेड़ियां स्ट्रांग होते चले जाती हैं। इसीलिए कोई आइडिया आया मन में, मम्मी पापा का सपोर्ट है, भाई का सपोर्ट है, दोस्तों का सपोर्ट है, किसी का भी है, एक कदम आगे बढ़ा लें, उसके बाद कैसे वो रास्ता आगे बढ़ने लगेगा, बनता चला जाएगा, वो आपको खुद एहसास नहीं होगा और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए कोई भी आइडिया हो मन में, कोई भी चाहत हो मन में, कुछ भी करना चाहते हैं, तो जितना आप खुद को रोक के रखेंगे उतना आपको बाद में रिग्रेट होगा।
0: स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। मैथिली ठाकुर का जीवन इसी संदेश का जीवंत उदाहरण है। आइए हम भी अपनी बेटियों को शिक्षा

आज की आधी आबादी में हमने सुना मैथिली ठाकुर को। उनकी कहानी हमें यही सिखाती है कि सफलता का रास्ता आसान नहीं होता। रास्ते में मुश्किलें आती हैं, असफलताएं भी मिलती हैं, लेकिन अगर हौसला बना रहे और कोशिश जारी रहे तो मंजिल हासिल की जा सकती है। जरूरत सिर्फ इतनी है कि हम अपने भीतर की ताकत को पहचानें और खुद पर विश्वास करें। इसी उम्मीद और प्रेरणा के साथ आइए कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं आपसे कुछ ही क्षणों में।

महिला जगत कार्यक्रम में बहनों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ब्रेक के बाद बहनों, एक देश जहां हर कदम पर एक नई कहानी मिलती है, हर शहर की अपनी पहचान है, हर प्रदेश की अपनी संस्कृति है और हर धरोहर अपने भीतर इतिहास का एक पन्ना समेटे है। कहीं किले हैं, कहीं महल हैं, कहीं मंदिर हैं, कहीं मस्जिदें, कहीं प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य है तो कहीं सदियों पुरानी कला और संस्कृति। यही तो खूबसूरती है हमारे भारत की विविधता की। लेकिन बहनों, हमारे देश में विविधताएं बहुत हैं, लेकिन देश एक है। इन्हीं विविधताओं और अपने देश की अनमोल धरोहरों से आपको परिचित कराने के लिए हम लेकर आते हैं अपना सेगमेंट ऐसा देश है मेरा। तो आइए आज की इस यात्रा में चलते हैं देश की राजधानी दिल्ली की ओर, जहां इतिहास की एक भव्य धरोहर हमारी प्रतीक्षा कर रही है, जिसने मुगल काल की शाही विरासत से लेकर भारत की आजादी तक का सफर अपनी आंखों से देखा। तो फिर देर किस बात की, आइए सुनते हैं ऐसा देश है मेरा।

0: मिट्टी की खुशबू में इतिहास बसता है, हर पत्थर में एक विश्वास बसता है। जहां वीरों का त्याग अमर कहानी बन जाता है, वही तो मेरा भारत कहलाता है, वही तो मेरा भारत कहलाता है, ऐसा देश है मेरा।
1: कितना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा।
0: भारत जहां हर कुछ किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है, पहनावा बदल जाता है, खान पान बदल जाता है, लेकिन नहीं बदलता तो केवल एक भाव, भारतीय होने का गर्व। इसी गर्व को संजोए खड़ी है हमारी ऐतिहासिक धरोहरें। आज हम चलेंगे उस धरोहर की ओर जिसने साम्राज्य भी

ही बल्कि उस समय भारत की सत्ता, संस्कृति और कला का सबसे बड़ा केंद्र भी था। लाल किले में क्या क्या है, आइए जानते हैं। लाल किले में प्रवेश करते ही सबसे पहले दिखाई देता है लाहौरी गेट, जो आज भी इसकी मुख्य पहचान है। इसके अंदर स्थित है दीवाने आम, जहां आम जनता अपनी फरियाद लेकर आती थी। ये वो विशाल सभा कक्ष था जहां मुगल सम्राट आम जनता की शिकायतें सुनते थे और न्याय करते थे। ये स्थान हमें याद दिलाता है कि किसी भी शासन की सबसे बड़ी ताकत जनता का विश्वास और न्यायपूर्ण व्यवस्था होती है। इसके बाद आता है दीवाने खास, जहां सम्राट विदेशी राजदूतों, राजाओं और विशिष्ट अतिथियों से मुलाकात करते थे तथा राज्य के महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते थे। यहीं कभी प्रसिद्ध मयूर सिंहासन भी सुशोभित था। इसी दीवाने खास की दीवार पर अंकित वो प्रसिद्ध फारसी पंक्ति आज भी लोगों को आकर्षित करती है, अगर फिरदौस बर रूए जमीयस अमीयस्त अमीयस्त अमीयस्त, यानी धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। इसके बाद आता है रंग महल, जिसकी दीवारें कभी रंगों और शीशों की चमक से जगमगाती थी, और मोती मस्जिद सफेद संगमरमर से बनी ये छोटी लेकिन अत्यंत सुंदर मस्जिद अपनी सादगी और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। दूर से देखने पर ये मोती की तरह चमकती है, इसलिए इसका नाम मोती मस्जिद पड़ा। इन सभी इमारतों में भारतीय, फारसी और मुगल स्थापत्य कला का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यही कारण है कि वर्ष 2007 में लाल किले को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। लेकिन लाल किले की पहचान केवल उसके भव्य दीवारों से नहीं, बल्कि इन दीवारों ने वो समय भी देखा है जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था।

इन प्राचीरों ने स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष की गूंज सुनी है। इन हवाओं ने उन अनगिनत वीरों के सपनों को महसूस किया जिन्होंने अपने आज को हमारे कल के लिए समर्पित कर दिया। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, सरोजनी नायडू, अरुणा आसफ अली और ऐसे ही हजारों ज्ञात अज्ञात सेनानियों का त्याग हमारी राष्ट्रीय धरोहर का अभिन्न हिस्सा है।

15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ तब देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराकर स्वतंत्र भारत का संदेश दिया। तब से लेकर आज तक हर वर्ष राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है और पूरे देश को संबोधित किया जाता है। लाल किले से जब भी राष्ट्रीय ध्वज लहराता है तो वो हमें केवल स्वतंत्रता का उत्सव मनाने का अवसर नहीं देता बल्कि ये याद दिलाता है कि आजादी हमें विरासत में मिली है लेकिन इसकी गरिमा बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है।

आज लाल किला केवल एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान भी है। हर वर्ष यहाँ स्वतंत्रता दिवस समारोह, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अनेक ऐतिहासिक आयोजन होते हैं। देश विदेश से लाखों पर्यटक इसे देखने आते हैं और भारतीय इतिहास को करीब से महसूस करते हैं। शाम के समय यहाँ जो लाइट एंड साउंड शो होता है वो इतिहास को जीवंत बना देता है। लाल किला हमें सिखाता है, समय बदलता है, साम्राज्य बदलते हैं, लेकिन जो राष्ट्र अपनी संस्कृति, अपने इतिहास और मूल्यों को सहेज कर रखता है उसकी पहचान कभी नहीं मिटती। और धरोहरें केवल देखने की चीज नहीं होती, वे पीढ़ियों को जोड़ने वाली कड़ी होती है। आइए जब भी किसी ऐतिहासिक धरोहर के पास जाए उसे केवल कैमरे में नहीं अपने मन में भी संजो कर लौटे, क्योंकि लाल किला सिर्फ दिल्ली में खड़ी इमारत नहीं, वो भारत के स्वाभिमान की सबसे ऊंची प्राचीर है। चलो इतिहास की सुराहा पर जहां सम्मान के दीप जलते हैं, चलो उस भारत को जाने जहां सपने नहीं संस्कार पलते हैं। धरोहरों की यही कहानी हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, क्योंकि जो अपने अतीत को संजोता है वही भविष्य को सवारता है। आइए हम सभी संकल्प लें कि अपने देश की एकता, अखंडता, संस्कृति और विरासत की रक्षा करेंगे और आने वाली पीढ़ियों को भी अपने गौरवशाली इतिहास से परिचित करवाएंगे। क्योंकि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा दुश्मन दौरे जमा हमारा। इन्हीं भावों के साथ आज ऐसा देश है मेरा में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे अपने देश के किसी और अद्भुत धरोहर और उसकी अनकही कहानी के साथ।

अभी हमने सुना ऐसा देश है मेरा। और बहनों, अब कार्यक्रम से विदा लेने का समय नज़दीक आ गया है और स्टूडियो की घड़ी ने भी इशारा कर दिया है। तो चलते चलते एक छोटी सी बात, जैसे जैसे किसी मजबूत इमारत की नींव दिखाई नहीं देती, लेकिन वो छोटी सी नींव इतनी बड़ी इमारत को मजबूती देती है, वैसे ही हमारी छोटी छोटी अच्छी आदतें हमारे व्यक्तित्व की नींव बनाती हैं। इसीलिए आज से एक छोटी सी शुरुआत कीजिए, हर दिन अपने लिए कुछ नया सीखिए, अपने लक्ष्य के लिए थोड़ा समय निकालिए और कल से बेहतर बनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बड़ी सफलता हमेशा बड़े कदमों से नहीं होती बल्कि छोटे छोटे कदमों से बनती है। तो चलते रहिए, सीखते रहिए और खुद पर विश्वास रखिए। तो बहनों, अब चलते हैं गीत संगीत की ओर और सुनते हैं एक प्यारा सा गीत, आप और हम।

इस प्यारे से गीत के बाद बहनों कार्यक्रम आपको कैसा लगता है हमें जरूर बताइए। अपने प्रशंसा सुझाव शिकायतें हमें जरूर लिख भेजिए। और बहनों आप हमें ये बताने के लिए मैसेज कर सकती हैं, और मैसेज करने के लिए हमारा फ़ोन नंबर है 9457078288। तो बहनों हमें मैसेज ज़रूर कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। कार्यक्रम संपन्न करने की अपनी सखी मीनाक्षी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला जगत। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। श्रोताओं, समय दिन के 1:45 हुए हैं। लोक संगीत के कार्यक्रम लोकधारा में आज हम आपको सुनवा रहे हैं सुमित्रा रावत और साथियों के स्वर में गढ़वाली लोकगीत। तो लीजिए सुनिए कार्यक्रम का ये पहला लोकगीत।

कार्यक्रम लोकधारा में इस समय आप सुन रहे हैं सुमित्रा रावत और साथियों के स्वर में गढ़वाली लोकगीत, और लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का ये अंतिम लोकगीत।

0: अपना एक राष्ट्रीय दायित्व भी होता है। साथियों, आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्रों के विकास से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हो रहे हैं। उन्होंने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ये पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी।
0: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूं चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है फर्स्ट इन माई ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
1: श्री मोदी ने सोशल मीडिया के युग में उत्पन्न होने वाले विकर्षणों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को वेतन, नौकरी या कार्यक्षेत्र के आधार पर दूसरों से अपनी तुलना करने से बचना चाहिए।
0: जब हम बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए प्रारंभ करते हैं तो एक बड़ा डिस्ट्रक्शन भी हमारे सामने आता है। ये डिस्ट्रक्शन होता है एक दूसरे से कंपेरिजन का। लेकिन याद रखिए, जिंदगी कोई लीडर बोर्ड नहीं है, आपकी असली दौड़ किसी और से नहीं खुद अपने आप से है। हर दिन कल से बेहतर बनने की कोशिश करते रहिएगा।
1: इस अवसर पर शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण ने भारत के शिक्षा तंत्र को शिक्षार्थी केंद्रित, अनुसंधान आधारित और भविष्योन्मुखी बनाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के संस्थानों में नया आत्मविश्वास जगाया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने आईआईटी दिल्ली में परम प्रज्ञा नामक एक उच्च दक्षता की कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन भी किया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना और उन्हें कानूनी मान्यता देने से जुड़े मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य दिल्ली में विश्व स्तरीय निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए आधुनिक, पारदर्शी और प्रभावशाली कानूनी ढांचा तैयार करना है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इस विधेयक को मॉनसून सत्र के दौरान विचार और पारित करने के लिए दिल्ली विधानसभा में पेश किया जाएगा। झारखंड में आज जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध समाधान की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार और विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों के बीच विभिन्न समूहों के बीच उच्च स्तरीय वार्ता का दूसरा दौर आज आयोजित किया गया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: आज रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार द्वारा गठित मंत्रियों की विशेष कमेटी और छात्र संगठनों के बीच दूसरे दौर की वार्ता सकारात्मक माहौल में संपन्न हुई। सरकार की ओर से मंत्रियों ने स्पष्ट किया कि वे व्यापक परीक्षा सुधारों के लिए प्रतिबद्ध हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी भी जारी की है, जिस पर छात्र और सभी हितधारक अपने सुझाव भेज सकते हैं। सरकार इन सभी सुझावों के आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अंतिम निर्णय लेगी। हालांकि छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता पर संतोष जताया है, लेकिन कहा है कि मांगों पर ठोस और लिखित आदेश आने तक उनका शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच परीक्षा गड़बड़ी मामले की जांच कर रही सीआईडी ने भी अपनी कार्रवाई तेज कर दी है और आयोग के 3 वर्तमान सदस्यों को पूछताछ के लिए समन भेजा है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: मध्य प्रदेश के भोपाल में ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की बैठक आज से शुरू हुई। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में इस बैठक में सदस्य देशों की सांस्कृतिक विरासत, संग्रहालय, रचनात्मक अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक आदान प्रदान सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो रही है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भोपाल में 5 अगस्त से चल रहे ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक 2026 के तहत आज ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक हो रही है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में हो रही इस बैठक में दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया के संस्कृति मंत्री भी शामिल हैं। बैठक में ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की घोषणा, जिसे भोपाल डिक्लेरेशन के नाम से जाना जा

0: आएगा। साथ ही सांची कल्चर कनेक्ट पर भी चर्चा होगी। बैठक के बाद मंत्री और प्रतिनिधि सांची के विश्व धरोहर स्थल का भ्रमण करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से विपिन मिश्रा।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने विश्वास व्यक्त किया है कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन शहरी बैंकिंग क्षेत्र को आधुनिक, पारदर्शी और भरोसेमंद सेवाएं प्रदान करके उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। सहकारी समितियों में अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन एक केंद्रीय शासी या सहायक निकाय होता है जिसका गठन कई स्वतंत्र सहकारी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। मुंबई के फोर्ट क्षेत्र में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम के नए कार्यालय परिसर का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने ये बात कही। सहकारी क्षेत्र की शक्तियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि छोटे छोटे निवेश को जोड़कर बड़े कारोबार के लिए बड़ी पूंजी जुटाई जा सकती है।
2: मेरा जो कोऑपरेटिव का समझ है, बड़ा व्यापार करने के लिए छोटे छोटे लोगों की कोऑपरेटिव बनाकर छोटी पूंजी से बहुत बड़ी पूंजी निर्मित कर बड़ा व्यापार किया जा सकता है। अमूल आज 1,25,000 करोड़ का व्यापार करता है। इप्को, क्रिप्को, एक जमाने में लिज्जत पापड़, ये किसी में भी पूंजी का निवेश 50 रुपया से ज्यादा नहीं है। और आज अमूल विश्व का खाद्य पदार्थों का सबसे ज्यादा लोकप्रिय ब्रांड बन व्यापार कर रहा है।
1: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि बिहार से पहली बार GI टैग वाले मिथिला मखाना की 18 मीट्रिक टन खेप ऑस्ट्रेलिया भेजी गई है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दरभंगा में किसानों से सीधे खरीदी गई इस खेप से उन्हें बाजार मूल्य की तुलना में लगभग 18% से अधिक लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सहयोग से हासिल की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये लेख भारत के बढ़ते आत्मनिर्भर चिकित्सा प्रौद्योगिकी तंत्र को उजागर करता है जो घरेलू विनिर्माण, आयात पर कम निर्भरता और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना और मेडिकल डिवाइस पार्क जैसी पहलों से आगे बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई और 11 घायल हो गए। ये दुर्घटना सुबह करीब 7:15 बजे हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस बैरागढ़ से चंबा जा रही थी। चलवांज मोड़ के पास चालक ने बस पर नियंत्रण खो दिया और बस सड़क से उतरकर नीचे दूसरी सड़क पर गिर गई। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। मृतकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की खराब स्थिति को देखते हुए आज जम्मू से बालतल की ओर श्री अमरनाथ जी यात्रा रोक दी गई है। हालांकि बालतल से पवित्र गुफा की ओर यात्रा सामान्य रूप से जारी है। सुबह से 2,500 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। दर्शन के बाद श्रद्धालुओं को जम्मू की ओर जाने की अनुमति दी जा रही है। मौसम विभाग ने केरलम में मूसलाधार बारिश की आशंका को देखते हुए आज 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और शेष 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कल के लिए 4 उत्तरी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज राजस्थान और ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार आज लक्षद्वीप, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच हिमाचल प्रदेश, झारखंड और उत्तर प्रदेश में इस महीने की 10 तारीख तक तेज से बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में अगले 3 दिनों दिनों के दौरान तेज सतही हवाएं चलने की संभावना है। दिल्ली NCR में मौसम विभाग ने आज दिन भर बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया है। भानु प्रताप के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रेलवे ने ओणम के अवसर पर केरलम के लिए विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ाकर 112 कर दी है। इन विशेष रेलगाड़ियों का मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आवागमन होगा। एक रिपोर्ट। रेलवे ने ओणम के दौरान यात्रियों की सुविधा और अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए 14 अगस्त से 6 सितंबर के बीच अब तक 112 विशेष ट्रेन सेवाओं की घोषणा की है। इनमें से 38 विशेष ट्रेन दक्षिण रेलवे के अंतर्गत चलाई जाएंगी। दक्षिण रेलवे ने अन्य रेलवे जोन के लिए भी 16 अतिरिक्त विशेष ट्रेन की घोषणा की है। इसके अलावा अन्य रेलवे जोन भी इस दौरान 58 विशेष ट्रेन चलाएंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी। जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। उधमपुर में महिलाओं का एक समूह हर घर तिरंगा अभियान के तहत हाथ से राष्ट्रीय ध्वज और तिरंगे से जुड़ी सजावटी वस्तुएं तैयार कर रहा है। हरियाणा में हर घर तिरंगा अभियान और वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कल से 17 अगस्त तक विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास रात में रूस द्वारा किए गए मिसाइल हमले में एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई। क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन प्रमुख तिमूर तकाचेंको ने कहा कि बैलिस्टिक मिसाइल के हमलों में 3 लोग घायल भी हुए हैं। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत को पहला पदक मिला। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने रजत पदक अपने नाम किया। 19 वर्षीय आशीष ने 74.09 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। दक्षिण अफ्रीका के जॉन हैंड्रिक हैंसमैन ने स्वर्ण पदक जीता। अश्मिता चालिहा दक्षिण कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने आज सेमीफाइनल में हमवतन रक्षिता रामराज को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे उभरते क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता विकसित भारत की मजबूत नींव रखेगी। उन्होंने IIT के विद्यार्थियों से अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया। झारखंड सरकार ने JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ दूसरे दौर की वार्ता की। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक निजी बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत और 11 घायल। राजस्थान और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। जम्मू से बालतर की ओर अमरनाथ यात्रा खराब मौसम के कारण स्थगित। और पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। इस समय दिन के 2:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक ही गीतकार, और आज इस कार्यक्रम में गीतकार हैं गुलशन बावरा। श्रोताओं, अगर आपने अमिताभ बच्चन और प्राण की दमदार अदाकारी वाली फिल्म जंजीर देखी है तो उसका ये गीत दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए आपको जरूर याद होगा। मशहूर गीतकार गुलशन बावरा का लिखा यह गीत पर्दे पर उन्हीं पर फिल्माया गया था। उनका असली नाम था गुलशन कुमार मेहता, लेकिन दुनिया उन्हें गुलशन बावरा के नाम से जानती है। दरअसल बावरा उपनाम उन्हें फिल्म वितरक शांति भाई पटेल ने दिया था। 22 साल लंबे करियर में सिर्फ 240 गीत ही लिखने वाले गुलशन बावरा ने ये बताया कि मात्रा और गुणवत्ता का फर्क क्या होता है। तो आज चलिए कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं हम गुलशन बावरा के लिखे हुए इस बेहतरीन गीत के साथ।

श्रोताओं, अभी आपने सुना गुलशन बावला का लिखा हुआ ये गीत। और कार्यक्रम एक ही गीतकार में हमारे आज के गीतकार हैं गुलशन बावला। श्रोताओं, उनका जन्म 12 अप्रैल सन 1938 को शेखुपुरा में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। गुलशन बावला को फिल्मों में काम करने का बहुत शौक था और वो किसी तरह मुंबई आना चाहते थे। उन्होंने रेलवे में नौकरी के लिए अप्लाई किया तो उन्हें पोस्टिंग मिली मुंबई में, और बस फिर क्या था, अपनी पेटी संभाले वो साल 1955 में पहुंच गए मुंबई। कल्याण जी, आनंद जी वाले कल्याण जी तब अकेले ही कल्याण वीर जी शाह नाम से संगीत देते थे। उन्होंने फिल्म चंद्रसेना में गुलशन बावरा को पहला ब्रेक दिया, और जब बाद में कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी बनी तो गुलशन बावरा को अपने करियर का पहला हिट गीत तुम्हें याद होगा हम मिले थे कभी लिखने का मौका मिला।

शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम डीटीएच पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी रागम आनंद की अटूट रसधार।

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही गीतकार। और श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं गीतकार गुलशन बावरा के बारे में। श्रोताओं, भारत कुमार के नाम से पहचाने जाने वाले अभिनेता मनोज कुमार की फिल्म उपकार का गीत मेरे देश की धरती सोना उगले लिखकर गुलशन बावरा एक अमिट नाम बन गए। देशभक्ति से भरा ये गीत आज भी राष्ट्रीय पर्व पर हर गली मोहल्ले और सड़क पर बजता सुना जाता है। इस गीत के लिए गुलशन बावरा को साल 1967 में फिल्म फेयर अवार्ड प्राप्त हुआ था। इस गीत के लिखे जाने का श्रेय अगर गुलशन बावरा

रेलवे में मिली गुड्स क्लर्क की नौकरी को दिया जाए तो गलत नहीं होगा। दरअसल रेलवे के मालवाहक विभाग में गुलशन बावरा अक्सर पंजाब से आई गेहूं से लदी बोरियां देखा करते थे और वहीं पर कभी न भुलाई जाने वाली ये पंक्तियां उन्होंने लिख डाली, जो कि हिंदी सिनेमा के इतिहास में अमर हो गई। सही मायनों में इस गीत ने गुलशन बावरा को भारत की जनता के साथ जोड़ दिया।

श्रोता गुलशन बावरा ने कल्याण जी आनंद जी के निर्देशन में 69 गीत लिखे और एसडी बर्मन और आरडी बर्मन के साथ कुल 150 गीत। उन्होंने सनम तेरी कसम, अगर तुम ना होते, सत्य पे सत्ता, ये वादा रहा, हाथ की सफाई और रफू चक्कर जैसी हिट फिल्मों के लिए गीत लिखे। भावनाओं और संवेदनाओं को शब्द देने में गुलशन बावरा बड़े ही माहिर थे। उनका लिखा ये गीत श्रोताओं आज भी किसी गरीब हारे हुए प्रेमी की आवाज़ लगता है।

श्रोताओं, कार्यक्रम एक ही गीतकार में आज हम बात कर रहे हैं गीतकार गुलशन बाबला के बारे में। श्रोताओं, जिस तरह अपनी फिल्मों के लिए गीत लिखने के लिए राजेश खन्ना की जिद आनंद बख्शे के नाम की होती थी, उसी तरह अमिताभ बच्चन भी अक्सर अपनी फिल्मों के लिए गीत लिखने के लिए गुलशन बाबरा के नाम की पेशकश किया करते थे। श्रोताओं, गुलशन बाबरा की अंतिम फिल्म साल 1999 में आई जुल्मी थी और उनका लिखा हुआ अंतिम गीत अजय देवगन और तब्बू की फिल्म हकीकत का रहा। श्रोताओं, समय कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। अपनी लेखनी के द्वारा गुलशन बाबरा ने हमें अनगिनत बेहतरीन नगमे दिए, ऐसे नगमे जिनके शब्द आज भी हमारे साथ रिलेट करते हैं। और इसी तरह 7 अगस्त वर्ष 2009 को गुलशन बाबरा का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। श्रोताओं, उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार उनके मृत शरीर को जे अस्पताल को दान कर दिया गया। मतलब एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने पूरे जीवन बेहतरीन नगमे दिए, लोगों की भावनाओं संवेदनाओं को शब्द दिए और अंत में जाते जाते वो अपना शरीर भी जनहित में दान कर गया। कलम के ऐसे जादूगर को श्रोताओं, हमारा शत शत नमन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही गीतकार, जिसमें आज गीतकार थे गुलशन बाबरा। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के 3 बजे हैं। हमारी सभा के प्रसारण अब यहीं संपन्न होते हैं। संध्याकालीन सभा में शाम 5 बजे आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं, हमारी संध्याकालीन सभा के प्रसारण अब आरंभ हो रहे हैं। सभा की शुरुआत में प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत। श्रोताओं, कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं जानकारियां जिनके शीर्षक हैं सामाजिक सुरक्षा कल्याण योजनाएं, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना यानी PMSYM और दुकानदारों, व्यापारियों और स्वनियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी NPS ट्रेडर्स। श्रोताओ, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आज आपके साथ फैजुर रहमान और चलिए जानकारी शुरू करते हैं। तो श्रोताओ, पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में। श्रोताओ, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए भारत सरकार की एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है और इसके तहत 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर लाभार्थियों को 3,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन मिलती है। यानी ऐसे लोग जो आज अपने भविष्य के लिए सोच रहे हैं और आने वाले वक्त में जब उनकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो जाएगी, और ये वो स्थिति होती है जब व्यक्ति कमाने के लिए ज़्यादा श्रम करना नहीं चाहता या उसके बस की बात नहीं होती, ऐसे समय में कुछ अंशदान योजनाएं उनके लिए फ़ायदेमंद होती हैं। यानी अपनी ज़िंदगी में जब वो शुरू में पैसा जमा करने लगते हैं तो उन्हें उनकी आयु जो है 60 वर्ष होने पर 3,000 रुपये प्रति माह निश्चित पेंशन योजना मिलती हैं। तो श्रोताओ, इसकी विशेषता यही है कि 60 वर्ष की आयु जब लाभार्थी की हो जाएगी तो उसे प्रति माह 3,000 रुपये की निश्चित पेंशन मिलेगी। दूसरी, अगर हम बात करें तो श्रमिक जितनी भी राशि जमा करेगा उतनी ही राशि सरकार भी उसके खाते में जोड़ती रहेगी, यानी अपनी ओर से भी सरकार इसमें पैसा अंशदान करती रहेगी। श्रोताओ, इस योजना में 18 से 40 वर्ष के बीच के श्रमिक आवेदन कर सकते हैं। किसी भी श्रमिक के यानी मजदूर वर्ग के लोगों की आयु यदि 18 से 40 वर्ष है तो वो इस योजना में शामिल हो सकते हैं। श्रोताओ, इस योजना में उम्र के हिसाब से 55 रुपये से लेकर 200 रुपये प्रति माह तक का अंशदान करना होता है। यानी किसी की आयु यदि 18 वर्ष है तो उसे लगभग 55 रुपये, और यदि उसकी आयु 40 वर्ष है तो लगभग

200 रुपये, और इस बीच ये अंशदान अलग अलग हो सकता है। श्रोताओं, इस योजना की पात्रता की बात करें तो इस योजना में शामिल होने के लिए पात्रता है ऐसे लोग जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, जैसे रेहड़ी पटरी लगाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, घरेलू कामगार और निर्माण श्रमिक आदि हैं, यानी कि जो लोग कंस्ट्रक्शन वर्क में मजदूरी करते हैं, उनको भी इस योजना में शामिल किया गया है। श्रोताओं, ऐसे श्रमिकों की आय जो है वो लगभग 15,000 रुपये से कम होनी चाहिए, महीने की ये आय है। यदि उनकी आय 15,000 रुपये से कम है तो वो इस योजना के पात्र हैं। श्रोताओं, यदि कोई श्रमिक भाई इस योजना से जुड़ना चाहता है तो उन्हें अपने नज़दीकी CSC सेंटर जाना होगा और फॉर्म भरवाना होगा। फॉर्म के लिए अपना आधार कार्ड और बचत खाता, जनधन बैंक पासबुक साथ लेकर जाएं। तो श्रोताओं, ये थी हमारी जानकारी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना की। और बिल्कुल ऐसी ही एक और योजना है जो दुकानदारों के लिए, व्यापारियों के लिए और स्व नियोजित व्यक्तियों के लिए है, और ये भी एक राष्ट्रीय पेंशन योजना ही है। श्रोताओं, ये भी एक पेंशन स्कीम है और व्यापारियों को, दुकानदारों को, स्वनियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS स्टेटस प्रधानमंत्री लघु व्यापार मानधन योजना है। भारत सरकार की एक स्वैच्छिक और अंशदायी सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसके तहत 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर लाभार्थियों को न्यूनतम 3,000 रुपये प्रतिमाह की सुनिश्चित पेंशन मिलती है। इसमें भी बिल्कुल एक जैसा ही फॉर्मेट है श्रोताओं, ये भी, लेकिन जो पहली योजना थी वो श्रमिकों के लिए थी, ये है उन लोगों के लिए जो दुकानदार हैं, उनसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं लेकिन अपने भविष्य के लिए आने वाले समय में पैसा जोड़ना चाहते हैं, अपनी पेंशन बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये योजना है। श्रोताओं, इस योजना की विशेषता की बात करें तो 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये मासिक पक्की पेंशन मिलेगी। जितना पैसा लाभार्थी जमा करेगा उतना ही पैसा सरकार भी उसके खाते में जमा करेगी। श्रोताओं, यदि इस समयावधि में लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उसके जीवन साथी यानी उसकी पत्नी को पेंशन का आधा हिस्सा यानी ₹1500 हर माह मिलता रहेगा। पात्रता की बात करें तो श्रोताओं, लाभार्थी की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच है, जो कि पहली योजना भी बिल्कुल एक ही जैसी थी, और उसका वार्षिक टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए, और लाभार्थी किसी PMSYM यानी कि जो पहली योजना है हमारी उससे जुड़ा हुआ ना हो और ECIS योजना से भी जुड़ा हुआ ना हो। तो श्रोताओं, ये थी आज की हमारी जानकारियां, सामाजिक सुरक्षा कल्याण योजनाएं, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना और दुकानदारों, व्यापारियों और स्वनियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना। हमें उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और यदि आप इन योजनाओं से जुड़ना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी जनसेवा केंद्र जाएं और वहां पर अपना खाता खुलवाएं। कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है एक गीत का।

श्रोताओ, इसी गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत अब यहीं संपन्न होता है। अभी आप कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत सुन रहे थे। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:10 हुए हैं। आइए अब आपको हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें।

किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत का प्रसारण समय रहेगा हमारे केंद्र से आज शाम 6:05 पर। प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी का प्रसारण समय रहेगा आज शाम 6:50 पर। ये कार्यक्रम हम हमारे लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे भाग एपिसोड 4 और कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। सुगम संगीत का प्रसारण समय रहेगा आज शाम 7:32 पर। कार्यक्रम में श्रोता सुन सकेंगे सुमन कल्याणपुर के गाए भजन। आज शाम 8 हम रिले करेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से इस सप्ताह संसद में साप्ताहिक विधानमंडल समीक्षा हम हमारे लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। समय रहेगा आज शाम 8:20 पर। एक ही फिल्म के गीतों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा एक ही फिल्म से। समय रहेगा आज शाम 8:30 पर। आज रात्रि 9:30 पर हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होगा कार्यक्रम राष्ट्रीय संस्कृति पत्रिका संस्कृति भारती। आज रात्रि 10 हम हमारे दिल्ली केंद्र से ही रिले करेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। तो श्रोताओं, ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारियां। आइए अब आपको हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना का समय रहेगा कल सुबह 6:05 पर और कल सुबह 6:30 पर प्रसारित होगा श्री रामचरित मानस गान। कल सुबह 6:40 पर होगा चिंतन। काव्यधारा में

कल सुबह 6:45 पर श्रोता सुन सकेंगे श्री राजेश मिश्रा का काव्य पाठ। स्वास्थ्य चर्चा का प्रसारण समय रहेगा कल सुबह 7:05 पर और कार्यक्रम में होगी जानकारी जिसका विषय होगा लहसुन एक गुणकारी औषधि। खेती की बातें ये कार्यक्रम प्रसारित होगा कल सुबह 7:10 पर। कार्यक्रम में जानकारी का विषय होगा गेंदे की वैज्ञानिक खेती। कार्यक्रम सूरज के साथ साथ का प्रसारण समय रहेगा कल सुबह 7:31 पर। सामयिक चर्चा हम हमारे लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे कल सुबह 9:15 पर। कल 9:20 पर प्रसारित होगा लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है। कार्यक्रम में होंगे विविध कलाकारों के गाए रोहेलखंडी लोकगीत। श्रोताओं के पत्रों पर आधारित कार्यक्रम आपका पत्र मिला का प्रसारण समय रहेगा कल दोपहर 12:05 पर और फिल्मी संडे में होगी वर्ष 1993 में प्रदर्शित फिल्म दामिनी की फिल्मी स्टोरी। समय रहेगा कल दोपहर 12:30 पर। बाल वाटिका का प्रसारण समय रहेगा कल दिन में 1:15 पर और लोक संगीत के कार्यक्रम लोकधारा में होंगे बनारसी लाल झौरी के गाए राजस्थानी लोकगीत। कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा कल दिन में 1:45 पर। तो श्रोताओं ये थी हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारियां। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: कभी धूप की गर्माहट, कभी बारिश की फुहार, कभी खामोशी का सुकून, तो कभी किसी गीत की आवाज।
1: जिंदगी बिना कुछ ऐसी ही होती है, हर दिन एक जैसी नहीं होती।
0: लेकिन हर दिन में कोई ना कोई एक ऐसा पल जरूर होता है जो उसे यादगार बना ही देता है।
1: और हर शाम कुछ ऐसे ही पल हम भी लेकर हाजिर हो जाते हैं अपने दोस्तों के लिए, जिसमें कहानी, प्रेम कहानी और कुछ कहीं अनकहीं बातें।
0: तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी दोस्त और होस्ट मोनिका सैनी।
1: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम युववाणी में, और मैं हूं आपकी अपनी दोस्त उज्मा।
0: और आज है सैटरडे, यानी कि आपके फेवरेट सॉन्ग आपके लव्ड वंस के नाम करने का।
1: बिल्कुल, यानी कि आज है सेगमेंट गीत आपके नाम,
0: और जिसमें आप हमारे साथ मैसेजेस के जरिए जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आपको नोट करना है हमारा व्हाट्सएप नंबर।
1: और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288।
0: और इसी के साथ साथ आज आप आगे प्रोग्राम में सुनेंगे सैटरडे स्पेशल एक और प्रोग्राम जो होता है स्क्रैप बुक, जिसमें आज आप सुनेंगे सलोनी की जागृत से बातचीत।
1: और इसी के साथ साथ आप सुनेंगे मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया 80वें स्वतंत्रता दिवस के रनअप पर विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत दुर्गा भाभी के बारे में।
0: लेकिन लेकिन लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं ये जरूरी संदेश।
2: बदलो बदलो, आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम युववाणी, और आज का दिन भारतीय इतिहास के उन पन्नों में दर्ज है जब देश की आज़ादी की आवाज़ पहले से कहीं ज़्यादा बुलंद हुई थी।
0: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा उज्मा तुमने। आज है 8 अगस्त, यानी कि हम 8 अगस्त के दिन मनाते हैं भारत छोड़ो आंदोलन दिवस।
1: साल था 1942, देश अंग्रेजी हुकूमत की गुलामी में था, आज़ादी की चाह हर भारतीय के दिल में थी। इसी दौरान महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ एक ऐसा आंदोलन शुरू किया जिसने पूरे देश को एकजुट कर दिया।
0: 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था,
1: और महात्मा गांधी ने देशवासियों से साफ शब्दों में कहा, करो या मरो। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि आजादी के लिए भारतवासियों के दृढ़ संकल्प की आवाज थी।
0: और भारत छोड़ो आंदोलन ने देश के कोने कोने में स्वतंत्रता की भावना को और मजबूत किया। वो स्टूडेंट हो, यूथ हो, महिलाएं हो, किसान और हम जैसे आम नागरिक, हर किसी के लोगों ने इस संघर्ष में अपना अपना हिस्सा लिया।
1: बिल्कुल, और इस आंदोलन ने अंग्रेजी शासन को ये संदेश दिया कि अब भारत गुलामी की बेड़ियों से ज्यादा समय तक रहने वाला नहीं है आपकी बेड़ियों में।
0: और दोस्तों, इसी स्ट्रगल, त्याग और एकता का परिणाम था कि कुछ वर्षों बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ।
1: आज भारत छोड़ो आंदोलन दिवस पर हमें उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को याद करना चाहिए जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया,
0: और उनकी कुर्बानी हमें सिखाती है
1: एकता में ताकत है, साहस से बदलाव आता है, और देश के प्रति जिम्मेदारी हर नागरिक का कर्तव्य है।
0: तो आइए आज हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करें और अपने देश को बेहतर बनाने का संकल्प लें।
1: आज हमारे कुछ खास है आज में बस इतना ही। अब आपको लेकर चलते हैं हमारे सेगमेंट गीत आपके नाम की तरफ,
0: और देख लेते हैं पहला आज की शाम का मैसेज हमें कहां से मिला है और किसका मिला है। तो हमें मैसेज मिला है पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से, और भेजने वाले हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह।
1: और अगला जो मैसेज है वो हमें मिला है लाल कुर्ती रुड़की कैंट से, भेजने वाले हैं राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, युवान और आर के राज।
0: चलिए फिर दोस्तों, आज पहला शाम का ये पहला गीत नाम करते हैं अपने इन सभी दोस्तों का।

0: तो दोस्तों बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे
1: और अब आपको लेकर चलते हैं हमारे सेगमेंट स्क्रैप बुक की तरफ,
0: जिसमें आज आप सुनेंगे सलोनी की जागृत से बातचीत। तो उनकी क्या बात हुई ये तो पता चलेगा सुनकर ही, तो आइए चलिए सुनते हैं।
2: कुछ बातें डायरी में नहीं लिखी जाती, कुछ यादें कैमरे में नहीं कैद होती, लेकिन जिंदगी की स्क्रैप बुक में कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जो हर बार खुलते हैं तो चेहरे पर मुस्कान और दिल में ढेर सारी यादें छोड़ जाते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी रेडियो पार्टनर सलोनी और लेकर हाजिर हूं आपका सेगमेंट स्क्रैप बुक, जहां हर सवाल सिर्फ सवाल नहीं होता बल्कि एक याद, एक एहसास और एक छोटी सी कहानी छुपी होती है। और आज हमारे साथ हैं एक खास मेहमान जिनके साथ आज हम खोलेंगे जिंदगी का एक नया पन्ना। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे आज के गेस्ट का। सबसे पहले जान लेते हैं उनसे उनका नाम। आपका नाम?
3: मेरा नाम जागृत कुमार है।
2: तो चलिए दोस्तों बिना देर किए स्वागत करते हैं हमारे आज के खास मेहमान जागृत कुमार का। तो जागृत कैसे हैं आप?
3: मैं बिल्कुल सही हूँ।
2: तो जागृत बताइए आपको स्टूडियो में आकर कैसा लग रहा है हमारे साथ जुड़कर?
3: बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहले से आकाशवाणी की ये रेडियो सुनता आ रहा हूँ और मेरा सपना था यहाँ आने का, तो आज मैं आ चुका हूँ यहाँ पे।
2: तो इन वेरी जनरल वे हम बोल सकते हैं कि आज आपका एक छोटा सा ड्रीम कंप्लीट हुआ है, मतलब?
3: हाँ बोल तो सकते हैं।
2: तो जागृत बताइए क्या आज आप नर्वस हैं या एक्साइटेड हैं?
3: नर्वस भी हूँ एक्साइटेड भी हूँ।
2: तो अगर आप नर्वस हैं तो बिल्कुल मत होइए, क्योंकि यहाँ कोई सही या गलत जवाब नहीं होगा, बस बातें होंगी दिल से। तो दिल से बातें करने का सिलसिला हम यहीं से शुरू करते हैं। लाइक आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है और आपके घर में कौन कौन है?
3: मैं फजलपुर का रहने वाला हूँ। मंडावर से मैंने अपनी 12th कंप्लीट की है सेंट पॉल स्कूल से। और मेरे घर पे मेरे मम्मी पापा और दो बहनें हैं, एक दादी है मेरी, बस।
2: मतलब आपकी छोटी सी फैमिली एक हैप्पी फैमिली है?
3: जी हाँ।
2: आपने बोला कि आपने स्कूलिंग सेंट पॉल अकेडमी मंडावर से की है।
3: हाँ।
2: 12th के बाद क्या करने का सोचा है?
3: अभी तो मैंने BSc में एडमिशन लिया है वर्धमान कॉलेज में बिजनौर से।
2: ओके, तो मतलब आपकी ग्रेजुएशन की जर्नी अब स्टार्ट होगी।
3: हाँ।
2: आज की स्क्रैप बुक में हम आपके लिए लाए हैं 3 राउंड, जिसमें पहला है यादों की अलमारी। तो क्या आप स्क्रैप बुक के लिए रेडी हैं?
3: बिल्कुल रेडी हूँ।
2: तो हमारा पहला राउंड है यादों की अलमारी, मीन्स आपकी जो बचपन की मेमोरीज हैं उसका जवाब आपको देना है, वो भी मन से, दिल से, बिल्कुल सच्चाई के साथ। बचपन की कौन सी शरारत है जो आज भी याद करके हंसी आती है?
3: बचपन में मैं मम्मी को बहुत परेशान करता था स्कूल से आके। वो खाना खिलाने के लिए पीछे भागती थी लेकिन मैं ऐसे उनके हाथ नहीं आता था।
2: ओके, किस टीचर का डायलॉग आज भी याद है?
3: टीचर का डायलॉग, हमारे स्कूल में एक टीचर है अर्जुन सर, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर हैं। तो वो बोलते हैं कि अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तुम्हारी पिटाई होगी और घर पे तुम्हारे फोन किया जाएगा। यही उनका मेन डायलॉग है जिससे बच्चे डरते हैं।
2: मीन्स उनका स्पेसिफिक डायलॉग है कि पढ़ोगे नहीं तो घर फोन कर दूंगा।
3: हाँ यही।
2: घर में सबसे ज्यादा डांट किस बात पर पड़ी?
3: यही कि मैं बाहर घूमता हूँ।
2: तो कुछ सुधार किया?
3: जी सुधार तो किया है, अब नहीं घूमता।
2: ऐसी कौन सी चीज है जिसे आज तक संभाल कर रखा है?
3: मेरे फोटो है बचपन के, वो मेरे पास अभी भी है।
2: कभी ऐसा हुआ है कि किसी एक छोटी सी बात ने पूरा दिन खुश कर दिया हो?
3: ऐसा तो उसी दिन होता था जब मेरा रिजल्ट आता था। तो जब रिजल्ट मिलता था और देखता था कि पास हूँ तो बहुत खुशी होती थी।
2: अगर एक दिन के लिए आपको फिर से स्कूल जाने का मौका मिले तो क्या करना चाहोगे आप?
3: तो मैं अपने दोस्तों के साथ फिर से वही लंच

0: मैं उनके साथ मस्ती करूंगा।
1: यही तो स्क्रैप बुक है दोस्तों, जहां जवाब के पीछे हर कहानी छुपी होती है। कैसा लगा आपको फर्स्ट राउंड?
0: काफी एंटरटेनिंग था।
1: सेकंड राउंड आपके लिए वेट कर रहा है। तो हमारा सेकंड राउंड है रैपिड फायर राउंड, जिसमें हम आपको दिस और दैट्स टाइप क्वेश्चन पूछेंगे और आपको इसके लिए बस 3 सेकंड का ही टाइम मिलेगा और आपको जवाब झट से देना है। तो क्या आप रेडी हैं?
0: रेडी।
1: तो आपको क्या पसंद है, बारिश में भीगना या खिड़की से देखना,
0: बारिश में भीगना।
1: सेल्फी या बैक कैमरा फोटो,
0: बैक कैमरा।
1: ऑनलाइन शॉपिंग या मार्केट,
0: मार्केट।
1: किताब या पॉडकास्ट,
0: किताब।
1: सुबह की सैर या शाम की वॉक,
0: शाम की वॉक।
1: आइसक्रीम या कुल्फी,
0: कुल्फी।
1: पहाड़ या मूवी,
0: पहाड़।
1: मूवी या क्रिकेट,
0: क्रिकेट।
1: ट्रेन का सफर या फ्लाइट,
0: ट्रेन का सफर।
1: घर की बालकनी या छत,
0: घर की छत।
1: रील बनाना या रील देखना,
0: रील देखना।
1: पुराने गाने या नए गाने।
0: पुराने गाने।
1: हम इस रैपिड फायर राउंड को थोड़ा सा ब्रेक देते हैं और आपसे पूछते हैं कि आपकी कोई फरमाइशी पसंद का कोई पुराना सा सॉन्ग जो आपको अभी भी पसंद हो।
0: जी हाँ, एक गाना है, चांद से पर्दा कीजिए। तो जब भी मैं ट्रैवलिंग करता हूँ उसी गाने को सुनता हूँ।
1: तो बिना देर किए पूरी करते हैं आपकी फरमाइश और सुनते हैं ये प्यारा सा सॉन्ग।

0: वापस से चलते हैं स्क्रैप बुक में हमारे राउंड टू की ओर, जो था दिस और दैट राउंड। तो रेडी हैं आप?
1: हाँ रेडी।
0: तो आपने अपनी पसंद का सॉन्ग भी सुन लिया, हमारे लिसनर्स को भी काफी पसंद आया वो। तो अब आप आगे जवाब दीजिए कि सुबह की चाय या शाम की चाय,
1: सुबह की चाय,
0: लिखना या पढ़ना,
1: पढ़ना,
0: हंसना या हंसाना,
1: हंसना,
0: क्रिकेट या बैडमिंटन,
1: क्रिकेट,
0: क्रिकेट या रनिंग,
1: क्रिकेट,
0: क्रिकेट या मूवी,
1: क्रिकेट,
0: क्रिकेट या ट्रैवलिंग।
1: क्रिकेट।
0: आई थिंक आपको क्रिकेट से कुछ ज्यादा ही लगाव है।
1: हाँ मतलब मैं क्रिकेट देखता हूँ, खेलता हूँ, मैं क्रिकेट से प्यार है एक अलग ही,
0: तो क्रिकेट में इंटरेस्ट कब से बना?
1: बचपन से ही।
0: दोस्तों अब वक्त है दिमाग की हल्की सी एक्सरसाइज का। देखते हैं हमारे मेहमान कितनी जल्दी पहेलियां सुलझा पाते हैं। बिल्कुल नियम आसान है। मैं सबसे पहले आपसे एक पहेली पूछूंगी जागरे, तो क्या आपने पहेली पहले सुनी है?
1: हाँ सुनी तो है,
0: तो जवाब भी दे पाएंगे?
1: शायद दे
0: ठीक है,
1: पाऊंगा।
0: तो जागृत हमें बताइए, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी सूखती है उतनी ही गीली होती है?
1: शायद से तौलिया।
0: बिल्कुल सही जागृत, आपने तो बिल्कुल सही जवाब दिया है। लगता है आपके साथ पहेली खेलने में बहुत ही मजा आएगा। तो हमारी अगली पहेली है, ऐसी कौन सी चीज है जो आपके पास आती तो है लेकिन किसी के लिए कभी भी रुकती नहीं है?
1: समय।
0: बिल्कुल सही जागृत, आपने सही जवाब दिया है। समय हमारे पास आता है लेकिन किसी के लिए रुकता नहीं है। ऐसी कौन सी चीज है जो ऊपर भी जाती है और नीचे भी आती है लेकिन अपनी जगह से कभी नहीं हिलती?
1: सीडी।
0: बिल्कुल सही जागृत। वो क्या है जो जितना भरा जाता है उतना हल्का होता जाता है?
1: इसका जवाब मुझे शायद पता नहीं है।
0: तो इसका जवाब हम आपको बता दें जागृत, इसका जवाब है गुब्बारा यानी बैलून।
1: हाँ
0: वो क्या चीज है जो आपका पीछा करती है लेकिन अंधेरा होते ही गायब हो जाती है?
1: ये तो बहुत सिंपल है, परछाई।
0: बिल्कुल सही दोस्तों, परछाई यानी आप।

0: सिर है, पूंछ है, लेकिन शरीर नहीं।
1: शायद मुझे नहीं पता।
0: तो जागृत, इसका जवाब हम आपको बता दें, इसका जवाब है सिक्का। तो जागृत, हमारे तीनों राउंड्स कंप्लीट हुए। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। आपको कैसा लगा हमारा सेगमेंट स्क्रैप बुक?
1: बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा यहाँ पे आके। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके सवालों में, और आपकी इन बातों ने मुझे बहुत अच्छा फील कराया।
0: तो आज का कोई स्पेशल मोमेंट जो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा?
1: हाँ, ये पहले वाला गेम, ये
0: ओके
1: बहुत
0: ओके दोस्तों, सच में कुछ जवाब ऐसे होते हैं जो सुने नहीं जाते, महसूस भी किए जाते हैं। और यही तो है स्क्रैप बुक, जहाँ हर पन्ना किसी नई कहानी का हिस्सा बन जाता है। हमारे खास मेहमान को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपनी यादें और दिल की बातें हमारे साथ साझा की। दोस्तों, अगर आपको भी आज के सवालों ने अपनी किसी याद तक पहुंचा दिया हो, तो समझ लीजिए हमारा आज का सफर सफल रहा। इसी के साथ दोस्तों, मुझे यानी सलोनी को दीजिए इजाजत इस सेगमेंट से विदा लेने की। फिर मिलेंगे स्क्रैप बुक के एक और नए पन्ने के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, यादें संजोते रहिए। बहुत बहुत थैंक यू जागृत।
1: थैंक यू मैम।
2: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
3: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
4: हो जाओगे एहसास कर लोट पोट,
3: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
5: और डोज में क्या है?
4: डोज में है मजा।
3: जी हाँ, मजा आ गया।
6: और भाई खन्ना साहब, आपने बताया नहीं आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं?
7: अरे बड़ा बेटा SBI में, उसकी पत्नी एक्सिस में, छोटा बेटा PNB में, उसकी पत्नी HDFC में।
6: अच्छा,
7: और रही बेटी की बात, वो YES BANK में।
6: इसका मतलब सब सेटल हो गए?
7: अरे नहीं भाई, सब लाइन में खड़े हैं।
3: जी हाँ, मजा आ गया।
8: चलिए दोस्तों, अब आपको लेकर चलते हैं 80वें स्वतंत्रता दिवस के रनअप पर विशेष कार्यक्रम की तरफ, जिसमें आज आप सुनेंगे दुर्गा भाभी के बारे में।
6: बिल्कुल, और जिसके लिए हम अपने दोस्तों को ले चलते हैं स्टूडियो के बाहर और जानते हैं कि आखिर हमारे जो यूथ हैं, वो आज के जो हमारे नौजवान हैं, वो हमारे इन स्वतंत्रता सेनानी को आखिर कितना जानते हैं। दोस्तों, हम लेकर आ गए हैं आपके लिए अपना खास सेगमेंट मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, जहां हम बात करते हैं उन महान स्वतंत्रता सेनानियों की, जिनके साहस और बलिदान ने भारत की आज़ादी की लड़ाई को नई दिशा दी थी। आज हम बात करेंगे दुर्गा भाभी की, जिनका असली नाम दुर्गा देवी था। आइए जानते हैं कि हमारे शहर के लोग उनके बारे में कितना जानते हैं, खास करके हमारे यूथ।
8: दोस्तों, अब हम स्टूडियो से बाहर आ गए हैं और अब देखते हैं हमारे शहर में ऐसे कितने लोग मिलते हैं जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जानते हैं, और ये भी पता चलेगा कि कितना जानते हैं। क्यों उज्मा?
6: बिल्कुल, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही की। तो चलो मोनिका, बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं अपने दोस्तों से।
8: बिल्कुल बिल्कुल,
6: अब उनका नाम तो वही बताएंगी, तो चलिए जान लेते हैं उनसे उनका प्यारा सा नाम। तो दोस्त, क्या नाम है आपका?
7: सुहाना।
6: सुहाना, क्या करती हैं आप?
7: कॉलेज में पढ़ती हूं।
6: आप कॉलेज में पढ़ती हैं? सुहाना, क्या आप हिस्ट्री में रुचि रखती हैं?
7: जी थोड़ी बहुत।
6: थोड़ी बहुत, तो क्या आपने दुर्गा भाभी का नाम सुना है?
7: जी, वो एक स्वतंत्रता सेनानी है।
6: बिल्कुल सही जवाब, वो वाकई एक स्वतंत्रता सेनानी है। सुहाना, क्या आपको पता है कि दुर्गा भाभी ने भगत सिंह को अंग्रेजों से बचाने में कितनी मदद की थी?
7: जी हाँ, बस थोड़ा थोड़ा जानते हैं, अच्छे से नहीं जानते पूरा।
6: कोई बात नहीं, पूरा आपको मैं बता देती हूँ। 1928 में जब लाहौर में पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स की हत्या के बाद अंग्रेज भगत सिंह को खोज रहे थे ना, तब दुर्गा भाभी ने उन्हें अपने पति का रूप देकर और खुद उनकी पत्नी बनकर ट्रेन से सुरक्षित बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और यही उनके

0: साहस की अद्भुत मिसाल थी।
1: वाकई ये तो बहुत बड़ी बात है, हमें इनके बारे में पता होना चाहिए।
0: बिल्कुल, और अब मुझे लगता है कि आपको इनके बारे में अच्छे से पता चल गया होगा।
1: जी बिल्कुल।
0: तो सुहाना, अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुहाना, हमें तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।
1: थैंक यू।
0: तो दोस्तों, हमें हमारी एक और साथी मिल गई है।
2: सबसे पहले हम जान लेते हैं इनसे इनका नाम। तो आपका नाम?
1: अजफी।
0: अजफी, बड़ा प्यारा नाम है। अजफी, क्या करती हैं आप?
3: विद्यार्थी हूँ।
0: तो आप इतिहास में रुचि रखती हैं?
1: जी बिल्कुल।
0: तो आपने दुर्गा भाभी का नाम सुना है?
3: जी सुना भी और पढ़ा भी है उनके बारे में थोड़ा बहुत।
0: मतलब आपने उनके बारे में थोड़ा सुना भी है और थोड़ा पढ़ा भी है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप हमें बता सकती हैं कि दुर्गा भाभी का संबंध किस क्रांतिकारी संगठन से था?
3: शायद भगत सिंह के साथ काम करती थी।
0: बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। दुर्गा भाभी जो थी वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA से जुड़ी हुई थी, और उस टाइम वो क्रांतिकारियों को रहने की जगह प्रोवाइड कराती थी, उन तक संदेश पहुंचाती थी और भी चीज़ों में उनकी मदद करती थी। और उस टाइम पर, उस दौर में ये सब बहुत ही जोखिम भरा था, है ना?
3: अब मुझे सच में ऐसे लग रहा है उनके बारे में और भी जानना चाहिए हमें।
0: बिल्कुल अजफी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमें अपने जो हमारे देश के लोग हमारे लिए इतना कुछ करके गए हैं उनके बारे में जानना चाहिए, उन्होंने हमारे लिए क्या किया, ये सब चीज़ों का हमें पता होना चाहिए।
3: जी, सबको पता होना चाहिए इस बारे में।
0: अजफी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।
3: थैंक यू।
2: उसमें चलो, इनसे बात करके तो अच्छा लगा, अब आगे देखते हैं। हमें एक और साथी मिली हैं, तो अब उनसे भी उनका टाइम लेने का वक्त है।
0: बिल्कुल। तो दोस्त, क्या नाम है आपका और आप क्या करती हैं?
4: मेरा नाम जूनी है और मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं अभी बीएड कर रही हूँ।
0: बहुत ही अच्छी बात है कि आप बीएड कर रही हैं और बहुत ही प्यारा सा आपका नाम है जूनी। तो जूनी, क्या आप हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखती हैं?
4: जी हाँ, थोड़ा बहुत तो रखती हूँ, बट मेरा सब्जेक्ट नहीं है तो इसलिए मुझे थोड़ा बहुत ही इंटरेस्ट है उसमें।
0: जूनी, क्या आप दुर्गा भाभी को जानती हैं?
4: नहीं, मैं उनको नहीं जानती।
0: क्रांतिकारी संगठन से जुड़ी हुई थी और भगत सिंह के साथ काम करती थी, तो अब आप उनके बारे में कुछ बता सकती हैं?
4: अच्छा, ये वही है ना जिन्होंने आज़ादी के बाद बच्चों के लिए स्कूल खोले थे?
0: बिल्कुल सही। और क्या जानती हैं आप उनके बारे में?
4: ये एक अच्छी, मतलब वो थी, स्वतंत्रता सेनानी थी हमारे देश के लिए। उन्होंने बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए बहुत कुछ किया था, स्कूल वगैरह खोले थे और समाज की सेवा में इन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया था।
0: बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगी इनके बारे में?
4: मैं यही कहना चाहूँगी, बस सच्चे देशभक्ति की एक यही पहचान होती है और ये एक सच्ची देशभक्त थी।
0: बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, ये वाकई एक सच्ची देशभक्त थी। तो जूनी, हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
4: थैंक यू, आपका भी।
0: कोई भी किसी से कम नहीं है अगर हमारे देश पर बात आ जाए।
2: साल था 1942, देश अंग्रेजी हुकूमत की गुलामी में था, आज़ादी की चाह हर भारतीय के दिल में थी। इसी दौरान महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ एक ऐसा आंदोलन शुरू किया जिसने पूरे देश को एकजुट कर दिया।
0: बिल्कुल, 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ।
2: इसी समय क्रांतिकारी आंदोलन में एक नाम जो लिया गया वो था दुर्गा भाभी, और जिनका असली नाम दुर्गा देवी वोरा था।
0: और दोस्तों, दुर्गा भाभी सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं थी, बल्कि वे उन वीरों की साथी थी जो देश के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार थे,
2: और उनकी कुर्बानी हमें ये सिखाती है कि एकता में ताकत है, साहस से बदलाव आता है और देश के प्रति जिम्मेदारी हर नागरिक का कर्तव्य है।
0: बिल्कुल, दुर्गा भाभी और उनके जैसे क्रांतिकारियों की वजह से ही भारत की आज़ादी की नींव मजबूत हुई। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक व्यक्तित्व की कहानी के साथ।
2: दोस्तों, अब आपको लेकर चलते हैं हमारे सेगमेंट गीत आपके नाम की तरफ, जिसमें हमारे पास लगातार मैसेज आ रहे हैं। तो अगला मैसेज हमें मिला है जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से, और भेजने वाले हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। एक और मैसेज हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे जो हमें मिला है किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से। भेजने वाले हैं नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन, सुहेल हसन, अनम यशव और रसीद वारसी।
0: बिल्कुल, और इसी के साथ हमारे एक और साथ

0: ने हमें मैसेज लिख भेजा है और भेजने वाले हैं। ये मैसेज हमें दोस्तों मिला है मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से। भेजने वाले हैं मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर। इसी के साथ हमारे एक और साथी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने हमें अपना मैसेज लिख भेजा है और ये हमें मैसेज मिला है रामपुर रोड हल्द्वानी जिला नैनीताल से। भेजने वाले हैं गंगा सिंह रावत।
1: तो चलो फिर उज्मा, इन सब दोस्तों के नाम करते हैं अपने प्रोग्राम का ये अगला गीत।
0: बिल्कुल।

0: मुस्कुराएंगे।
1: हो जाओगे आसास कर लोट कोट,
0: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
2: और डोज में क्या है?
1: डोज में है मजा। जी हाँ, मजा आ गया।
3: वैसे आज की पार्टी की तारीफ तो करनी पड़ेगी, बड़ी शानदार पार्टी है ना।
4: बिल्कुल, मजा ही आ रहा है।
3: बिल्कुल, वो देख रहे हो, वो जो आदमी 1 घंटे से भी ज्यादा से नाच रहा है।
4: हाँ हाँ, देख तो रहा हूँ, पागलों की तरह नाच ही जा रहा है, नाच ही जा रहा है।
3: पता है 10 साल पहले ना इसने मुझे प्रपोज किया था।
4: अच्छा जी, और तुमने क्या कहा था?
3: क्या करना था, रिजेक्ट कर दिया था, और क्या करती।
4: बताओ भाई, 10 साल पहले रिजेक्ट किया था और आज तक सेलिब्रेट कर रहा है।
1: जी हाँ, मजा आ गया।
5: जी हाँ, मजा आ गया। हमें उम्मीद है आपको मजा जरूर आया होगा। तो चलिए फिर अपने गीत आपके नाम सेगमेंट को कंटिन्यू करते हैं और अपने मैसेजेस को शामिल करते हैं। अगला मैसेज हमें मिला है जलालाबाद वेस्ट से। भेजने वाले हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा। और एक और मैसेज हमें मिला है मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से। भेजने वाले हैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी कालपी वाले, कमरुनिशा, सबिश्ता मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी।
3: और इसी के साथ हमारे और भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं। और अगला मैसेज जो मिला है हमें मिला है कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लाहौरा बालोद छत्तीसगढ़ से। भेजने वाले हैं देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी पूजा तामुरिया, राधिका, प्रभा देवी तामुरिया और पोता मास्टर

टाइम को देखते हुए अगला मैसेज देखते हैं, जो कि हमें मिला है ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से। भेजने वाले हैं रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, बंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। तो उज्मा इनको ये अगला गीत डेडिकेट करते हैं, फिर सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: तो दोस्तों, ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम। हमें उम्मीद है आपको पसंद ज़रूर आया होगा। हमारे प्रोग्राम्स आपको कैसे लग रहे हैं आप हमें ख़त के ज़रिए बता सकते हैं। और ख़त भेजने के लिए हमारा पता है, कार्यक्रम युववाणी अनुभाग द्वारा, केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड 246763।
1: और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288। और आप हम सभी प्रोग्राम से अपडेटेड रहने के लिए हमारे इंस्टाग्राम आईडी, यूट्यूब चैनल और फेसबुक अकाउंट है आकाशवाणी नजीबाबाद। इसी के साथ अपनी साथी मोनिका सैनी और उज्मा को दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति। नमस्कार।

अभी आप युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी सुन रहे थे। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने को हैं, कुछ ही क्षणों में समाचार होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाती है।
1: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग हैं और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश के सभी सहकारी बैंकों से राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम में शामिल होने का आग्रह किया है। ये निगम देश के सहकारी बैंकों का एक प्रमुख संगठन है। उन्होंने मुंबई फोर्ड क्षेत्र में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम के नए कार्यालय परिसर का उद्घाटन करने के बाद ये बात कही। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि समुद्री क्षेत्र में भारत की प्रगति में नाविकों की भूमिका सबसे प्रमुख है। मुंबई में नाविकों की सुरक्षा और कल्याण पर एक कार्यक्रम में श्री सोनोवाल ने कहा कि भारत दुनिया के प्रमुख समुद्री देशों में से एक बनकर उभरा है। इस अवसर पर

0: व्यापक डिजिटल समुद्री गवर्नेंस प्लेटफॉर्म ई समुद्र का भी शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य नाविकों, नौवहन कंपनियों, बंदरगाहों, सेवा प्रदाताओं और समुद्री क्षेत्र से जुड़े लोगों को पारदर्शी और नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करना है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। श्री जोशी ने कहा कि ये आंकड़ा दर्शाता है कि भारत स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति कर रहा है। सरकार ने उद्योग जगत के प्रमुख कारोबारियों और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली कैश फ्री पेमेंट्स, डार्विन डायनामिक्स, वर्ल्ड इंडिया, कोर्स 24 और काउंसिल फॉर स्टार्टअप के साथ कई रणनीतिक समझौता ज्ञापनों की घोषणा की है। इन समझौता ज्ञापनों पर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्टार्टअप्स के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे के सहयोग को मजबूत करना है। झारखंड में आज जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध समाधान की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के विभिन्न समूहों के बीच आज दूसरे दौर की उच्च स्तरीय वार्ता हुई।
1: सरकार की ओर से मंत्रियों ने स्पष्ट किया कि वे व्यापक परीक्षा सुधारों के लिए प्रतिबद्ध हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी भी जारी की है, जिस पर छात्र और सभी हितधारक अपने सुझाव भेज सकते हैं। सरकार इन सभी सुझावों के आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अंतिम निर्णय लेगी। हालांकि छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता पर संतोष जताया है, लेकिन कहा है कि मांगों पर ठोस और लिखित आदेश आने तक उनका शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी रांची।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मेडिकल डिवाइस कॉन्फ्रेंस 2026 में सीईओ गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में नवाचार, नियामक उत्कृष्टता, घरेलू विनिर्माण, मूल्य श्रृंखला, बाजार पहुंच और निर्यात को मजबूत करने के दृष्टिकोण पर चर्चा हुई। यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ सशस्त्र बलों ने सैन्य अभियान शुरू कर दिए हैं। यमन सशस्त्र बलों के प्रवक्ता कर्नल माजिद अल नुजैली ने कहा कि हूती विद्रोहियों के बार बार हमलों के बाद सरकारी बलों और नागरिकों की सुरक्षा के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। अश्मिता चालिहा कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंच गई हैं। अश्मिता का मुकाबला कल फाइनल में चीन की क्यू हान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कार्यक्रम कृषि जगत सुनने वाले सब बहन भाइयों को आपके भैया सुवेंद्र सिंह झुमरू
1: और भैया प्रमोद सिंह की
0: राम राम। तो प्रमोद भाई,
1: हाँ झुमरू भैया,
0: अरे कैसे हाल चाल है भाई? सब राज्य खुशी?
1: हाँ भैया, सब ठीक ठाक है। तुम अपने सुनाओ, सब राज्य खुशी?
0: बिल्कुल भाई, देखो खेती बाड़ी बहुत बढ़िया चल रही है।
1: हाँ
0: और
1: हाँ
0: भैया आज जो मौसम साफ हो गया है भाई, तेज धूप निकली है,
1: हाँ भैया,
0: तो भैया बहुत ही बढ़िया लग रहा है।
1: हाँ भैया, देखो अच्छा तो लगेगा ही, और अच्छा तो भैया नूबी लग रहा है। किसान भाइयों के बीच में आकर बैठे हैं, बातचीत करनी शुरू कर दी। और देखो किसान भाइयों सोच रहे होंगे कि भाई आज भला कार्यक्रम है, हम उन्हें क्या सुनवाने वाले।
0: मैं देखो, जहां तक बात है कार्यक्रम की, तो भैया आज दिन है शनिवार का,
1: बिल्कुल
0: और अब प्रत्येक शनिवार को हमारे किसान भाई सुन रहे हैं भैया लोकगीत व रागनियों का फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो लोकमंजरी।
1: बिल्कुल। तो देखो ये कार्यक्रम हम अपने किसान भाइयों के लिए लेकर आए हैं। किसान भाई हमारे पास में फोन करके अपनी पसंद की रागनी लो

0: गीत तो सुनेंगे, पर एक बात बताओ।
1: अरे भैया नंबर तो बता दो।
0: चलो भैया तुम कह रहे हैं नंबर भी बता ही दे रहे हैं, नंबर तो बताना ही है। नंबर है 94-570-78-288।
1: ठीक।
0: और भैया हमारा दूसरा नंबर है 01-34-123-0105।
1: जी बिल्कुल
0: नंबर नोट हो गया
1: बिल्कुल।
0: भाई। एक बात बताओ।
1: पूछो भैया।
0: बात यू है, देखो खेतों में इस टाइम फसल तो बढ़िया खड़ी।
1: बहुत बढ़िया खड़ी है। देखो धान की फसल भी अच्छी बढ़वार कर रही है।
0: हाँ हाँ हाँ
1: और वह गन्ने की फसल की बंधाई चल रही है।
0: हाँ
1: और भैया जो चारे वाली फसल है भैया, वो उनकी तो हम काट काट कर ला रहे हैं भैया।
0: देखो यू काम तो करना ही है और चल भी रहा।
1: बिल्कुल।
0: पर भैया हमारे किसान भाई उर्वरकों का प्रबंधन भी तो कर रहे हैं खेतों में इस टाइम।
1: भाई देखो जहां तक बात है उर्वरकों का प्रयोग, तो भाई यू हम बहुत ही सावधानी के साथ में करना हो।
0: हाँ
1: और भाई इसमें देखो पहली बात तो ये हो कि भैया आजकल जो उर्वरक भैया महंगे हैं,
0: बिल्कुल
1: है ना
0: बिल्कुल।
1: भैया, तो अगर हम सोच समझ कर और संतुलित मात्रा में प्रयोग करेंगे
0: जी
1: तो एक तो भैया सबसे पहली बात तो सीधा सीधी सी बात है कि भैया हमारा खर्चा कम होगा, है
0: हाँ
1: ना भैया। और दूसरी बात ये होगी भैया, अगर हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जरूरत से ज्यादा अगर इस्तेमाल करते हैं,
0: जी
1: तो भैया हमारे वातावरण को, हमारे पर्यावरण को और हमारे खेत की मट्टी को भैया इसे नुकसान हो वह।
0: ठीक बात आपने बताई। और देखो एक बात और है भाई, अपनी मर्जी से कोई भी खाद उर्वरक दवाई हमें अपने खेतों में नहीं डालनी चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: जैसे भाई तुमने अभी बताया कि भाई ये सब बहुत महंगे, अब भाई एक बार खरीदने में ही सोचना पड़ेगा है।
1: और
0: तो इसलिए भैया कोई भी रसायन अपनी मर्जी से ना खरीदें, बल्कि कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर ही हमें खरीदना चाहिए। और भैया खरीद कर फिर उसको हमें जब छिड़काव करना है उसका,
1: हाँ हाँ
0: तो
1: हाँ
0: उस टाइम पे भी कुछ सावधानी बरतने की जरूरत होए कराए।
1: भाई देखो अगर हम बुरकाव करते हैं या भैया छिड़काव करते हैं
0: जी जी
1: तो
0: जी
1: उसमें भैया हम सावधानी बरतनी है। और जहां तक भैया बात है बुरकाव करने की,
0: जी
1: और भैया जैसे मान लो यूरिया है और भैया डीएपी तो हम बोए में इस्तेमाल करते हैं, तो मान लो खड़ी फसल में अगर हम यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो भैया उसमें हमें ध्यान यो रखना है कि भैया पूरे खेत में एक समान रूप से यूरिया का बुरकाव हो।
0: जी जी
1: अब भैया
0: जी
1: ऐसा ना हो कि भैया कहीं तो दो
0: ज्यादा
1: दो दो बार हमने डाल दिया
0: हाँ
1: और कोई हमारी जो लाइन ऐसी रहेगी भैया उसमें एक बार
0: एक
1: भी नहीं।
0: बार भी ना डला।
1: तो इस बात का हम ध्यान रखें, समान रूप से समान पौधे तक भैया अगर उर्वरक की मात्रा पहुंचेगी उर्वरक की, तो इस वानस्पतिक वृद्धि होगी, बढ़वार बढ़िया होगी और हमें उत्पादन बढ़िया मिलेगा।
0: ये बात तो तुमने ठीक कही। अब भाई देखो कुछ ऐसे रसायन हैं जिनका हमें भैया पानी में घोल के छिड़काव करना होए कराए,
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल।
0: उनको भी भैया देखो प्रयोग में जब हम ला रहे हैं तो उस टाइम पर कुछ सावधानी बरतने की जरूरत होए कराए। भाई वो रसायन है हमारे शरीर को लग गया तो नुकसान हो सका है,
1: बिल्कुल।
0: इसलिए भैया सुरक्षात्मक तरीके से हमें उसका छिड़काव करने की जरूरत है।
1: अब भाई सबसे पहली बात तो देखो उसमें यह हो कि हम जितने क्षेत्रफल के लिए वो रसायन लाए हो तो भैया उसी हिसाब से हमें घोल तैयार करना है
0: बिल्कुल
1: ना भैया।
0: जी
1: और फिर उस घोल को तैयार करके भैया हम टंकी में वो दवाई डालनी है
0: जी जी जी
1: उसी अनुपात के हिसाब से। और जब भैया हम उसका इस्तेमाल करें,
0: जी
1: यानी कि खेत में उसका छिड़काव करें, तो भाई सबसे पहली बात तो यह हो कि हमें सावधानी बरतनी है।
0: हाँ हाँ
1: और क्या बरतनी है भैया, वो सावधानी यह हो कि भाई एक तो हमारी आंखों में चश्मे होने चाहिए,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: साथ ही भैया हाथों में दस्ताने होने चाहिए। और भैया अगर हाथ पैर भैया भैया कहीं भी वो रसायन हमारे शरीर पर लग जाता है तो काम निपटाने के बाद में, यानी कि जैसे भैया हमने रसायन का छिड़काव कर लिया है,
0: जी जी
1: तो
0: जी
1: हमें जो भैया हाथ पैर अच्छे तरीके से धुलने चाहिए और भैया हो सके तो हमें स्नान करना चाहिए और वो कपड़े बदल लेने चाहिए।
0: बिल्कुल यही सारी सावधानी है जो सावधानियां हमें बरतने की जरूरत है। और भैया एक बात और है, मुंह पे कपड़ा बांध कर रखें, मास्क बांधना भी बहुत जरूरी।
1: बिल्कुल।
0: और भैया हवा के विपरीत दिशा में चलें, तो ये ऐसी ऐसी बातें हैं, अगर हम इन सब बातों को ध्यान में रख लेंगे तो फसल भी बढ़िया होगी, हमारा स्वास्थ्य भी ठीक ठाक रहेगा और भैया सारे काम ठीक होते रहेंगे।
1: बिल्कुल। तो भाई देखो बातचीत वही से हो रही है और फिलहाल भैया अभी सुनते हैं कार्यक्रम में कुछ ये जरूरी संदेश।
0: ठीक है भाई।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: तो भाई देखो, हमने संदेश तो सुन लिए।
1: हाँ भैया,
0: और देखो भैया, हमारे जो बहन भाई है वो इंतजार कर रहे होंगे लोकगीत व रागनों के फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो लोकमंजरी
1: तो
0: का।
1: भैया फिर बगैर कुछ देर करो हो, शुरू करते हैं कार्यक्रम हेलो लोकमंजरी।
0: लोकमंजरी।

0: तो स्वागत है हमारे सभी बहन भाइयों का आज के लोकगीतों और रागिनियों के फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो लोक मंजरी में। और इस कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपका भैया सुबेंद्र सिंह झुमरू,
1: और भैया मैं हूं आपका भाई प्रमोद सिंह। कार्यक्रम शुरू हो चुका है और हम अपने किसान भाइयों से भाई फिर ये आग्रह कर रहे हैं कि अगर आपको अपनी पसंद की कोई रागनी या लोकगीत इस कार्यक्रम में सुनना है तो आप हमारे पास में फोन कर सकते हैं। फोन करने के लिए नंबर आप हमारा जानते ही हैं, हम आपको बता रहे हैं, नंबर है 94-570-78-288। और भैया दूसरा नंबर है 01-341-230-105।
0: और भाई इधर आपने नंबर बताए हैं और इधर हमारे बहन भाइयों के फोन आने शुरू हो गए हैं, तो भैया देखते हैं कि हमारे भाई जो है कौन है लाइन पर।
1: बिल्कुल देखते हैं भैया। हेलो
2: कॉमर्स।
1: हेलो हेलो।
3: नमस्कार सर जी।
0: हाँ नमस्कार,
1: नमस्कार जी।
0: हाँ बताइए कौन बोल रहे हैं, अपना नाम बता दीजिए।
3: सुरेंद्र जी को और झुमरू जी को नमस्कार।
0: हाँ नमस्कार जी, राम राम जी। और बताइए कौन बोल रहे हैं, अपना नाम बता दीजिए, नाम और पता।
3: मैं सतीश बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश कानपुर के पास में बात कर रहा हूँ। मैं खेती बाड़ी करता हूँ, आपके प्रोग्राम सुनता है, खान बाड़ी बहुत अच्छा लगता है।
1: बहुत अच्छी बात है सतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे इस कार्यक्रम के नियमित श्रोता हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो खेती बाड़ी ठीक ठाक है आपकी?
3: सतीश बोल रहा हूँ, सतीश फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश।
1: जी जी सतीश जी, बताइए बताइए, सब ठीक ठाक है खेती बाड़ी?
3: और सब ठीक ठाक है। और झुमरू भैया ठीक ठाक हैं?
0: बिल्कुल, देखिए झुमरू भैया ठीक है। आप ये बताइए, आपकी खेती बाड़ी कैसे चल रही है सतीश जी?
3: सर जी खेती बाड़ी तो सही चल रही है, लेकिन धान लगा दी है, लेकिन बारिश भी हो जाती है। बारिश तो अभी 2-3 दिन से लगातार हुई है। और सरसों की तैयारी कर रहे हैं, फिर कुछ दिन बाद आलू की तैयारी करने वाले हैं। आलू फर्रुखाबाद जिला में सबसे ज्यादा आलू का रिकॉर्ड हो रहा था।
1: जी जी जी जी,
3: आलू के नाम से
0: जी। अच्छा। जी बहुत अच्छी बात है। देखिए सरसों के आलू की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए और जो हमारी अच्छी प्रजाति है उनको लगाइए। और ये बताइए कि आज के कार्यक्रम में क्या सुनने की इच्छा है?
3: एक बात करना चाहता हूँ आपसे, एक बात पूछना चाहता हूँ। जैसे मैंने कुछ पौधे लगाए हैं, तो उसमें कीटनाशक दवाएं जैसे कीड़ा वगैरह लग गए हैं, तो उसका उपयोग क्या क्या छिड़काव करना चाहिए, इसे बता सकते हो?
1: जी जी जी।
0: किस चीज के पौधे लगाए हैं आपने?
3: जैसे केला के पौधे होंगे, और ये सेनी है, और ये सेनी वगैरह आएंगे, और ये फल आएंगे जैसे केला के हैं और अमरूद के हैं, तो ये पौधे लगाए हैं, तो उसमें कीड़े पड़ गए हैं, तो कीटनाशक देते हैं।
0: पौधों की उम्र कितनी है जो आपने लगाए हैं, थोड़ा ये बताइए? कितने उम्र के पौधे हैं आपके?
3: जैसे सेमी तो लगा रही है, सेमी का मतलब हो चार पाँच एक दो महीने बाद, एक दो महीने हो गए सेमी, और केला तो काफी बड़ा हो गया उसपे, तो केला तो छट रहा है।
1: तो कोई कीट उसके ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, या सिर्फ आपको सुरक्षात्मक छिड़काव करना है?
3: कीड़े दिखाई दे रहा है उसमें, तो उसमें मैंने खेमी डाल दी है, तो खेमे कुछ होता नहीं है। हरी
0: हाँ देखिए, आपको अगर ऐसी कीट की समस्या दिखाई दे रही है तो विभिन्न हमारे जो कीटनाशक आते हैं उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे थायोमेथोक्साम का भी हम इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा मोनोक्रोटोफास है और भी हमारे वो हैं, तो जो आपके क्षेत्र के हिसाब से संस्तुत रसायन है।

0: उनका आप इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है जी।
1: आज क्या
0: हाँ
1: सुनना
0: जी,
1: चाहोगे आप हमारे इस कार्यक्रम में?
2: आज रागनी बढ़िया सा सुना दीजिए,
0: कौन सी
2: थोड़ी
0: रागनी?
2: सा अच्छी सी रागनी, धूमधाम रागनी हो, अच्छी धूमधड़ाका दा रागनी हो, तो रागनी सुना दीजिए। जितने झुमरू भैया को डेडिकेट करना चाहता हूँ, सुरेंद्र जी को डेडिकेट करना चाहता हूँ ये रागनी,
1: जी
2: जितने
1: जी
2: सुनने वाले ये बात सबको डेडिकेट करना चाहता हूँ।
0: तो कौन सी रागनी सुनवा दे जरा, ये तो बताइए।
2: सर जी अपनी पसंद का कोई रागनी सुनवा दीजिए, बढ़िया थी।
0: तो ठीक है, देखिए सावन का महीना चल रहा है और यहाँ पर तो माहौल बहुत ही अच्छा है, कांवड़ चल रही है, तो हम आपको सुनवाते हैं सावन के इस पावन पर्व पर ये शिव भजन।

0: शिव शंकर भोलेनाथ तेरा डमरू बाजे पर्वत पे। तो देखो भैया, भाइयों ने रागनी सुनी है सुभाष चंद्र बसु साथियों से,
1: बिल्कुल भैया।
0: और माहौल बिल्कुल शिव में हो गया है ना प्रमोद भैया।
1: देखो भैया, माहौल तो शिव में हो गया है और हमारे सभी सुनने वाले कार्यक्रम सुन रहे हैं हेलो लोक मंजरी।
0: बिल्कुल
1: लगातार फोन की घंटी भैया घनघना रही है, तो जरा देखो तो सही और कौन भाई लाइन पे
0: बिल्कुल
1: है।
0: भाई, देखो लाइन पे देखे, लेकिन एक जरा सी छुई बात
1: बिल्कुल बिल्कुल भैया, बताओ क्या कहना चाह रहे
0: भाई,
1: हैं।
0: हम ये कहना चाह रहे हैं, देखो हमारे जो कांवड़ती हैं भैया, वो हरिद्वार में जा रहे हैं,
1: जी
0: गंगा जल ला रहे हैं,
1: बिल्कुल।
0: तो भाई देखो हम सबको उनका सपोर्ट करना है। साथ ही भाई, जो हमारे भाई बहन हरिद्वार जा रहे हैं, गंगा जल ला रहे हैं, तो भैया उन्हें भी व्यवस्था बनाकर रखनी है, और यो कोशिश करनी भैया, प्रयास करना है कि जो माँ गंगा है भैया, वो किसी भी तरीके से भैया उसमें जो गंदगी ना हो वो।
1: बिल्कुल, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही है भाई। देखो कांवड़ यात्रा चल रही है तो उसमें सभी का सहयोग होना बहुत जरूरी है, और भैया माँ गंगा को पवित्र रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है,
0: बिल्कुल
1: तो वहां पर भी हमें बहुत ही साफ सुथरे तरीके से जो है भैया वहां से जल लेकर आना है, वो माँ गंगा की पवित्रता को बनाकर रखना है, और भैया सारे काम जो है हमें बहुत बढ़िया तरीके से करने हैं।
0: बिल्कुल। और भैया अब देखते हैं कि हमारे कौन भाई लाइन पर। हेलो,
1: हेलो
2: हेलो।
0: हाँ जी हेलो, लोक मंजरी।
2: हाँ जी, सुरेंद्र सिंह जी को और प्रमोद सिंह जी को मेरे राम राम।
0: राम
1: राम
0: राम
1: राम
0: जी,
1: जी,
0: राम
1: हमारे लिए
0: राम।
1: राम राम साहब।
2: मैं ग्राम धरना जिला हरिद्वार उत्तराखंड से मदन गिरी बोल रहा हूँ
1: जी
2: जी।
1: जी बहुत बहुत स्वागत है मदन गिरी जी आपका। सब ठीक ठाक है, मौसम उसम ठीक है आपके यहाँ का?
2: आज मौसम ठीक है, अब तो बारिश हुई, परसों बहुत बारिश हुई, अच्छी बारिश हो गई।
0: जी जी
1: हाँ
0: जी
1: जी
0: जी
1: हाँ जी,
2: और बारिश उसकी बरसात की समस्या हल हो गई है।
0: जी
1: अच्छा जी
0: बिल्कुल।
1: अच्छा।
0: अच्छा ये
2: हाँ
0: बताइए,
2: जी,
0: आपकी खेती बाड़ी कैसे चल रही है?
2: बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छे खड़े हैं सब्जी, उसके धान भी और वो जो है गन्ना भी बहुत अच्छा खड़ा है।
1: ये
0: बहुत
1: तो
0: बढ़िया
1: बहुत
0: जी,
1: खुशी
2: बहुत
1: की
2: बढ़िया,
1: बात है।
2: हाँ जी बहुत अच्छा है जी।
0: अच्छा
2: जी
0: चल
2: जी
0: रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है इस
2: हाँ
0: समय?
2: जी, ठीक चल रहा है, हाँ जी ठीक चल रहा है,
0: बिल्कुल
2: बिल्कुल
0: बिल्कुल।
2: बिल्कुल।
0: तो ये बताइए कि आज जो आपने फोन किया है, तो क्या सुनना चाह रहे हैं कार्यक्रम में?
2: आप जो है अपने पसंद की राय में सुनवा दो जल्दी। हाँ जी
1: देखो जी बिल्कुल, हम आपको अपनी पसंद की रागनी जरूर सुनवाएंगे, और ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए जैसे अभी हम बात कर रहे थे कांवड़ की यात्रा चल रही है, तो आपके आसपास का माहौल कैसा है?
2: जी, 2-2.5 किलोमीटर है हमारे से हाईवे,
0: अच्छा
2: जी
0: जी
2: कुल 2-2.5 किलोमीटर है जिस पर वो कावड़ चलती है।
0: जी
2: हाँ
0: जी
2: हाँ
0: बिल्कुल बिल्कुल
2: हाँ जी, और जो है बस बहुत ही जो है बस अच्छा माहौल है,
0: जी।
2: और हर हर महादेव की जय चल रही है, और बड़ा अच्छा माहौल है, और बड़ा ही अच्छा लगता है, सब देखने के लिए आते हैं गाँव से, और सब बहुत अच्छा माहौल है।
1: तो ठीक है मदन गिरी जी, हमें भी
2: दो
1: आपकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है, और सभी सुनने वालों को भी
2: चार
1: अच्छा।
2: नाम लेना चाहूंगा
0: हाँ
2: जी,
0: जी
2: दो
0: बिल्कुल
2: चार
1: जी, ले लीजिए ले
0: नाम
1: लीजिए।
0: लीजिए।
2: हाँ जी हाँ, आचार्य सत्यवीर सिंह जी है, और प्रकाश चंद्र जी है, आसिफ चौधरी जी है, राशिद अंसारी है, और अमित दीवान जी है, बस।
1: जी जी जी ठीक है जी, आप भी सुने और आपके सभी ये जो साथी हैं ये भी सुने ये रागनी।

0: हीर जाने वाली, रुक जाइए जरा, खता क्या है मेरी बताइए जरा। तो देखो बहन भाइयों ने सुना है ये अखिलेश कुमार से, हीर रांझे किससे सरागनी भैया।
1: बिल्कुल, और देखो भैया, ये सभी सुनने वालों को बहुत पसंद आई होगी, ऐसी हमें उम्मीद है। और झुमरू भैया,
0: हाँ भैया,
1: देखो हम अपने सभी सुनने वालों को एक बार फिर नंबर बताओ दे
0: भाई
1: हैं।
0: नंबर बताओ आप।
1: नंबर है 94-570-78-288। दूसरा नंबर है 01-341-230-105।
0: बिल्कुल
1: देखो ये हमारे दोनों नंबर हैं और हमारे किसान भाई लगातार फोन कर रहे हैं, तो जरा देखो तो सही भैया कौन भाई लाइन पे हैं।
0: हेलो,
2: हेलो माता, नमस्ते।
0: नमस्कार जी,
1: नमस्ते जी,
0: नमस्कार
1: नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना।
2: जी, मैं उत्तराखंड से निखाल सेनेगांव फैक्ट्री से प्रकाश चंद्र बोल रहा हूँ जी। मैं
1: जी प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है, सब ठीक ठाक हैं?
2: बाता सब बढ़िया, बाता धन्यवाद, सब बढ़िया।
0: और बताइए प्रकाश जी, माहौल कैसा है, मौसम कैसा है आपके यहाँ का, उत्तराखंड का?
2: अच्छा मौसम आजकल फिर बारिश कुछ कम हो गई, कम।
0: अच्छा
2: अच्छा
0: अच्छा जी,
2: हाँ, कम हो गई।
1: तो फसलों को या आसपास में मतलब कोई इस तरीके का कोई नुकसान तो नहीं है कि ज्यादा बारिश हुई हो तो नुकसान हुआ हो किसी तरीके का?
2: ना भैसा, इधर इतना पानी नहीं भरा खेतों में, इतना नुकसान तो नहीं हुआ, मतलब फसल ठीक है इधर।
0: अच्छा,
1: अच्छा, ये अच्छी
0: बहुत
1: बात है।
0: बहुत अच्छी बात है। तो और बताइए क्या सुनना चाह रहे हैं आज कार्यक्रम में?
2: ऐसा वो क्या दूर देश से वो मनियारा गुब्बारा दे के आया, सुरेश वाडकर का है ये।
1: अच्छा, हरियाणवी लोकगीत सुनना
2: आज
1: चाहते हैं?
0: एक बात हम जानना
2: ही
0: चाहेंगे
2: बुजुर्ग
0: जी।
2: बैठे मेरे सामने यार, वो बहुत उससे सुनते हैं गाने को। तब
1: हाँ,
2: वो भैसा तेरे परिवार के जो नाम ले लू मैं?
1: हाँ बिल्कुल, परिवार के नाम ले लीजिए आप।
0: पहले आप नाम बोलिए फिर हम आपसे कुछ पूछेंगे।
2: अच्छा, मंजू देवी, कानू प्रिया, उज्जवल कुमार और समृद्धि, सिरमौर, दिनेश चंद और माया देवी,
0: जी तो
2: ये भाषा आप इस गाने की उसको सुनने को सुनने के बहुत इच्छुक हैं।
1: बिल्कुल सुनाएंगे आपको
0: बिल्कुल।
1: इस
0: देखिए, हम
1: लोकगीत
0: ये
1: को।
0: लोकगीत आपको सुनवाने वाले हैं, तो आप ये बताइए कि जैसे कि ये आपने हरेरी चूड़ियों वाला लोकगीत सुना है, पसंद क्या है, और हरियाली तीज आने वाली है, तो आपके यहाँ ये कैसे मनाया जाता है त्योहार हरियाली तीज का?
2: भाषा इधर बहुत अच्छा मनाया जाता है ये त्योहार। तो जैसे आजकल तो भाषा इधर कांवर लेके छोटे बच्चे ऐसे खेल रहे हैं, इधर कांवर अपने आप ही बना रहे हैं छोटे
0: जी,
2: बच्चे, क्योंकि ये दूर तो जाते नहीं, तो मतलब कई दूर से आए ना लोग इधर, तो देख रहे थे उनको, तो छोटे बच्चे कांवर लेके अपने आप ही इधर घूम रहे हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है,
2: तो अभी आप क्या पूछ रहे थे भाषा, मैं भूल
1: पूछ रहे
2: गया।
1: थे कि ये जो हरियाली तीज आने वाली है और इस समय हरा भरा बिल्कुल जो है सब तरह का वातावरण है और हरी हरी चूड़ियां जो है सभी इस मौसम में पहनते हैं, और ऐसा ही आपने लोकगीत सुनना चाहा है, तो हम जानना चाह रहे हैं कि ये जो हरियाली तीज है कैसे मनाई जाती है आपके यहाँ?
2: इधर मेहंदी लगाते हैं
0: जी,
2: और हरी चूड़ी पहनते हैं लेडीज, मतलब लेडीज
0: हाँ जी,
2: लेडीज
0: हाँ
2: वर्ग।
1: बिल्कुल जी,
2: ये सावन के महीने में बहुत पवित्र मानते हैं इस बात को।
1: हाँ,
2: तो ये उत्तराखंड में भाषा का प्रचलन बहुत है इधर।
1: जी
0: हाँ
1: जी
0: जी
1: ठीक
0: बिल्कुल।
1: है प्रकाश जी, बहुत अच्छी बातें आपने बताई हैं, हम आपको सुना रहे हैं आपकी पसंद का ये हरियाणवी लोकगीत, आप जरूर सुने और अपने सभी सुनने वालों को भी जो आपके साथ बैठे उनको भी सुनाएं।
3: चूड़ी ले लो चूड़ी।

0: तो बहन भाइयों ने सुना ये हरियाणवी लोकगीत सुरेश वाडेकर और दिलराज कौर के स्वर में।
1: बिल्कुल।
0: और प्रमोद भाई,
1: हाँ भैया,
0: भाई देखो चाहे चूड़ियों की बात हो, चाहे गहनों की बात हो, या
1: जी जी
0: अच्छे कपड़ों की बात हो,
1: हाँ हाँ हाँ हाँ
0: भाई देखो अगर हमारे खाते में 1,00,000 रुपए हो
1: ओहो
0: फिर तो भैया हम कुछ भी ले सकते हैं मार्केट से।
1: भाई बात तो तुमने बहुत ही बढ़िया करी है।
0: हम्म,
1: और इसी बात पे भाई हमें कुछ याद आ रहा है।
0: क्या याद आ गया भैया?
1: लखपति दीदी योजना के बारे में सुना आपने?
0: अरे भैया तभी तो हमने खाते में 1,00,000 रुपए का जिक्र करा
1: ओ
0: है।
1: भैया बहुत ही बढ़िया बात है। तो देखो भाई, खाते में 1,00,000 रुपए नहीं बल्कि ज्यादा भी आ सकते हैं। और लखपति दीदी योजना जो है ऐसी योजना है जो हमारी बहनों को, महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम और लखपति बनाने का काम कर रही।
0: तो मैं देखो इस तरीके से जो हमारी बहनें हैं भैया वो आत्मनिर्भर बन सकती हैं, अपने खुद का रोजगार कर सकती हैं, और समूह बनाकर यानी कि एकत्र होकर भैया वो
1: बिल्कुल।

0: बिल्कुल, देखो सबसे पहले तो एक स्वयं सहायता समूह बनाना पड़ेगा, और भैया इसकी ये पात्रता तो है ही, साथ ही जो अगर उम्र की हम बात करें तो इसमें भैया 18 से 50 वर्ष की कोई भी महिला जो है भाग ले सके।
1: बिल्कुल। और देखो भैया, जब हमारी आमदनी होगी और हमारे खाते में, यानी कि भैया हाथ में हमारे पैसे होंगे, तो फिर तो भैया चाहे चूड़ी खरीदनी हो, चाहे भैया पायल खरीदनी हो, या भैया
0: बिल्कुल
1: अच्छे अच्छे कपड़े खरीदने हो, या भैया जैसे हरेली तीज आ रही उस पर सूट या साड़ी खरीदनी हो, फिर तो
0: हाँ
1: कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं देने की
0: बिल्कुल
1: है।
0: सही बात है भाई, बस जरूरत है बस जागरूक होने की। और भैया स्वयं सहायता बना के जो है, ये जो स्वयं सहायता समूह हुआ है ना, इसको बना के आगे बढ़ने की।
1: और मैं देखते हैं हमारे अब कौन से भाई लाइन पर।
0: हेलो
1: हेलो,
0: हेलो, नमस्कार जी।
1: हाँ नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी।
1: जी
0: सर ठीक हो?
1: बिल्कुल, अपना नाम बता दीजिए, कहाँ से बोल रहे हैं।
0: मैं खतौली नावले के पास खेड़ी तगान पड़ती जी, लड्डन सिंह की नावला खेड़ी।
1: अच्छा, लड्डन सिंह जो रागनी लिखते हैं, रागनी के लेखक।
0: हाँ जी, कवि लड्डन सिंह का गांव खेड़ी तगान।
1: अच्छा
0: जी, बहुत अच्छी बात है। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम इलियास अंसारी है जी।
1: बहुत अच्छा इलियास अंसारी साहब, आपका स्वागत है। और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप एक ऐसे गांव से हमारे कार्यक्रम में इस समय जुड़े हैं जहां से लड्डन सिंह जी ने बहुत अच्छी अच्छी रागनियां लिखी हैं।
0: हाँ जी हाँ।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो और बताइए, लड्डन सिंह के
0: और
1: बारे में कोई जानकारी अगर हो आपको।
0: बस जी, लड्डन सिंह तो देखो हमारा पड़ोसी था।
1: अच्छा
0: अच्छा हाँ, बिल्कुल पड़ोसी।
1: जी।
0: और इतना अच्छा है आदमी, देखो अगर दीवा लेकर ढूंढते फिरे तो मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है जी। देखिए हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, और उनकी लिखी हुई रागनी देश विदेश में सुनी जा रही है, और वो हमारे देश का नाम रोशन कर रही है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है।
0: हाँ जी हाँ जी।
1: बिल्कुल
0: और जी आपके प्रोग्राम जो है हमें इतने अच्छे लगते हैं, इतने अच्छे लगते हैं कि हम बैठ के कई भाई जो है मतलब सुनते हैं, बहुत अच्छे प्रोग्राम चलते हैं आपके।
1: जी,
0: जी
1: बहुत बहुत
0: बिल्कुल
1: धन्यवाद साहब, आप इसी तरीके से सुनते रहिए
0: हाँ जी
1: हमारे इन कार्यक्रमों को।
0: बिल्कुल। देखिए, और देखिए
1: जी
0: ये माना जाता है।
1: और
0: जी, हाँ बोलिए।
1: ये जो हमारी घरवाली है ना रईसा बेगम, हाँ जी
0: ये इधर सोरम गोयला गांव पड़ता है जी।
1: जी
0: ये गोयले के रहने वाली है। ये इतना शौक करती है कि मैं अगर घर पे ना हूं तो ये रविंद्र का प्रोग्राम ऐसे जी से सुनती है बड़े अच्छी तरह।
1: जी
0: चलो जी,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: बहुत
1: बहुत
0: खुशी की
1: अच्छी बात
0: बात
1: है।
0: है, सुनना भी चाहिए, क्योंकि आप लड्डन सिंह जी के पड़ोसी हैं, और आपके ऊपर भी देखिए ये सारी जो है दया दृष्टि बनी रहनी चाहिए। बताइए आज क्या सुनना
1: जी
0: चाहोगे
1: जी देखो
0: फिर।
1: जी, आज जो है ये नैनपाल की आवाज में कोई लड्डन सिंह की रागनी कोई अच्छी से सुनवा लो। बिल्कुल, देखिए हम
0: बिल्कुल
1: आपको सुनवा रहे हैं। और जहां तक लड्डन सिंह की बात है, तो हम अपने सुनने वालों को बता दें कि रागनी का जो
0: हाँ
1: जनक
0: जी
1: है लक्ष्मीचंद, उनके बाद लड्डन सिंह ने ही रागनी जो लेखक है उसमें अपना नाम
0: हाँ जी
1: कमाया है। बिल्कुल, तो
0: जी जी जी
1: हम आपको सुनवा रहे हैं।
0: और हमारे साथी हैं जी सुनने वाले।
1: जी
0: जी जी ये जुल्फकार अंसारी है जी, नसीम अंसारी है, सईद अंसारी है, शकील अंसारी है, और रईसा बेगम ये हमारी।
1: ठीक है, तो इलियास जी आप इन सब अपने साथियों के साथ में सुनिए मैनपाल और साथी की गाई ये रागनी।

0: तो मैं देखो यो था हमारा आज का लोकगीतों पर रागिणियों का सजीव फोन इन कार्यक्रम है लोकमंजरी।
1: बिल्कुल भैया।
0: और देखो प्रमोद भैया हमारे किसान भाई से प्रत्येक शनिवार को सुन रहे हैं, और किस नंबर पर भैया वो अपनी पसंद की रागिणी सुन सकते हैं, एक बार नंबर फिर बता
1: देखो भैया। नंबर है 94-570-78-288। और भैया दूसरा नंबर है 01-341-230-105। इन दोनों ही नंबरों पर प्रत्येक शनिवार को हमारे किसान भाई शाम 6:05 पर सुन सकते हैं हमारा ये कार्यक्रम हेलो लोक मंजरी।

0: अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे लोकगीत एवं रागनियों का फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो लोकमंजरी। और प्रमोद भाई,
1: जी झुमरू भैया।
0: भाई देखो, अब बारी है मौसम की चिट्ठी की।
1: हाँ भैया, ये चिट्ठी तुमने ले रखी, जरा जल्दी से पढ़ के सुनाओ।
0: भाई चिट्ठी में मिली है ग्रामीण कृषि मौसम सेवा विभाग
1: हाँ
0: सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुर मेरठ से।
1: जी, क्या लिखा?
0: और भाई यहाँ से प्राप्त जानकारी के अनुसार भैया जनपद बिजनौर और उसके आसपास के क्षेत्रों के मौसम के बारे में पूर्वानुमान है कि भैया अगले 3 दिन
1: अच्छा
0: भैया कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है।
1: अच्छा भैया देखो, बरसात अभी होने की संभावना है, तो किसान भाई अपने खेतों में जो भी काम करें भैया, वो मौसम के हिसाब से करें। और भैया हमारे पास में चिट्ठी जरूर लिखते रहें, पता तो हम रोज ही बतावें, आज भी बता रहे हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन 246-73।
0: तो भाई इस पते पर आप चिट्ठी लिख सकते हैं, और साथ ही जो हमारा मोबाइल का नंबर है 9457-07-82-88, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज भी हमें भेज सकते हैं।
1: और भैया अब देखो, जरा घड़ी को देख लो, घड़ी क्या कह रही?
0: भाई घड़ी की सुई कह रही कि कार्यक्रम का समय संपन्न होने वाला है, तो अब दोनों बहन भाई यहीं पर कर लेते हैं राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:45 हुए हैं। आइए अब आपको हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें।

हम अपने श्रोताओं को याद दिला दें, अब से कुछ ही देर बाद यानी 6:50 पर हम हमारे लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। कार्यक्रम का आज आप सुनेंगे एपिसोड 4। सुगम संगीत में आज शाम 7:32 पर होंगे भजन, कलाकार होंगी सुमन कल्याणपुर। हम हमारे दिल्ली केंद्र से आज 8:00 रिले करेंगे इस सप्ताह संसद में। 8:20 पर हम हमारे लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे साप्ताहिक विधानमंडल समीक्षा।

फिल्मी गीतों का कार्यक्रम एक ही फिल्म से आज हमारे केंद्र से होगा शाम 8:30 पर। राष्ट्रीय संस्कृति पत्रिका संस्कृति भारती, ये कार्यक्रम हम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। समय रहेगा आज रात्रि 9:30 पर। रात्रि 10:00 हम हमारे दिल्ली केंद्र से ही रिले करेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम।

तो श्रोताओ, ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारियां। आइए अब आपको हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना का समय रहेगा कल सुबह 6:05 पर। कल सुबह 6:30 पर प्रसारित होगा श्री रामचरित मानस गान। कल सुबह 6:40 पर होगा चिंतन। काव्यधारा में कल सुबह 6:45 पर श्रोता सुन सकेंगे श्री राजेश मिश्रा का काव्य पाठ। स्वास्थ्य चर्चा का प्रसारण समय रहेगा कल सुबह 7:05 पर, और कार्यक्रम में होगी जानकारी जिसका विषय होगा लहसुन एक गुणकारी औषधि, खेती की बातें। ये कार्यक्रम प्रसारित होगा कल सुबह 7:10 पर। कार्यक्रम में जानकारी का विषय होगा गेंदे की वैज्ञानिक खेती। कार्यक्रम सूरज के साथ साथ का प्रसारण समय रहेगा कल सुबह 7:31 पर। सामयिक चर्चा हम हमारे लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे कल सुबह 9:15 पर। कल 9:20 पर प्रसारित होगा लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है। कार्यक्रम में होंगे विविध कलाकारों के गाए रोहेलखंडी लोकगीत। श्रोताओं के पत्रों पर आधारित कार्यक्रम आपका पत्र मिला का प्रसारण समय रहेगा कल दोपहर 12:05 पर, और फिल्मी संडे में होगी वर्ष 1993 में प्रदर्शित फिल्म दामिनी की फिल्मी स्टोरी, समय रहेगा कल दोपहर 12:30 पर। बाल वाटिका का प्रसारण समय रहेगा कल दिन में 1:15 पर, और लोक संगीत के कार्यक्रम लोकधारा में श्रोता सुन सकेंगे बनारसी लाल जौहरी के गाए राजस्थानी लोकगीत, और कल दिन में 2:30 पर फिल्म संगीत के कार्यक्रम एक और अनेक के अंतर्गत होंगे गीतकार नक्श लायलपुरी के लिखे कुछ गीत। तो श्रोताओं, ये थी हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारियां। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:50 होने को हैं। अगला कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से रिले होगा।

0: कुपोषण बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा की पूर्व निदेशक डॉक्टर नीलिमा गर्ग साहिबा, स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि फल फूल और सब्जियों की जहां व्यवसायिक खेती कर रहे हैं किसान भाई बहन, वहां अच्छा दाम मिले इसके लिए ग्रेडिंग, पैकेजिंग, भंडारण और मार्केटिंग कैसे करें किसान भाई बहन?
1: सभी किसान भाई बहनों को नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ताजी उपज का खेत से बाजार तक का सफर कई चरणों से गुजरता है, जिसमें ग्रेडिंग, पैकेजिंग, भंडारण और मार्केटिंग अत्यधिक महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि इसी से उत्पाद की गुणवत्ता निर्धारित होती है और बाजार में उसका उचित मूल्य मिलता है, जिससे कि किसान को उसकी मेहनत का फल मिलता है। इन सभी चरणों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत।
0: तो शुरुआत करें डॉक्टर साहब ग्रेडिंग की। कोई भी उत्पाद, चाहे वो सब्जी हो, फूल हो, फल हो, उसकी ग्रेडिंग का क्या महत्व है और किसान और उपभोक्ता दोनों कैसे इससे लाभान्वित होते हैं?
1: जी, ग्रेडिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि तुड़ाई या कटाई के फौरन बाद किसी फसल की यदि ग्रेडिंग कर दी जाए तो उससे बहुत से तुड़ाई उपरांत नुकसान को बचाया जा सकता है। एक जैसा रंग, रूप, आकार, वजन होने के कारण ये अधिक आकर्षक लगते हैं और मार्केट में अधिक उनका मूल्य मिलता है, इससे किसानों को फायदा होता है।
0: डॉक्टर साहब, ग्रेडिंग के कुछ खास तरीके होंगे?
1: जी, ग्रेडिंग के बहुत से तरीके हैं, जिनमें ये डिपेंड करता है कि हम किस उत्पाद को, किस कमोडिटी को ग्रेड कर रहे हैं। जैसे कि फलों की ग्रेडिंग अलग तरीके से होती है, सब्जियों की थोड़ी अलग होती है और फूलों की अलग। जैसे कि फलों की ग्रेडिंग में हम अधिकतर उनके आकार का ध्यान रखते हैं कि सभी फल एक ही आकार या जैसे एक ही व्यास के हों। जैसे कि सेबों की ग्रेडिंग करें तो हम ये देखेंगे कि एक पेटी में 80 से 100 फल आए तो उनका जो व्यास होगा वो मोर और लेस एक ही जैसा होगा। इसी प्रकार आम में वजन के हिसाब से ग्रेडिंग होती है, अंगूर में गुच्छे के वजन के हिसाब से ग्रेडिंग होती है और बेरीज में आकार के हिसाब से। कभी कभी फलों की ग्रेडिंग में हम रंग का भी ध्यान रखते हैं कि सभी फल में एक जैसा रंग होना चाहिए।
0: और सब्जियों की ग्रेडिंग?
1: सब्जियों की ग्रेडिंग में हम उनकी ताजगी को देखते हैं कि उनकी पत्तियां जो है वो ताजी हों,

0: कुरकुरी हो, मतलब उनमें कड़ापन हो।
1: और डॉक्टर साहब फूलों में?
0: फूलों में ग्रेडिंग हम लोग देखते हैं कि फूल किस एक ही जैसी अवस्था के होने चाहिए, और जो स्टेम की मोटाई है वो एक मानक के अनुसार से होनी चाहिए। सभी स्टेम एक ही जैसी लंबाई के होने चाहिए। जो लंबे स्टेम्स हैं उनकी ग्रेडिंग अलग होती है और जो छोटे हैं उनकी अलग होती है, जिससे कि जब फूल खिले तो सभी एक ही अवस्था में हो।
1: तो डॉक्टर साहब जो भी ग्रेडिंग है चाहे फल फूल और सब्जियों की, तो इसमें कुछ सरकारी मानक भी हैं क्या?
0: जी, इसके मानक है एपिडा है, जो कि निर्यात के लिए जो भी हमारे उत्पाद हैं उनके लिए मानक निर्धारित करता है, और घरेलू बाजार में एगमार्क के मानक के हिसाब से जो गुणवत्ता है वो निर्धारित की जाती है।
1: डॉक्टर साहब ये तो रही ग्रेडिंग की बात, अब पैकेजिंग की बात कर ली जाए। बाजार में जो दिखता है वही बिकता है
0: जी,
1: तो पैकेजिंग के बारे में क्या कहना चाहती हैं फल फूल और सब्जियों की?
0: जी, फल फूल और सब्जियों इन सब की पैकेजिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उनकी उम्र को निर्धारित करती है। पैकेजिंग जो है उनकी न सिर्फ सुरक्षा करती है, उनके वो उम्र को भी और एक तरीके से मार्केटिंग टूल का भी काम करती है। तो ये एक पैकेजिंग का है कि ये अधिक मूल्य मिलने में सहायता करती है।
1: डॉक्टर साहब फल फूल और सब्जियों की पैकेजिंग की बात करें तो कुछ खास तकनीक होगी इसकी?
0: सब्जियों में पैकेजिंग के लिए अधिकतर परंपरागत पैकेजिंग होती है। पुरानी जो पैकेजिंग होती है वो फोम के उसमें होती थी, प्लास्टिक के उसमें होती थी, या फिर हमारे खुले हुए बोरों में। लेकिन आजकल जो है वो प्लास्टिक के जालीदार पैकेजिंग होती है
1: जी, जालीदार बैग,
0: जालीदार बैग्स होते हैं। जैसे कि आलू है या कंद वाली जो फल है, आलू प्याज लहसुन इत्यादि, इनको जालीदार में रखा जाता है जिससे कि नमी ना इकट्ठी होने पाए, सब्जियों में फफूंद की समस्या ना आए। फूलों की पैकेजिंग भी दो तीन तरीके की है। एक तो ये होती है स्लीव पैकेजिंग। तो स्लीव पैकेजिंग तो ऑर्डिनरी जो हम बाजार से फूल खरीदते हैं आप देखते होंगे, उसके ऊपर उपभोक्ता अपनी लोगो और अपने जो भी मार्केटिंग के जो भी प्रमोशन के लिए जो भी चीजें वो सब लिखवा देता है, और फूलों को एक तरीके की सुरक्षा भी प्रदान करती है और उनको थोड़ी देर तक नमी के लॉस से भी बचाती है, जो प्राइमरी पैकेजिंग है। उसके बाद फूलों के लिए हम लोग कार्डबोर्ड पैकेजिंग भी होती है, अगर आपको लंबी दूरी तक भेजना है, और यदि आपके फल फूल के नमी बहुत जल्दी नुकसान होगी तो आजकल हाइड्रेशन पैकेजिंग भी होती है, जिसमें कि पानी युक्त बोतलें रहती हैं या फिर जेल रहता है, और या फिर उसमें फोम रहता है, भीगे हुए फोम, जिसमें कि हम फूलों को पैक करके भेजते हैं जिससे कि नमी की कमी ना होने पाए।
1: डॉक्टर साहब जो भी फल फूल और सब्जियां किसान भाई बहन पैदा कर रहे हैं, कई बार मार्केट में भाव समय से नहीं है तो उसको भंडारण करना होता है
0: जी, जी।
1: तो भंडारण में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं इस समय?
0: भंडारण में तो एक जो महत्वपूर्ण बात यह है, देखिए जहाँ बहुत ज्यादा सुविधाएं नहीं है वहां पर तो आपके जो लोकल स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि जीरो एनर्जी कूल चैम्बर जिसको हम बोलते हैं कि जमीन के नीचे और गड्ढे में दबा दीजिएगा आप अपना, या फिर एक टेम्परेरी एक स्ट्रक्चर खुले में भी रख सकते हैं, एक ईंटों का स्ट्रक्चर बना के और उसमें यदि दो दीवारों के बीच में आप रेत भर के और उसमें पानी सर्कुलेट करते हैं और थोड़ी हवा का वेंटिलेशन की भी व्यवस्था रखते हैं तो उसमें हमारी सब्जियां ज्यादा देर तक रखी रहती हैं। इसके अलावा जो भंडारण के लिए शीत गृह जो है वो एक आजकल बहुत ही प्रचलित हो गए हैं, और जहां पर भी है तो लोगों को उसका इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि हम अपने फल और सब्जियों को थोड़ा भंडारण कर लें। तीसरे तरीके की जो भंडारण का है, मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर के लिए हम लोग स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें क्या करते हैं कि जो कमोडिटी है उसकी श्वसन दर को कम कर दिया जाता है।
1: डॉक्टर साहब अब मार्केटिंग महत्वपूर्ण है और मार्केटिंग के साथ साथ ब्रांडिंग भी जरूरी है।
0: बहुत जरूरी है, आजकल तो जो दिखता है वो बिकता है।
1: इसमें सोशल मीडिया और
0: जी जी इंस्टाग्राम
1: और डिजिटल प्रचार का भी,
0: फेसबुक इंस्टाग्राम पे आजकल तो ये बहुत कॉमन हो गया है कि जो नए नए एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपनी चीजों को पहले इन मार्केट्स में पहले पॉपुलराइज करते हैं, लोकप्रिय बनवाते हैं और फिर लोग अपने आप से उनको कॉन्टेक्ट करते हैं।
1: डॉक्टर साहब किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे फल फूल और सब्जियों की ग्रेडिंग पैकेजिंग भंडारण और मार्केटिंग के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: 94-15-78-66-33।
1: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहती हैं किसान भाइयों बहनों का फल फूल और सब्जियों की ग्रेडिंग पैकेजिंग भंडारण और मार्केटिंग के बारे में? डॉक्टर साहब
0: मैं सभी किसान भाई बहनों से मैं ये आग्रह करूंगी कि वो हमारी जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं ग्रेडिंग की उनका इस्तेमाल करें या फिर किसी मशीन से करें और उसके बाद खूबसूरत पैकेजिंग करें जिससे कि आपका

0: उत्पाद सुंदर दिखे और उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़े। आजकल ऐसी स्मार्ट पैकेजिंग भी है जिसमें कि आप ट्रांसपोर्ट के दौरान ही उसमें आप मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर रखते हैं जिससे कि उसकी शेल्फ लाइफ अच्छी रहती है, तो हम लोग अधिक मूल्य प्राप्त कर सकते हैं।
1: डॉक्टर नीलिमा गर्ग साहिबा, आज आप कार्यक्रम में आए और फल फूल और सब्जियों की ग्रेडिंग, पैकेजिंग, भंडारण और मार्केटिंग कैसे करें किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब, आज कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अपूर्व भैया,
2: हाँ पुनीता
0: भैया, देखो सावन है, हर तरफ हरियाली और ये रिमझिम गिरत बूंदे, और अगर ये पर झूला ना झूला जाए तो बड़ा सूना रह जाते।
2: बिल्कुल।
0: तो भैया कहे ना सुन लीन जाए अपनी बैठकी में, यहाँ एक झूला गीत मोरी चुनरी रंगाए दो, और स्वर है अनुज श्रीवास्तव और ममता सक्सेना के।
2: बिल्कुल सही कहो, तो आप सुन लीन जाए यू लोकगीत।

0: पुनीता बहनी।
1: हाँ पूर्व भैया।
0: देखो हम पंच अपने कार्यक्रम के माध्यम से जो अपने किसान भाई हैं इनका तमाम तरह की सूचना साझा कीन करित है, और जब कोई किसान भाई अपने कार्यक्रम में आय का अपन अनुभव साझा करते हैं तो वही का प्रभाव अपने पंच भाई पर बहुत परत है।
1: तो भैया आज के किसान हैं संदीप कुमार वर्मा भैया, जो उन बता रहे हैं अपने जरवेरा फूल उत्पादन के बारे में है, तो भैया लीन जाए या जानकारी।
2: किसान भाइयों बहनों, आज आपको ले चलते हैं बाराबंकी जनपद के रामनगर ब्लॉक के मोती नगर बेरिया गांव, जहां फूलों की संरक्षित खेती से जुड़े संदीप कुमार वर्मा भैया टेलीफोन लाइन पर हैं। संदीप वर्मा भैया, आप फूल उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, ये बताएं कि इस समय कितने क्षेत्रफल का पाली हाउस है जिसमें आप फूल उत्पादन कर रहे हैं।
3: इस समय हमारे पास डॉक्टर साहब 16,000 स्क्वायर मीटर लगभग 4 एकड़ क्षेत्रफल में हमारे पास पॉली हाउस है, जिसमें हम जरबेरा पुष्प का उत्पादन कर रहे हैं। हाँ। और इसको लखनऊ मंडी में बेच रहे हैं।
2: तो इसकी शुरुआत हुई कब से?
3: डॉक्टर साहब ये हमारी शुरुआत हुई है अक्टूबर 2014 में, हमने पहले पॉली हाउस का निर्माण करवाया था जो कि आधा एकड़ का एरिया था हमारा। ये 3 महीने हमको स्ट्रक्चर बनाने में लगे, उसके बाद 7 जनवरी 2015 में हमने जरबेरा पौधे का प्लांटेशन किया।
2: यानी 12 साल हो गया आपको फूलों की संरक्षित खेती से जुड़े।
3: जी,
2: तो आज किस मुकाम पर अपने को पाते हैं फूल उत्पादन में?
3: फूल उत्पादन में आज हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि बहुत अच्छे मुकाम पे पाते हैं। 2000 स्क्वायर मीटर यानी कि आधा एकड़ से हमने स्टार्ट किया था, और आज हम करीब करीब 16,000 स्क्वायर मीटर लगभग 4 एकड़ में काम कर रहे हैं। अच्छी आमदनी भी कर रहे हैं और अच्छा काम भी कर रहे हैं, जो खेती में और किसी भी काम से बहुत ही अच्छा काम है।
2: तो ये बताएं कि पाली हाउस में कौन कौन फूल पैदा करते हैं आप?
3: पाली हाउस में हम तो केवल जरबेरा ही पैदा करते हैं।
2: और 4 एकड़ पूरा जरबेरा ही है?
3: जी जी, पूरा 4 एकड़ जरबेरा ही है।
2: तो पूरे साल की दिनचर्या क्या है आपकी सुबह से शाम तक की?
3: दिनचर्या ये है कि सुबह जैसे हम आ गए अपने फार्म पे, अपने खेत पे आ गए जिसपे कि हमारा पॉली हाउस लगा हुआ है, तो दिन भर हमने काम देखा, फिर शाम के वक्त फूल को निकलवा लिया, फूल की पैकिंग करवाई, उसके बाद उसको जो है पैकिंग करवा के शाम को एकदम फिट कर दिया। सुबह वो मंडी ले जाया जाता है, ज्यादातर लखनऊ मंडी लेके जाते हैं, तो लखनऊ मंडी लेके गए, अपना सेल हो गया, उसके बाद आए घर नहाए धोए, उसके बाद फिर अपने फार्म पे 9-10 बजे तक अपने फार्म पे आ जाते हैं।
2: यानी अपने खेत पर होते हैं दिन भर?
3: जी जी, लगभग पूरे दिन का करीब 70% जो अपने खेत पे बीतता है।
2: तो जरबेरा उत्पादन में कौन कौन सी बारीकी आपने 12 साल में अनुभव किया?
3: जरबेरा उत्पादन में सबसे बड़ी बारीकी ये है कि एक तो ये खेती में थोड़ा ज्यादा पूंजी लगने वाला काम है, तो इसमें देख रेख आप जो भी करें, जैसे जो भी फसल है किसान लोग लगाते हैं, जैसे धान गेहूं या ट्रेडिशनल फसल कोई भी लगाई, तो उसमें डेली मॉनिटरिंग नहीं होती, डेली उसकी देख रेख नहीं होती। लेकिन ये काम ऐसा है जरबेरा पुष्प का जो आपको हर एक दिन आपको उसकी देख रेख करनी पड़ेगी, कहाँ पे कौन सा फंगस लग रहा है, कहाँ पे कौन सी बीमारी लग रही है, कहाँ पे कौन सा कीड़ा लग रहा है, और कहाँ पे उत्पादन कम आ रहा है, कहाँ पे ज्यादा आ रहा है, कहाँ पे अच्छी क्वालिटी आ रही, कहाँ पे खराब क्वालिटी आ रही, आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि आपका जो मंडी में माल बिकेगा वो आपकी क्वालिटी प्लस क्वांटिटी पे डिपेंड होके ही बिकेगा, कि आप उससे अच्छा मुनाफा निकाल पाएंगे, वरना फिर जो ज्यादा पूंजी लग रही फिर आप जो है धीरे धीरे घाटे में चले जाएंगे।
2: तो आप इसको लगाते कब हैं, और एक बार लगाने के बाद कितने दिन तक फूल आपको मिलता रहता है?
3: डॉक्टर साहब इसको लगाने का जो अच्छा समय होता है वो तो प्लांटेशन का मतलब जो समय होता है वो 15 अगस्त होता है। दो तीन समय होते हैं साल में, एक तो आप 15 अगस्त में करा लीजिए, दूसरा आप जो है 15 अक्टूबर को करा लीजिए, तीसरा समय जो होता है वो फरवरी के पहले हफ्ते में करा लीजिए, जनवरी के लास्ट हफ्ते में करा लीजिए, या तो फरवरी के पहले हफ्ते में करा लीजिए। केवल

0: मौसम है साल में जिसमें आप इसका जरबेरा पुष्प का आप प्लांटेशन करा सकते हैं, उससे पहले 3 महीने आपको लगेंगे पूरा स्ट्रक्चर बनाने में। तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जब आप संपर्क करेंगे वहां से आपकी फाइल पास हो जाएगी, उसके बाद आप स्ट्रक्चर बना के आप प्लांटेशन करा दीजिए, फिर उसके बाद 3 महीने के बाद आपको फूल मिल जाता है। जैसे मिला मतलब फूल तो लगभग 2 महीने में ही आ जाता है, लेकिन उसकी स्टार्टिंग की जो 2 कली होती है उनको आप डिबडिंग करनी पड़ेगी आपको। उसका आपने डिबडिंग किया उसके बाद जो तीसरी फ्रेश फूल आया उसको आप निकालना चालू कर दीजिए, पैकिंग करके मंडी में सेल करिए। तो ये प्रोसेस ये है कि 3 महीने बाद जब से फूल आना चालू होगा तो करीब करीब आपका 4 से 5 साल तक अगर अच्छी देखरेख है, अच्छी मॉनिटरिंग है, मैनेजमेंट आपका अच्छा है, लेबर अच्छी है, लेबर पे आप ध्यान दे रहे हैं, आप जो काम बता रहे हैं वो लेबर कर रहा है, तो करीब करीब इससे 4 से 5 साल तक के आप फूल निकालेंगे, 4 से 5 साल तक की आपको रेगुलर आमदनी होगी डेली बेसिस पे।
1: 12 साल का आपका तजुर्बा है फूल उत्पादन का पाली हाउस में, तो पूरे साल में कितनी लागत गिरती है, उत्पादन कितना तक ले लेते हैं और आपका मुनाफा होता कितना है?
0: देखिए मोटा मोटा हम 1 एकड़ का बता के चलेंगे, आप उसी में जो है किसान भाइयों को हम समझाने के लिए 1 एकड़ का लेके चलते हैं। देखिए अगर आप खुद से कुछ काम नहीं कर रहे हैं, मतलब खुद से केवल देख रेख कर रहे हैं, तो मोटा मोटा इसमें जो लागत जो रनिंग जो लागत लगती है जो मंथली खर्चा आता है मोटा मोटा 70 से 80 हजार रुपए आएगा। मान के चलिए करीब करीब 10 लाख रुपए लगभग आपका 1 साल का खर्चा हो गया, और जो आपकी बिक्री जाएगी वो करीब करीब अगर 4 रुपए फूल का औसत पकड़ के चले तो करीब करीब लगभग 1 एकड़ में 10 लाख फूल निकलेगा, तो 10 से 40 लाख रुपए जाएगा, जिसमें से 2 रुपए करीब आप खर्चा निकाल लीजिए एक फूल पे, तो लगभग 20 लाख रुपए आपके खर्चे में चले जाएंगे। ये मतलब हम मोटा मोटा बता रहे हैं डॉक्टर साहब कि इसमें कुछ कम ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि कुछ किसान होते हैं अपने हाथ ज्यादा मेहनत कर लेते हैं, कुछ लोग होते हैं अपने हाथ ज्यादा मेहनत नहीं कर पाते, उनका काम पूरा लेबर पे डिपेंडेंट होता है, तो ये थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, तो करीब करीब 20 लाख रुपए आपको शुद्ध मुनाफा हुआ साल में। किसान इतना भी ना माने, किसान आप मोटा मोटा आप पकड़ लीजिए कि 1 एकड़ में साल में 12 से 15 लाख रुपए हर हाल में आपको बच जाना है।
1: बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: जी हमारा मोबाइल नंबर है 9670-56-83-13 9670-56-83-13 9670-56-83-13।
1: चलते चलते कुछ और कहना चाहते हैं आपकी कहानी के बारे में?
0: जी बिल्कुल कहना चाहते हैं हम, ये अपने देश के युवाओं से एक हमारी अपील है या हमारी रिक्वेस्ट है, हम उसको आग्रह करना चाहेंगे कि किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी की तरफ भागने से अच्छा है अगर आपके पास खेत है तो आप हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से संपर्क करिए। इस समय गवर्नमेंट कुछ लोन सुविधा अच्छे इंटरेस्ट 3% रेट इंटरेस्ट रेट पे लोन भी दे रहे हैं, अगर जिन युवाओं के पास अपना पैसा खुद की पूंजी नहीं है तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से संपर्क करके, ये एक बहुत ही अच्छा बहुत ही फ्यूचरिस्टिक काम है, ये जो प्रोटेक्टेड संरक्षित खेती है ये समझ लीजिए अपने देश की खेती को बहुत आगे ले जाने का एक प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में लग के अगर गाँव में आके कुछ काम करेंगे तो गाँव के लोगों को भी रोजगार देंगे, प्लस अपना अच्छी आमदनी करेंगे, अपने घर के घर रहेंगे और एक अच्छा मुनाफा जो है आप तो प्राप्त कर सकते हैं। तो अपने खेत का इस्तेमाल करें, उसको खेत से अच्छी पूंजी निकालने का प्रयत्न करें, तो निश्चित रूप से अगर आप अच्छी मेहनत करें तो निश्चित रूप से यहाँ की खेती अपने भारत की खेती एक बहुत अच्छी दिशा में जाएगी।
1: संदीप कुमार वर्मा भैया, आज के किसान क्रम में आपसे इतनी अच्छी बात हुई, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: प्रधानमंत्री किसान मान

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: पुनीता बहनी।
4: हाँ पूर्व भैया।
3: देखो हम पंचन का प्रयास रहते हैं कि अपने कार्यक्रम के माध्यम से अपने किसान भाई का हर वह जानकारी दीन जाए जी की उनका आवश्यकता रहा।
4: बिल्कुल भैया।
3: लेकिन तब कबो कबो यू होते जो उनका जानकारी चाहिए होते वह हम न दे पाए थे।
4: हाँ तो एक ही खातिर है ना कि वे हमका चिट्ठी पत्री के माध्यम से नहीं लिख के पूछ सकते हैं कि वे काज जाना चाहते और अपन कार्यक्रम कैसे इसके बारे में सुझाव भी दे सकते।
3: बिल्कुल तो पता बताओ।
4: तो भैया कार्यक्रम किसान वाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ और भैया पिन कोड है 226001।
3: और अपने पंच भाई देखो मोबाइल का और मेल का भी उपयोग करते हैं।
4: हाँ बिल्कुल भैया तो अपन हाथ में है, फोन है तुरंत है हमका लिख दें इसे।
3: बिल्कुल तो उनका मेल भी बता दी जाए।
4: बिल्कुल भैया कार्यक्रम के ईमेल आईडी है farmandhomeairlko@gmail.com।
3: तो पंच भाई हम सब लोग मिलकर आपका मेल का या आपके पत्रन का इंतजार करीबा और यह के साथ देखो अपने कार्यक्रम का समय भी समापन की तरफ बढ़ रहा है। तो पंच भाई से लीन जय विदा।
4: जय हिंद।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसानवाणी। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
2: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।
3: हर

0: फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूँ, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। समय 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज हवाई निरीक्षण कर मेरठ में कांवड़ियों पर की पुष्प वर्षा। कहा, कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा के लिए तैयार है सरकार। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज लखनऊ में इको एजुकेशनल हब का किया उद्घाटन। कहा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वैज्ञानिक सोच की परिकल्पना को साकार करता है ये केंद्र। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद और प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल आगरा में 2 दिवसीय एआई फ्यूचर रेडी कॉन्क्लेव 2026 के समापन समारोह में हुए शामिल। एआई के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कार्यों को सराहा और प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश जारी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में भारी वर्षा का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मुक्ता शर्मा। समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मेरठ के मोदीपुरम क्षेत्र में एक मंच से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। इस अवसर पर मेरठ के सांसद अरुण गोविल समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी कांवड़ यात्रियों पर गुलाब की पंखुड़ियां बरसाई। इसके साथ ही पूरे कांवड़ मार्ग पर हेलीकॉप्टर से भी शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा की गई। इससे पहले मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर से कांवड़

0: यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को कांवड़ यात्रियों की नियमित सुरक्षा, सम्मान सुविधा आदि की समुचित व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से संवाद करते हुए कहा कि सरकार पूरी तत्परता से कांवड़ यात्रियों के स्वागत और सुरक्षा के लिए तैयार है।
1: कांवड़ यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आए हुए सभी कांवड़ यात्रियों का मैं प्रदेश सरकार की ओर से स्वागत करता हूं, उन सबका अभिनंदन करता हूं, उनकी सुरक्षा के लिए और उनके स्वागत के लिए हम सब पूरी तत्परता के साथ तैयार हैं।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन, सेक्टर मजिस्ट्रेट, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, पुलिसकर्मी, जोन, रेंज, जनपद, थाना स्तर के साथ ही तमाम पुलिस अधिकारी भी अभियान का हिस्सा बनकर सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। उधर उत्तर रेलवे के मुरादाबाद रेल मंडल में वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक महेश यादव ने आज बताया कि कांवड़ मेला 2026 के दौरान रेल यात्रियों के सुविधाजनक आवागमन के लिए सहारनपुर, हरिद्वार, सहारनपुर अनारक्षित स्पेशल रेलगाड़ी का संचालन आज से 10 अगस्त तक किया जाएगा। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज लखनऊ में CSIR NBRI के बंथरा कैंपस में इको एजुकेशनल हब का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत के वैज्ञानिक संस्थान अब केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं है बल्कि समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप समाधान विकसित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये इको एजुकेशनल हब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस परिकल्पना को साकार करता है जिसमें विज्ञान, सतत विकास और जनभागीदारी को एकीकृत करते हुए देश की वनस्पतिक धरोहर को भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जा रहा है। डॉ सिंह ने इस बात पर बल दिया कि वैज्ञानिक संस्थानों को उभरती पर्यावरणीय एवं जलवायु संबंधी चुनौतियों का समाधान करने के लिए पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक प्रौद्योगिकी का समन्वय करना चाहिए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये केंद्र विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और प्रकृति प्रेमियों के लिए पर्यावरण शिक्षा, जैव विविधता संरक्षण तथा अनुभवात्मक अधिगम का एक अनूठा मंच सिद्ध होगा।
2: प्रत्येक प्रदेश के पौधे भी लगाए गए हैं, वो चाहें तो आकर के अपने प्रदेश के पौधे के साथ खड़े होकर के तस्वीर खिंचवा सकते हैं, सेल्फी खिंचवा सकते हैं। दूसरे विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर के यहाँ विधिवत PhDs और दूसरी तरह के अध्ययन कोर्सेज की भी व्यवस्था की जा सकती है।
0: केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद और केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल आज आगरा में 2 दिवसीय AI फ्यूचर रेडी कॉन्क्लेव 2026 के समापन समारोह में शामिल हुए। कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश AI के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि AI को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच के अनुरूप जो कार्य हो रहे हैं उसका असर धरातल पर दिख रहा है।
3: जहाँ AI एडॉप्शन की बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहाँ भारत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोच अनुरूप कार्य जो हो रहा है कि धरातल पर इसका प्रभाव दिखाई दे, कि कृषि से लेकर स्वास्थ्य से लेकर छोटे मध्यम उद्योग और तमाम ऐसी जगहों पे AI का इस्तेमाल करते हुए भारत कैसे आगे बढ़ेगा और ख़ास तौर पर हमारे युवा जिनकी आज प्रतिभा मैंने देखी, ये जो छात्र छात्राएँ हैं कॉलेजेस में, उनको AI के लिए क्या सरकार प्रोत्साहन दे रही है उसके बारे में जानकारी दी।
0: केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने कहा कि AI के बिना भारत विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता।
4: AI का भविष्य क्या है, हमें कितना इस्तेमाल करना चाहिए और क्यों करना चाहिए और इसके बिना भारत विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता है, तो विशेषज्ञों ने अपने विचार व्यक्त किए। 2 दिवसीय था, इस वैचारिक मंथन से अमृत निकलेगा, वो भारत को प्रधानमंत्री का विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को पूरा करेगा।
0: SP सिंह बघेल केंद्रीय राज्य मंत्री कार्यक्रम में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय भी शामिल हुए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज प्रयागराज में KP ग्राउंड में आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए देश के विकास में युवाओं की सहभागिता को लेकर चर्चा की। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। और अब शेष समाचार। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज प्रयागराज में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर जनपद एवं क्षेत्र से जुड़े विभिन्न स्थानीय विषयों पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से क्षेत्र की विकास आवश्यकताओं, जनहित से जुड़े विषयों तथा स्थानीय स्तर पर सामने आ रही समस्याओं की जानकारी प्राप्त की और संबंधित अधिकारियों को प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने

0: निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने आज बस्ती में जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए चादरों और एसी की स्थिति को लेकर नाराजगी जताई और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को व्यवस्थाएं तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने इमरजेंसी वार्ड में भर्ती मरीजों से उनके इलाज और अस्पताल में मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली।
1: मरीजों को अभी तक वातानुकूलित सेवाएं वहां उपलब्ध नहीं थी, तत्काल एसी लगाए जाने के निर्देश दिए। पूरे वार्ड को वातानुकूलित किया जाए, इसके लिए धनराशि रोगी कल्याण निधि में उपलब्ध है। अस्पताल परिसर की पूरी मरम्मत किया जाए, सड़कें जो टूटी हैं बनाई जाए।
0: प्रदेश के युवाओं को उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार एक पहल करने जा रही है। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा ने बताया कि शासन की ओर से सभी जिलाधिकारियों को जारी निर्देश में कहा गया है कि प्रत्येक जिले में तैनात IAS, IPS और IFS के युवा अधिकारी हर माह कम से कम एक इंटरमीडिएट स्तर के विद्यालय का भ्रमण कर विद्यार्थियों के साथ संवाद स्थापित करें। एक रिपोर्ट।
2: अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा ने कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए महानिदेशक स्कूल शिक्षा को प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इन कार्यक्रमों में सहभागितापूर्ण चर्चा और प्रश्नोत्तर को प्राथमिकता दी जाएगी। निर्देशों के अनुसार जिलाधिकारी प्रत्येक माह इन कार्यक्रमों का कैलेंडर तैयार करेंगे। प्रत्येक जिले को आयोजित कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण तैयार कर प्रत्येक माह की 5 तारीख तक शासन के माध्यमिक शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराना होगा। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: प्रदेश भर में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर अभियान तेज हो गया है। इसी क्रम में हर घर तिरंगा अभियान 2026 के सफल और प्रभावी आयोजन के संबंध में अमरोहा में जिलाधिकारी डॉ नितिन गौड़ ने लोगों से बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की है। वहीं पीलीभीत में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में जिलाधिकारी ज्ञानेन्द्र सिंह और पुलिस अधीक्षक सुकीर्ति माधव समेत बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, शिक्षक और स्थानीय लोग शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल सिद्धार्थनगर जिले के एक दिवसीय दौरे के दौरान डुमरियागंज एवं बांसी में लगभग 311 करोड़ रुपए की लागत वाली योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि मुख्यमंत्री के जनपद भ्रमण से सिद्धार्थनगर जिले को विकास की कई सौगातें मिलेंगी। प्रदेश के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश जारी है। नोएडा में बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। वहीं अगले 2 दिनों के लिए राज्य के कई भागों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं मैदानी और पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश की कई नदियों के जलस्तर में वृद्धि हुई है। घाघरा नदी बाराबंकी में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बदायूं और फर्रुखाबाद में गंगा, लखीमपुर खीरी में शारदा और अयोध्या में घाघरा नदी खतरे के निशान के पास बह रही है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज हवाई निरीक्षण कर मेरठ में कांवड़ियों पर की पुष्प वर्षा। कहा, कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा के लिए तैयार है सरकार। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज लखनऊ में इको एजुकेशनल हब का किया उद्घाटन। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैज्ञानिक सोच की परिकल्पना को साकार करता है ये केंद्र। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद और प्रोफेसर SP सिंह बघेल आगरा में 2 दिवसीय AI फ्यूचर रेडी कॉन्क्लेव 2026 के समापन समारोह में हुए शामिल। AI के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कार्यों को सराहा और प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश जारी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में भारी वर्षा का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:32 होने को हैं। अब प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज आप सुनेंगे सुमन कल्याणपुर के गाए भजन।

श्रोताओ, सुगम संगीत में आप सुन रहे हैं सुमन कल्याणपुर के गाए भजन। कार्यक्रम में अब वक्त है एक और भजन का।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज आप आनंद ले रहे हैं सुमन कल्याणपुर के गाए भजनों का। और अब कार्यक्रम में सुनते हैं ये अंतिम भजन।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज आपने सुने सुमन कल्याणपुर के गाए भजन। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 8 बजने को हैं, कुछ ही पलों में हम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे इस सप्ताह संसद में।

इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अविनाश। संसद के मॉनसून सत्र का ये तीसरा सप्ताह था। इस सप्ताह भी दोनों सदनों में विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग तथा अयोध्या के राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी जैसे मुद्दों को लेकर भारी हंगामा किया। इस वजह से पूरे सप्ताह दोनों सदनों में गतिरोध बना रहा। हालांकि इस दौरान कुछ अहम विधेयकों को बिना चर्चा के या

0: संक्षिप्त चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता का उल्लेख किया और उन्हें बधाई दी। इसके बाद उन्होंने प्रश्नकाल शुरू कराया, लेकिन विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। शोर शराबा जारी रहने पर अध्यक्ष ने बैठक दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। इसके बाद दोपहर 12 बजे और फिर अपराह्न 2 बजे भी सदन में हंगामे की स्थिति बनी रही, जिस कारण से कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी। सदन की बैठक दो बार के स्थगन के बाद 2 बजे शुरू हुई तो कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। सदन ने विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के बीच ध्वनिमत से बिना चर्चा के विधेयक को पारित कर दिया। मेघवाल ने मानसून सत्र के पहले दिन ही 20 जुलाई को सदन में यह विधेयक पेश किया था। इससे पहले सदन ने इस संबंध में राष्ट्रपति द्वारा मई में लागू किए गए अध्यादेश को नामंजूर करने के तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय के संकल्प को अस्वीकृत कर दिया। सदन ने विधेयक पर कुछ विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को भी खारिज कर दिया। विधेयक को चर्चा और पारित करने के लिए पेश करते हुए मेघवाल ने कहा कि यह विधेयक न्यायिक क्षेत्र में सुधार श्रृंखला की कड़ी है, जिसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान है। सरकार ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच ही भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 और बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 भी पेश किए। इसके बाद सदन की कार्यवाही दोपहर 2:10 पर ही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी इन्हीं मुद्दों को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता का उल्लेख किया और उन्हें बधाई दी। इसके बाद सभापति ने शून्यकाल शुरू कराया, लेकिन विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। कुछ सदस्यों ने तख्तियां दिखाई, जिस पर सभापति ने आपत्ति जताई। हंगामे के बीच ही कुछ सदस्यों ने लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाए। सदन में हंगामा जारी रहने पर सभापति ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। बैठक दोपहर 2 बजे शुरू होने पर नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाना चाहा, लेकिन अध्यक्ष ने इसकी अनुमति नहीं दी। हंगामे के बीच ही सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू हुई। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतनराम मांझी ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण में वर्ष 2014 से कई गुना बढ़ोतरी हुई है। मांझी ने कहा कि इस विधेयक में न केवल एमएसएमई की परिभाषा में सुधार किया गया है, बल्कि इसके कारोबार की सीमा को बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसी के साथ विधेयक पर लाए गए विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को सदन ने ध्वनिमत से खारिज कर दिया। इस दौरान विपक्षी सदस्य लगातार हंगामा और नारेबाजी करते रहे। सदन में व्यवस्था बनते न देख उपसभापति हरिवंश ने करीब 3:30 बजे बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। मंगलवार को लोकसभा की बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। वे अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे थे और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री के बयान की मांग कर रहे थे। हंगामा जारी रहने पर अध्यक्ष ने सदन की बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। बैठक 2 बजे शुरू होने पर पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने आवश्यक कागजात सदन के पटल पर रखने को कहा। इस दौरान विपक्षी सदस्य पहले की तरह ही शोर शराबा कर रहे थे। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विनियोग संख्यांक 3 विधेयक को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। हंगामे के बीच सदन ने इस विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक मुख्य रूप से कर प्रशासन को सुव्यवस्थित करने तथा आयकर कानूनों में आवश्यक बदलाव करने के लिए लाया गया है। उधर राज्यसभा में भी राम मंदिर चढ़ावा चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री के बयान की मांग कर रहे विपक्षी सांसदों के हंगामे के कारण बैठक बार बार बाधित हुई। उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राम मंदिर के निर्माण और प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा गठित ट्रस्ट के कुछ सदस्यों पर चढ़ावे की चोरी का आरोप लगाते हुए सवाल किया कि प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और अन्य जांच एजेंसियां आरोपों की जांच क्यों नहीं कर रही हैं। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने हमेशा भगवान राम का अपमान किया और राम मंदिर निर्माण का विरोध किया। इस बीच सदन में हंगामा जारी रहने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। सदन की बैठक 12 बजे शुरू होने पर भी सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा और सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने से जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया, किंतु सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा और नारेबाजी जारी रही। हंगामे के बीच विधेयक पर संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों पर जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संबंधी कानून को ठीक से लागू नहीं कर देश और लोकतंत्र के साथ धोखा करने का आरोप लगाया और दावा किया कि वर्तमान सरकार इन दोनों के सार्वभौमिक पंजीकरण के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही है। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 को और संशोधित कर विलंब से होने वाले पंजीकरण के प्रावधानों को कड़ा बनाना है। इसके बाद भी विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी जारी रही और उपसभापति हरिवंश ने बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। बुधवार को भी पहले जैसी स्थिति ही रही। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराया, लेकिन विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। वे अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे थे और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री के बयान की मांग दोहरा रहे थे। हंगामा देखते हुए अध्यक्ष ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। कार्यवाही फिर शुरू होने पर स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने चर्चा और पारित करने के लिए बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक औपनिवेशिक काल के 125 वर्ष पुराने बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम 1891 का स्थान लेगा। सदन ने हंगामे के बीच ही इस विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा की बैठक होते ही विपक्षी सदस्यों ने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे को लेकर विरोध जताते हुए नारेबाजी की और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मामले में गृहमंत्री की सदन में मौजूदगी की मांग की। हंगामे के बीच ही कुछ सदस्यों ने लोक महत्व से जुड़े अपने मुद्दे उठाए। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे बैठक फिर शुरू होने पर सभापति ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, किंतु सदन में हंगामा थमते न देख उन्होंने बैठक को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। दोपहर 2 बजे बैठक फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। विधेयक में उच्चतम न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने का प्रावधान है। विधेयक पर चर्चा के दौरान विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए। विधेयक पर करीब 2.5 घंटे तक चली चर्चा का जवाब देते हुए मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक न्यायिक क्षेत्र में सुधार श्रृंखला की कड़ी है, जिसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। कानून मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इसके बाद सदन में विपक्षी सदस्यों ने आसन की अनुमति से विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व के मुद्दे उठाए। इसके बाद सदन की बैठक पूरे दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। बृहस्पतिवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने की वर्षगांठ का उल्लेख किया और सदस्यों ने कुछ देर मौन रखकर पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद विपक्षी सदस्य सदन में हंगामा करने लगे और अध्यक्ष ने 11:03 पर बैठक अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक 2 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्य आसन के सामने आकर नारेबाजी करने लगे। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा तथा पारित कराने के लिए सदन के पटल पर रखा। विपक्ष के हंगामे के कारण विधेयक पर चर्चा नहीं हो सकी। सदन ने इस संबंध में जून में लागू अध्यादेश को अस्वीकृत करने के आरएसपी सदस्य एन के प्रेमचंद्रन के सांविधिक संकल्प को खारिज कर दिया। सदन ने कुछ विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को भी खारिज कर दिया। इसके बाद ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया गया। ये विधेयक सरकार को बैंकों और अन्य सेवा प्रदाताओं को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई और अन्य अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से होने वाले भुगतान पर शुल्क लगाने की अनुमति प्रदान करने का अधिकार देता है। इसके बाद बैठक दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच ही सदन ने विनियोग विधेयक को संक्षिप्त चर्चा के बाद लोकसभा को लौटा दिया, जिसके तहत सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में खर्च हुए अतिरिक्त राशि के लिए संसद से मंजूरी मांगी है। इस दौरान कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन भी किया। सुबह 11 बजे सभापति सीपी राधाकृष्णन ने बैठक शुरू होने पर शून्यकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन कांग्रेस तथा कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री के बयान की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच ही कुछ सदस्यों ने लोक महत्व से जुड़े अपने मुद्दे उठाए। सदन में हंगामा थमते न देख सभापति ने कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे दोबारा बैठक शुरू होने पर सभापति राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, लेकिन शोरगुल के कारण उन्होंने सदन की कार्यवाही दोपहर 2:15 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 2:15 पर बैठक पुनः शुरू होने पर भी सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा और उपसभापति हरिवंश ने 1 मिनट के भीतर ही बैठक को दोपहर 2:45 तक स्थगित कर दिया। 3 बार के स्थगन के बाद अपराहन 2:45 पर बैठक दोबारा शुरू होने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विनियोग संख्यांक 3 विधेयक को चर्चा के लिए सदन में पेश किया। विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा के दौरान कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दल के सदस्यों ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई पर गृहमंत्री के बयान की मांग करते हुए सदन से बहिर्गमन किया। विधेयक पर संक्षिप्त चर्चा के दौरान सदस्यों ने अर्थव्यवस्था से जुड़े विभिन्न पहलू उठाए। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री सीतारामन ने कहा कि सरकार ये अनुदान की अनुपूरक मांगे 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष में अतिरिक्त खर्च के लिए लाई है। उन्होंने कहा कि सरकार इस अतिरिक्त बजट को लोक लेखा समिति पीएसी की सिफारिश पर लाई है और पीएसी की अध्यक्षता विपक्ष के नेता के पास है। वित्त मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर इसे लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। इसके बाद सदस्यों ने आसन की अनुमति से विशेष उल्लेख के जरिए लोकहित के विभिन्न मुद्दे उठाए। सप्ताह के अंतिम दिन शुक्रवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने आगामी 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ का उल्लेख किया। फिर सदन ने कुछ क्षण मौन रखकर देश के स्वतंत्रता आंदोलन में बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी। अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत छोड़ो आंदोलन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के योगदान का उल्लेख करते हुए विपक्षी सांसदों से उनसे प्रेरणा लेने को कहा। अध्यक्ष ने कहा कि बाबा साहेब आम्बेडकर का मानना था कि देश के अंदर लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत करना है तो चर्चा और संवाद ही इसका रास्ता है। इसके बाद अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्षी सदस्य अपनी मांग दोहराते हुए नारे लगाने लगे। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 1 बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे सदन की बैठक शुरू हुई तो मंत्री जीतनराम मांझी ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित कराने के लिए सदन के पटल पर रखा। इस दौरान विपक्ष के सदस्य लगातार नारेबाजी करते रहे। हंगामे के बीच ही सदन ने विधेयक को चर्चा के बिना पारित कर दिया। राज्यसभा में यह विधेयक सोमवार को ही पारित हो चुका है। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और तब से सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे के कारण लगातार 15वें दिन भी प्रश्नकाल और शून्यकाल शुरू नहीं हो सके। राज्यसभा की बैठक सुबह 11 बजे शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आगामी 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ का जिक्र करते हुए कहा कि करो या मरो के नारे के साथ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी के लिए जो संघर्ष किया उसकी वजह से ही आज हम आजाद हवा में सांस ले रहे हैं। बाद में सदस्यों ने स्वतंत्रता संग्राम के वीरों के सम्मान में कुछ क्षण के लिए मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सभापति ने इसके बाद शून्यकाल शुरू कराना चाहा। विपक्षी सदस्यों के ने हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी और इसके बाद सदन में हंगामा जारी रहने पर करीब 5 मिनट के भीतर ही बैठक दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। अभी आप संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 8:15 हुए हैं। आइए अब आपको हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें।

अब से कुछ ही देर बाद यानी 8:20 पर हम हमारे लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे साप्ताहिक विधानमंडल समीक्षा। एक ही फिल्म के गीतों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फिल्म से प्रसारित होगा हमारे केंद्र से आज शाम 8:30 पर। आज की हमारी फिल्म होगी वर्ष 1970 में प्रदर्शित फिल्म कटी पतंग। आज रात्रि 9:30 पर हमारी दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे कार्यक्रम राष्ट्रीय संस्कृति पत्रिका संस्कृति भारती। आज रात्रि 10 हम हमारे दिल्ली केंद्र से ही रिले करेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। तो श्रोताओं, ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। आइए अब आपको हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना का समय रहेगा कल सुबह 6:05 पर। कल सुबह 6:30 पर प्रसारित होगा श्री रामचरित मानस गान। कल सुबह 6:40 पर होगा चिंतन। काव्यधारा में कल सुबह 6:45 पर श्रोता सुन सकेंगे श्री राजेश मिश्रा का काव्य पाठ। स्वास्थ्य चर्चा का प्रसारण समय रहेगा कल सुबह 7:05 पर। और कार्यक्रम में होगी जानकारी जिसका विषय होगा लहसुन एक गुणकारी औषधि, खेती की बातें। ये कार्यक्रम हमारे केंद्र से प्रसारित होगा कल सुबह 7:10 पर। कार्यक्रम में जानकारी का विषय होगा गेंदे की वैज्ञानिक खेती। कार्यक्रम सूरज के साथ साथ का प्रसारण समय रहेगा कल सुबह 7:31 पर। सामयिक चर्चा हम हमारे लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे कल सुबह 9:15 पर। कल 9:20 पर प्रसारित होगा लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है। कार्यक्रम में होंगे विविध कलाकारों के गाए रोहेलखंडी लोकगीत।

श्रोताओं के पत्रों पर आधारित कार्यक्रम आपका पत्र मिला प्रसारण समय रहेगा कल दोपहर 12:05 पर। फिल्मी संडे में होगी वर्ष 1993 में प्रदर्शित फिल्म दामिनी। इस फिल्म की स्टोरी हमारे श्रोता सुन सकेंगे। समय रहेगा कल दोपहर 12:30 पर। बाल वाटिका का प्रसारण समय रहेगा कल दिन में 1:15 पर। लोक संगीत के कार्यक्रम लोकधारा में बनारसी लाल जौहरी के गाए राजस्थानी लोकगीत हमारे श्रोता सुन सकेंगे। प्रसारण समय रहेगा कल दिन में 1:45। कल दिन में 2:30 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा एक और अनेक। इस कार्यक्रम के अंतर्गत श्रोता सुन सकेंगे गीतकार नक्श लायलपुरी के लिखे कुछ गीत। ये थी हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 8:20 होने को हैं। लखनऊ से हम रिले कर रहे हैं साप्ताहिक विधानमंडल समीक्षा।

0: विधानमंडल समीक्षा, आइए सुनते हैं विधानमंडल की साप्ताहिक समीक्षा। सबसे पहले सुनते हैं विधानसभा की साप्ताहिक समीक्षा। लेखक हैं योगेश नारायण श्रीवास्तव।
1: विधानसभा की साप्ताहिक समीक्षा। 18वीं विधानसभा का मॉनसून सत्र इस बार काफी संक्षिप्त रहा। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सत्र के कार्य दिवस के लिए 4 दिन निर्धारित किए गए थे। श्री राम मंदिर के चढ़ावा चोरी जैसे अन्य मुद्दों को लेकर सदन में हुए शोर शराबे और हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही मात्र 3 दिन ही चली। 3 दिन में भी कुल 5 घंटे 32 मिनट की कार्यवाही में 2 घंटे 49 मिनट का स्थगन रहा, जबकि 2 घंटे 43 मिनट तक सदन की कार्यवाही प्रभावी रूप से संचालित हुई। सत्र के

0: विभिन्न विधायी संसदीय एवं प्रक्रियागत कार्यों का निष्पादन किया गया। इसके साथ ही विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। सत्र के दौरान याचिका समिति को कुल 435 याचिकाएं प्राप्त हुई। परीक्षण के उपरांत 282 याचिकाएं स्वीकार की गई। प्रश्न व्यवस्था के अंतर्गत इस सत्र में कुल 2427 प्रश्न प्राप्त हुए, जिनमें 490 तारांकित तथा 1466 अतारांकित प्रश्न स्वीकार किए गए। इनमें से 120 उत्तरित तारांकित एवं 838 उत्तरित अतारांकित प्रश्नों के उत्तर शासन द्वारा उपलब्ध कराए गए। सपा सदस्यों के शोर शराबे और हंगामे के चलते जहां सदन के सारे कार्यों का निष्पादन हुआ, वहीं 59,000 करोड़ का अनुपूरक बजट भी पेश किया गया। सत्र के तीसरे और अंतिम दिन ही सदन में जहां ध्वनि मत से अनुपूरक बजट पारित किया गया, वहीं संभल हिंसा की रिपोर्ट भी सदन के पटल पर रखी गई। सत्र के पहले दिन विधानसभा में वर्तमान सदस्य आलमबदी सहित 21 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन की कार्यवाही मंगलवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। नेता सदन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और के वरिष्ठ सदस्य आलमबदी के निधन की सूचना दी। उन्होंने कहा कि आलमबदी इस सदन के सबसे वरिष्ठ और बुजुर्ग सदस्य थे और 5वीं बार निर्वाचित होकर आए थे। नेता सदन के अलावा नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे सहित सभी दलीय नेताओं ने आलमबदी के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर इसे सदन के अपूर्णीय क्षति बताया। इसी दिन विधानसभा में 21 पूर्व सदस्यों के निधन पर भी शोक व्यक्त किया गया। सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सपा के सदस्य श्री राम मंदिर के चढ़ावा चोरी प्रकरण को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए वेल में गए। सपा सदस्यों की मांग थी कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराई जाए। सपा सदस्यों के शोर शराबे और हंगामे के चलते सदन स्थगित करना पड़ा। सदन की कार्यवाही पुनः शुरू होते ही सपा के सदस्य नारेबाजी करने लगे। सपा सदस्यों के हंगामे के बीच ही सरकार ने अपने विधायी कार्यों को निस्तारित किया। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के बार बार कहने के बाद भी सपा के सदस्य अपने आसन पर नहीं गए। हंगामा कर रहे सपा सदस्यों को आगाह करते हुए उन्होंने कहा कि आप लोग विशेषाधिकार का हनन कर रहे हैं। उनकी इस चेतावनी के बाद भी सपा के सदस्य शांत नहीं हुए। हंगामे के दौरान ही सपा के सदस्य सचिन यादव ने सदन में मौजूद नेता सदन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो लहराने पर विधानसभा अध्यक्ष ने आपत्ति दर्ज कराई। बावजूद इसके वह नहीं माने तो उन्हें बलपूर्वक शेष सत्र के लिए निष्कासित कर दिया गया। स्थिति तब अभूतपूर्व हो गई जब नेता सदन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वक्तव्य देने के लिए खड़े हुए तो सपा के सदस्य नारेबाजी और हंगामा करते रहे। उनके वक्तव्य के समाप्त होने तक सपा के सदस्य नारेबाजी और हंगामा करते रहे। शोर शराबे के दौरान भाजपा और सपा सदस्य दोनों आमने सामने आ गए। सदन के सुरक्षा कर्मियों से धक्का मुक्की भी की। सदन स्थगित होने के बाद भी सपा के सदस्य नारेबाजी करते रहे और धरना देते रहे। सपा सदस्यों के हंगामे के बीच ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा सदस्यों का आचरण प्रदेश की 25 करोड़ जनता की भावनाओं से विश्वासघात है। जिस मंच का उपयोग जन समस्याओं को उठाने और उनके समाधान के लिए होना चाहिए, वहां पर इस तरह का शोर शराबा और हंगामा लोकतांत्रिक मर्यादा के विपरीत है। सत्र का तीसरा और अंतिम दिन भी शोर शराबे और हंगामे से सराबोर रहा। इसी बीच जहां विधायी कार्यों का निष्पादन हुआ, वहीं विपक्ष ने राम मंदिर के चढ़ावा चोरी प्रकरण को लेकर वेल में आकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करना नहीं छोड़ा। सपा सदस्यों द्वारा मुख्यमंत्री के संबोधन के दौरान किए शोर शराबे और हंगामे पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने क्षोभ व्यक्त किया। सदन की कार्यवाही पुनः शुरू होते ही सपा के सदस्य फिर चढ़ावा चोरी पर चर्चा की मांग को लेकर वेल में आकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। सपा सदस्यों के शोर शराबे और हंगामे के बीच ही सदन में जहां सारे विधायी कार्यों का निष्पादन हुआ, वहीं उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक का ध्वनि मत से पारित हो गया। सत्र के अंतिम दिन ही संभल हिंसा की रिपोर्ट भी पटल पर रखी गई। सपा सदस्यों द्वारा शोर शराबे और हंगामे पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि विधायिका किसी से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि वाद विवाद सहमति और असहमति लोकतंत्र का अंग है, परंतु भाषा की मर्यादा हमें ध्यान में रखनी होगी। संसदीय आचरण की परिधि लांघना इस संस्था के लिए अत्यंत हानिकारक है।
1: यह थी विधानसभा की साप्ताहिक समीक्षा। अब सुनते हैं विधान परिषद की साप्ताहिक समीक्षा। लेखक हैं मुकुल मिश्रा।
0: विधान परिषद सदन की कार्यवाही बीते सप्ताह मात्र 3 दिन ही चली। प्रस्तावित कार्यक्रम से 1 दिन पूर्व ही सदन की बैठक समाप्त हो गई। हालांकि पहली बार सदन में पूर्ण वंदे मातरम का गायन हुआ। विपक्ष ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला, प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक और शिक्षा के गिरते स्तर व बेसिक स्कूल बंद होने के मुद्दे उठाकर सरकार को घेरा, लेकिन सरकार ने भी पूरी तैयारी से विपक्ष को करारा जवाब दिया। नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव के खिलाफ सदन में निंदा प्रस्ताव पारित हुआ। इसके साथ ही सदन में अनुपूरक बजट समेत 12 विधेयक ध्वनिमत से पारित हुए और सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। पहले दिन सोमवार को सदन की कार्यवाही पूर्वाह्न 11 बजे वंदे मातरम से हुई। पहली बार पूर्ण वंदे मातरम का गायन हुआ। प्रश्न प्रहर शांतिपूर्वक चला। शून्य प्रहर में सदन ने अपने पूर्व सदस्य जयप्रकाश चतुर्वेदी को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। शून्य प्रहर में भाजपा के डॉक्टर विजय बहादुर पाठक ने नियम 59 में वाराणसी स्थित प्राचीन व ऐतिहासिक बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने पर कहा कि सारनाथ बौद्ध परंपरा पवित्र स्थल के रूप में सार्वभौमिक मान्यता प्रदत्त है। ये सदन सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने पर गर्व करता है तथा इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी के प्रति कृतज्ञता पूर्वक धन्यवाद ज्ञापित करता है। इसके साथ ही उन्होंने नियम 115 में राजस्व मामलों से संबंधित विषय उठाते हुए लोक अदालत की तर्ज पर राजस्व जन अदालत शुरू करने की मांग की। इसके बाद समाजवादी पार्टी के लाल बिहारी यादव, राजेंद्र चौधरी, डॉक्टर मान सिंह यादव, मुकुल यादव, आशुतोष सिन्हा, बलराम यादव, मोहम्मद जासमीर अंसारी, शाहनवाज खान और शाह आलम ने उत्तर प्रदेश के मंदिरों के प्रबंधन में वित्तीय अनियमितताओं का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाते हुए राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर हंगामा किया। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही को पहले 15 मिनट के लिए स्थगित किया, जिसे बाद में 20 मिनट के लिए और बढ़ा दिया गया। नेता सदन और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, लंबे संघर्ष के बाद रामलला का मंदिर बना, हमें मंदिर बनाने पर गर्व है। निर्दलीय समूह के नेता राजबहादुर सिंह चंदेल ने शिक्षणेतर कर्मचारियों और रिटायर्ड शिक्षकों कर्मचारियों को भी कैशलेस चिकित्सा योजना में शामिल किए जाने का मुद्दा कार्यस्थगन के रूप में उठाया। नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हमारी सरकार ने शिक्षकों के लिए बड़ा काम किया है। यदि कोई वर्ग छूट रहा है या कोई दिक्कत है तो मुख्यमंत्री से बात करके रास्ता निकालेंगे। दूसरे दिन मंगलवार को समाजवादी पार्टी के लाल बिहारी यादव, राजेंद्र चौधरी, डॉक्टर मान सिंह यादव, मुकुल यादव, आशुतोष सिन्हा, बलराम यादव, किरण पाल कश्यप, मोहम्मद जासमीर अंसारी, शाहवाज खान, शाह आलम ने प्रदेश में शिक्षा के गिरते स्तर और बेसिक स्कूल बंद किए जाने का मुद्दा कार्यस्थगन के रूप में उठाया। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सदन में विपक्ष ने जो आंकड़े पेश किए हैं वे गलत हैं। ये जनता को भ्रमित कर भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार पर गलत बयानी का आरोप लगाते हुए सपा सदस्य सदन से वॉकआउट कर गए। नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुपूरक अनुदान की मांगों को सदन में प्रस्तुत किया। भाजपा सदस्य विजय बहादुर पाठक ने नियम 110 में नगरों के फुटपाथों एवं सार्वजनिक मार्गों पर बढ़ते अतिक्रमण तथा अवैध कब्जों को हटाने एवं जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित किए जाने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में विशेष अभियान चलाकर फुटपाथों एवं सार्वजनिक मार्गों को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए। इसके साथ ही निर्दल समूह के राजबहादुर सिंह चंदेल ने राज्य शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रवक्ताओं के ग्रेड पे का मुद्दा उठाया। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि सरकार इनके प्रमोशन की तैयारी कर रही है, प्रमोशन की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। तीसरे दिन बुधवार को अनुपूरक बजट समेत 12 विधेयक बहुमत से पारित हुए। अनुपूरक बजट पारित कराने के प्रस्ताव पर नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने आपत्ति दर्ज कराते हुए चर्चा कराने की मांग की। इसी बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखा टकराव हुआ। सभापति के निर्देश के बाद भी बैठे नहीं और विरोध करते रहे। वह सभापति तथा नेता सदन पर टिप्पणी की और सदस्य सदन से वॉकआउट कर गए। इसके बाद भाजपा सदस्यों की मांग पर नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने उसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे सदन में पारित किया गया।
1: अभी आप सुन रहे थे विधानमंडल की साप्ताहिक समीक्षा। लेखक थे योगेश नारायण श्रीवास्तव और मुकुल मिश्रा।
2: विधानमंडल समीक्षा कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के
3: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 8:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है एक ही फिल्म के गीतों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फिल्म से। श्रोताओं, आज की हमारी फिल्म है वर्ष 1970 में प्रदर्शित फिल्म कटी पतंग। श्रोताओं, फिल्म कटी पतंग का निर्देशन किया था शक्ति सामंत ने और फिल्म की स्टोरी लिखी थी ब्रजेंद्र सिंह ने। फिल्म में अभिनेताओं में नजर आए थे राजेश खन्ना, प्रेम चोपड़ा और फिल्म की अभिनेत्री रहीं आशा पारेख। फिल्म का छायांकन किया था वी गोपी कृष्णा ने और संपादक थे गोविंद दलवाड़ी। फिल्म में बेहतरीन गीत बन पड़े थे जो आज भी गुनगुनाए जाते हैं। फिल्म का संगीत दिया था मशहूर संगीतकार आरडी बर्मन ने। श्रोताओं, आइए सुनते हैं इसी फिल्म का ये गीत।

कि पुरस्कारों की अगर बात करें तो लगभग सभी कैटेगरी में शक्ति सामंत, राजेश खन्ना, गुलशन नंदा, आशा पारेख और किशोर कुमार और आनंद बख्शी को, यानी निर्देशन पुरस्कार में, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार में, अभिनेत्री पुरस्कार में और पार्श्व गायक पुरस्कार में, गीतकार पुरस्कार में नामित तो किया गया, लेकिन सिर्फ आशा पारेख ने फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। आइए सुनते हैं इसी फिल्म का एक और गीत।

लता मंगेशकर के गाए इसी गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फिल्म से अब यहीं संपन्न होता है। श्रोताओ, अभी आपने सुना फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज की हमारी फिल्म थी कटी पतंग। हम आकाशवाणी के नजीब आबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 8:45 होने को हैं। कुछ ही क्षणों में हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार होंगे।

0: मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, याद रखें समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा उनका देश कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध लेकिन दबाव में आत्मसमर्पण नहीं करेगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। नदियों का जलस्तर बढ़ने से ओडिशा में एक बार फिर बाढ़ का खतरा। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में कल अश्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यू हान से होगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभाती है।
2: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है।
2: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूं चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ये पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी।
2: आज भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है।
1: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने IIT दिल्ली में उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया है। मुंबई में आज सहकार नव क्रांति कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि डिजिटल लेनदेन में धोखाधड़ी बढ़ रही है और बैंकिंग सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत फोरेंसिक सहायता की आवश्यकता है। श्री शाह ने बताया कि राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम तथा राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
3: आज हमारे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन और NFSU फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ जो समझौता हुआ इससे हमारी छोटी सी छोटी बैंक की हर ब्रांच में भी ये सारी सुविधाएं बहुत कम लागत में देने का काम अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन करेगा। इससे साइबर सुरक्षा, डिजिटल फोरेंसिक कर्मचारियों का इस दोनों क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान, ये सभी व्यवस्था एक साथ बैंक इन बॉक्स से हो जाएगी।
1: केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने एक सुरक्षा संचालन केंद्र का भी शुभारंभ किया। ये शहरी सहकारी बैंकों को 24 घंटे साइबर निगरानी और सुरक्षा सहायता प्रदान करेगा। श्री शाह ने देश के सभी सहकारी बैंकों से राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम में शामिल होने का भी आग्रह किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली कैश फ्री पेमेंट्स, डार्विन डायनेमिक्स, वर्ल्ट इंडिया, कॉर्स 24 और काउंसिल फॉर स्टार्टअप के साथ भी समझौता किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्टार्टअप्स के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के लिए UPI निःशुल्क रहेगा और सभी व्यक्तिगत लेन देन निःशुल्क बने रहेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि UPI के माध्यम से भुगतान करते समय उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार का लेन देन शुल्क नहीं देना होगा, जबकि अधिकांश व्यापारी लेन देन भी निःशुल्क रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यदि व्यापारी छूट दर शुल्क लागू किया जाता है तो ये केवल एक निश्चित सीमा से अधिक के सीमित व्यापारी लेन देन पर नाममात्र दर से लागू होगा। मंत्रालय ने कहा है कि भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम में संशोधन एक सक्षम प्रावधान है जिसका उद्देश्य UPI की दीर्घकालिक स्थिरता, तकनीकी उन्नति और उभरते जोखिमों के प्रति लचीलापन सुनिश्चित करना है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। श्री जोशी ने कहा कि यह आंकड़ा भारत की स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति को दर्शाता है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने देश में महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल लागू करने की शिरोमणि अकाली दल की मांग का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर महिलाओं को सशक्त बनाना होगा और निष्पक्ष तथा समान परिसीमन सुनिश्चित करना होगा जिससे सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व मिले। शिरोमणि अकाली दल ने चंडीगढ़ में अपने वरिष्ठ नेताओं की बैठक में ये मांग रखी थी। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC और राज्य में अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं का मामला अब सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस बीच राज्य सरकार और विभिन्न छात्र संगठनों के बीच बातचीत जारी है।
4: 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर परीक्षा रद्द करने और नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग की गई है। जयपाल सिंह हुड्डा स्टेडियम में पिछले कई दिनों से आंदोलनरत छात्र अपनी मांगों पर कायम हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि केवल मौखिक आश्वासन से संतुष्ट नहीं होंगे और जब तक ठोस परिणाम सामने नहीं आता आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच राज्य सरकार ने विभिन्न छात्र संगठनों से बातचीत का सिलसिला तेज कर दिया है। कई संगठनों के प्रतिनिधियों से वार्ता के बाद सरकार ने उनकी मांगों और सुझावों पर आगे निर्णय लेने की बात कही है। प्रशासन ने आंदोलन के मद्देनजर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: रेलवे ने मध्य प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए रोजाना चलने वाली इटारसी मदन महल पैसेंजर रेलगाड़ी को मंजूरी दी है। ये रेलगाड़ी 5 घंटे से अधिक समय में 242 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ये बगरा तवा, सुहागपुर और दूसरे स्टेशनों पर रुकेगी। ये आकाशवाणी है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में भोपाल में 5 अगस्त से चल रही 11वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में आज भोपाल घोषणा पत्र स्वीकार किया गया। इसका उद्देश्य ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग मजबूत करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में 10 ब्रिक्स सदस्य और 4 सहयोगी देशों सहित कुल 14 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
5: बैठक की शुरुआत केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के संबोधन से हुई। इसके बाद ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्रियों और प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक और भोपाल डिक्लेरेशन के प्रमुख बिंदुओं की जानकारी दी। इसके साथ ही भोपाल में आयोजित ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक के प्रमुख कार्यक्रम भी सम्पन्न हो गए हैं। अब ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि सांची के लिए रवाना हो गए हैं, जहाँ वे विश्व धरोहर और बौद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिचित होंगे। कल यानी 9 अगस्त को प्रतिनिधिमंडल भीम बैठका का दौरा करेगा, जहां वे भारत की प्राग ऐतिहासिक और प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को करीब से देखेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से विपिन मिश्रा।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मेडिकल डिवाइस कॉन्फ्रेंस 2026 में सीईओ गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में नवाचार, नियामक उत्कृष्टता, घरेलू विनिर्माण, मूल्य श्रृंखला, बाजार पहुंच और निर्यात को मजबूत करने के दृष्टिकोण पर चर्चा हुई, ताकि भारत को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपकरणों के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सके। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कहा है कि ईरान कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य नहीं होगा। एक रिपोर्ट।
6: राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने युद्ध समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के साथ वार्ता

0: करने और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के अपनी सरकार के निर्णय का बचाव किया। उन्होंने कहा कि जब तक अमरीका समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करता है, ईरान भी अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करेगा, लेकिन अगर अमरीका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहता है तो ईरान इसे जारी रखने के लिए बाध्य नहीं होगा। इससे पहले अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्वास व्यक्त किया था कि ईरान के साथ संघर्ष जल्द ही समाप्त हो सकता है। श्री ट्रंप ने दोहराया कि अमरीका ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने होर्मुज जलडमरु मध्य से संबंधित चल रही वार्ताओं पर भी सकारात्मक परिणाम की आशा व्यक्त की है। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने सरकारी कंपनी अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी से जुड़े एक जहाज पर होर्मुज जलडमरू मध्य के पास हुए ईरान के हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह घटना समुद्री आवाजाही की आजादी की गारंटी देने वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का उल्लंघन है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरल, माहे, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की आशंका है। आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तेज बारिश हुई। राजधानी में कल सुबह भी बारिश की संभावना है। उधर ओडिशा में बाढ़ का खतरा एक बार फिर मंडरा रहा है। बैतरनी और सालंदी नदियों का जलस्तर बढ़ने से भद्रक और अन्य निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका व्यक्त की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं।
2: उड़ीसा में एक बार फिर भारी बारिश हो रही है। आईएमडी ने सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़ और संबलपुर के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है, जबकि कई अन्य जिलों के लिए येलो वार्निंग लागू है। भद्रक में सालंदी और बैतरणी नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा फिर से पैदा हो गया है। भद्रक और तिहिड़ी ब्लॉक के कई निचले इलाकों और गाँव में पानी भरा हुआ है। कटक में सापुआ और कंटिया नदियों के उफान पर होने से पुराने कटक संबलपुर रोड के कुछ हिस्सों पर आवाजाही प्रभावित हुए हैं और खेतों में पानी भर गया है। भारी बारिश ने राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: और अब कुछ खेल खबरें। अश्मिता चालिहा कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंच गई हैं। अश्मिता ने आज सेमीफाइनल में भारत की ही रक्षिता रामराज को हराया। अश्मिता का मुकाबला कल फाइनल में चीन की क्यू हान से होगा। उधर उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलकों ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीता है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजशकियन ने कहा उनका देश कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन दबाव में आत्मसमर्पण नहीं करेगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। नदियों का जलस्तर बढ़ने से ओडिशा में एक बार फिर बाढ़ का खतरा। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में कल अश्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यू हान से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashwani and I am Valsa Williams with news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi emphasizes importance of innovation, research and emerging technologies in shaping India's growth trajectory. Union Minister Amit Shah stresses need for stronger cyber security and digital safeguards for urban cooperative banks. Government signs strategic MOUs with key industry leaders to strengthen support to startups. Iranian President says his country is committed to diplomacy but will not surrender under pressure. Orange alert issued for heavy to very heavy rainfall over Uttarakhand and Chhattisgarh tomorrow. Flood threat again looms over Odisha with rising river levels. And in badminton, Ashmita Chaliha to face China's Che Han in women's singles final, a Korea Masters tournament.

संस्कृति केवल हमारी स्मृतियों में सुरक्षित अतीत का नाम नहीं, वो उन विचारों, मूल्यों, कलाओं और अनुभवों की एक निरंतर यात्रा है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हुए हमारे वर्तमान को अर्थ देती है और भविष्य की दिशा तय करती है। भारत की सांस्कृतिक चेतना और समृद्ध ज्ञान परंपरा में स्वतंत्रता का विचार भी कुछ ऐसा ही है। केवल राजनीतिक मुक्ति नहीं, बल्कि विचारों की स्वतंत्रता।

0: ज्ञान की स्वतंत्रता, अपनी पहचान और अपनी परंपराओं को समझने की स्वतंत्रता। इसी विषय पर आज की पत्रिका के संपादकीय में हमारे साथ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय की प्राध्यापक डॉक्टर विभा नाइक।
1: भारतीय ज्ञान परंपरा विश्व की प्राचीनतम वैचारिक धरोहर है, जिसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यह किसी एक रूढ़ी, डॉग्मा या संकीर्ण विचारधारा से बंधी हुई नहीं है, बल्कि इसके मूल में स्वतंत्रता का एक ऐसा गहरा, व्यापक और बहुआयामी मूल्य निहित है जो मनुष्य को न केवल बाहरी बंधनों से मुक्त करता है, बल्कि उसे आंतरिक और आध्यात्मिक धरातल पर भी परम स्वतंत्र बनाता है। आधुनिक युग में जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो हमारा ध्यान राजनीतिक अधिकारों, अभिव्यक्ति की आजादी, नागरिक स्वतंत्रताओं और व्यक्तिगत स्वायत्तता की ओर ही अधिक जाता है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि भारतीय चिंतन में स्वतंत्रता केवल अधिकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानव अस्तित्व के चरम लक्ष्य और उसके लोक परलोक के कल्याण से भी जुड़ी हुई है। स्वतंत्रता शब्द दो पदों से मिलकर बना है, स्व और तंत्र, जिसका अर्थ है अपने तंत्र या अपने नियम के अधीन होना। यहाँ स्व का अर्थ व्यक्ति की वह अंतर्निहित चेतना है जो समूचे ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है, जिसका लक्ष्य है वासनाओं, विकारों, अज्ञान और इंद्रियों की अधीनता से मुक्ति। इस स्वतंत्रता की सिद्धि तब होती है जब मनुष्य अपने विवेक और धर्म के अनुशासन में रहकर आचरण करता है। इसीलिए भारतीय चिंतन धारा में स्वतंत्रता का लक्ष्य मोक्ष या मुक्ति है, जिसे सभी आस्तिक दर्शनों में जीवन का अंतिम लक्ष्य स्वीकारा गया है। स्वतंत्रता का यह बोध भारतीय ज्ञान परंपरा की पहचान है। भारतीय ज्ञान परंपरा में जहाँ वेदों को परम प्रमाण मानने वाली आस्तिक परंपराएं जैसे न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत दर्शन है, तो वहीं वेदों की सत्ता को खारिज करने वाली नास्तिक परंपराएं जैसे जैन, बौद्ध और चार्वाक दर्शन भी समानांतर रूप से हैं। विचार और अभिव्यक्ति की इसी स्वतंत्रता का एक उत्कृष्ट उदाहरण हमें उपनिषदों के संवादों में भी मिलता है, जहां गुरु और शिष्य के बीच अत्यंत लोकतांत्रिक और स्वतंत्र माहौल में संवाद मिलता है। इसी प्रकार श्रीमद् भगवद् गीता में भी जब अर्जुन विषाद से घिर जाते हैं और किं कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, तब भगवान कृष्ण उन्हें जीवन, प्रकृति, कर्म और आत्मा का गहनतम ज्ञान देते हैं और पूरे 18 अध्यायों के बृहत उपदेश के बाद अंत में अर्जुन से कहते हैं, मैंने तुम्हें यह परम गोपनीय ज्ञान दिया है, अब तुम इस पर पूरी तरह से विचार करो, इसका विश्लेषण करो और फिर जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। निर्णय लेने की यह स्वायत्तता और स्वतंत्रता ही भारतीय ज्ञान परंपरा का वास्तविक गुण है, जो भारतीय सामाजिक और राजनीतिक चिंतन में भी धर्म के माध्यम से प्रतिध्वनित होता है। यहाँ यह ध्यातव्य है कि यहाँ धर्म का तात्पर्य किसी विशेष कर्मकांड या संप्रदाय से नहीं है, बल्कि उन सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों, कर्तव्यों और नियमों से है जो समाज के विनियमन के लिए आवश्यक हैं। इसी धर्म का प्रभाव है कि भारतवर्ष में कभी भी राजा की सत्ता को निरंकुश और असीमित नहीं माना गया है। ऋग्वेद का संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम का उद्घोष सामाजिक स्वतंत्रता और समता का एक ऐसा ही प्रमाण है जो सभी को अपने साथ चलने, साथ बोलने और सभी के मनों को समान रूप से समझने के भाव पर केंद्रित है। यह इस बात का भी प्रमाण है कि सामूहिक चेतना के विकास के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता और परस्पर संवाद को कितना अनिवार्य माना गया है। इसी प्रकार भारत ही नहीं विश्व में समादृत रामचरितमानस के उत्तर कांड से एक उदाहरण द्रष्टव्य है, जहां राज्याभिषेक के बाद राम प्रजा को संबोधित करते हुए कहते हैं, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई, जो अनीति कछु भ

0: बहुधा वदंती की विश्वासी है। आज जब दुनिया में अपने विचार को ही एकमात्र सत्य मानकर दूसरों पर थोपने की हिंसक प्रवृत्ति बढ़ रही है, तब भारतीय ज्ञान परंपरा का यह मूल्य हमें सह अस्तित्व, सहिष्णुता और लोकतांत्रिक विमर्श की वास्तविक राह दिखाता है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो इस स्वातंत्र्य बोध की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि आज का व्यक्ति राजनीतिक रूप से स्वतंत्र है, उसे मतदान का अधिकार है। बाजारवादी संस्कृति ने उसे अपनी पसंद की वस्तुएं खरीदने की असीमित आजादी भी दी है। वह समाज, प्रकृति और परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को भूलता जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आज पर्यावरण संकट, जलवायु परिवर्तन और सामाजिक बिखराव जैसी परिस्थितियां बनी हुई हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ स्वार्थ सिद्धि प्रमुख है, स्व का बोध या स्वातंत्र्य बोध का विचार यहाँ दूर दूर तक नहीं है। भारतीय ज्ञान परंपरा इस एकांगी स्वतंत्रता के स्थान पर एक पूरक और समग्र स्वतंत्रता मॉडल प्रस्तुत करती है। यहाँ व्यक्ति की स्वतंत्रता समाज और प्रकृति की स्वतंत्रता के साथ जुड़ी हुई है। आधुनिक पर्यावरण चेतना और सतत विकास का मूल मंत्र भी यही कहता है कि हमारी उपभोग की स्वतंत्रता तब तक ही न्याय संगत है जब तक वह दूसरों के अस्तित्व और प्रकृति के संतुलन को खतरे में न डाले। इस प्रकार हम पाते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा में निहित स्वतंत्रता का मूल्य अत्यंत व्यापक, गहन और शाश्वत है। यह काल और भूगोल की सीमाओं से परे जाकर संपूर्ण मानवता के कल्याण की बात करता है। विश्व को यह समझने की आवश्यकता है कि आज के आधुनिक लोकतांत्रिक समाजों को यदि अधिक मानवीय, संवेदनशील, न्यायपूर्ण और टिकाऊ बनाना है तो उन्हें स्वतंत्रता की केवल बाहरी व कानूनी अवधारणाओं तक ही सीमित रहने के बजाय भारतीय चिंतन धारा के चेतना और कर्तव्य आधारित स्वतंत्रता मूल्य को आत्मसात करना होगा।
1: भारतीय ज्ञान परंपरा में निहित स्वतंत्रता के मूल्य, इसी विषय पर आज के संपादकीय में अभी आपने सुना दिल्ली विश्वविद्यालय की प्राध्यापक डॉक्टर विभा नाइक को। भारतीय ज्ञान परंपरा की यही विशेषता है कि वो हमें केवल उत्तर नहीं देती, वो प्रश्न करने का साहस भी देती है, और शायद यही किसी भी जीवंत संस्कृति की सबसे बड़ी ताकत है। साहस अज्ञानता के विरुद्ध प्रश्न करने का हो या किसी अन्याय के विरुद्ध। हमारे देश में ऐसी प्रबुद्ध और साहसी आवाजों की कमी कभी नहीं रही।

0: आज जब हम भारत की आजादी की कहानी याद करते हैं तो हमारे सामने कुछ बड़े नाम, कुछ बड़े आंदोलन और कुछ ऐतिहासिक घटनाएं उभरती हैं। लेकिन आजादी की ये कहानी सिर्फ उन्हीं नामों की नहीं थी, ये उन अनगिनत स्त्री पुरुषों की भी कहानी थी जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। ऐसी ही एक आवाज को समर्पित है हमारी अगली प्रस्तुति, हिमालय की बेटी, आजादी की आवाज।
1: चौदह जनवरी 1902, दक्षिण सिक्किम के संगमू गांव में एक बच्ची ने जन्म लिया। लेप्चा समुदाय के एक परिवार में जन्मी हेलेन उनके माता पिता की 7 संतानों में तीसरी थी। बाद में उनका परिवार करसियांग आ गया, वो पहाड़ी इलाका जहां चाय के बागान और शिक्षा के नए अवसर उनके जीवन को एक नई दिशा देने वाले थे। लेकिन हेलेन की राह आसान नहीं थी, कम उम्र में ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। मगर पढ़ाई छूटने का अर्थ ये नहीं था कि सीखने और आगे बढ़ने का सिलसिला भी रुक गया। सन 1917, पहाड़ियों में चरखे और खादी का आंदोलन चल रहा था। कलकत्ता से आए एक वक्ता के भाषण ने युवा हेलेन के मन को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने तय कर लिया उनका जीवन अब देश की सेवा के लिए होगा। अगले ही वर्ष 1918

0: में वो कलकत्ता पहुंची। चरखा प्रशिक्षण केंद्र में सूत काटना सीखा। उनकी प्रतिभा और लगन ने उन्हें मुजफ्फरपुर बिहार में आयोजित खादी और चरखा प्रदर्शनी में कलकत्ता का प्रतिनिधित्व करने का अवसर भी दिया। फिर आया वर्ष 1920। बिहार भयंकर बाढ़ की चपेट में था। हजारों लोग प्रभावित हुए थे। ऐसे समय में हेलेन लेप्चा राहत कार्यों में जुट गई निस्वार्थ भाव से लगातार, और इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई महात्मा गांधी से। हेलेन की सेवा और समर्पण से प्रभावित होकर गांधी जी ने उन्हें साबरमती आश्रम में आने का निमंत्रण दिया। साबरमती आश्रम में गांधी जी ने उनके व्यक्तित्व और देशभक्ति को करीब से देखा। यही गांधी जी ने उन्हें नया नाम दिया, सावित्री देवी। लेकिन जिस आवाज में इतनी दृढ़ता हो, वो सत्ता को भला कैसे सुहाती? ब्रिटिश सरकार की निगाहें अब उन पर थी। उनके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ। गिरफ्तारी से बचते हुए वो इलाहाबाद पहुंची और कुछ समय आनंद भवन में रही। वहां उनका संपर्क कांग्रेस के कई नेताओं से हुआ, लेकिन पहाड़ उन्हें पुकार रहे थे। वो वापस करसियांग लौटी और दार्जिलिंग की पहाड़ियों में स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत करने में जुट गई। घर घर जाकर विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का अभियान, ब्रिटिश प्रशासन की पाबंदियां और उनके सामने एक दृढ़ निश्चय, वो पीछे नहीं हटी। 29 जनवरी 1922, हेलेन लेप्चा गिरफ्तार कर ली गई। दार्जिलिंग सदर जेल में 3 महीने, फिर करसियांग में नजरबंदी। समय आगे बढ़ा। सन 1939 और 40, नेताजी सुभाष चंद्र बोस करसियांग में नजरबंद थे। हेलेन लगातार उनके संपर्क में रही। कहा जाता है कि वो संदेश पत्रों के माध्यम से पहुंचाती थी।
1: मैं दिलीराम दुलाल, एक पत्रकार और इतिहास के विद्यार्थी।
2: कोलकाता में मोहम्मद अली पार्क में आयोजित सभा में हेलेन लेप्चा महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गई थी। उन्होंने धारिया कोयला क्षेत्र के 10,000 से अधिक मजदूरों का नेतृत्व करते हुए आदिवासी श्रमिकों को शोषण के खिलाफ ऐतिहासिक प्रदर्शन भी किया था। उनको इसी आंदोलन में शामिल होने के कारण गिरफ्तार भी किया गया था। और बाद में जब उन्होंने दार्जिलिंग में अपने साथियों के साथ सदर जेल में 3 महीने तक, बाद में 3 वर्षों तक फास्टैग में जब उनको नजरबंद रखा गया था, उस समय में भी उन्होंने स्वतंत्र संग्राम में योगदान दिया था। जैसे कि 1939-40 में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस खारसंग में नजरबंद थे, तब उन्हें उनके साहसिक पलायन में महत्वपूर्ण सहायता की थी। बताया जाता है कि पठान की भेष तैयार करने में हेलेन लेप्चा ने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह किया था। उनके योगदान के कारण सिक्किम सरकार ने हाल ही में सरकारी मेडिकल कॉलेज को उनके नाम पर रखने के लिए हेलेन लेप्चा मेडिकल कॉलेज निर्णय किया है।
3: मैं सोमनाथ पांडे, सिक्किम से। मैं एक सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी हूँ। हेलेन लेप्चा के खोज में हम लोग ने सक्रियता से काम किया। उनका सभी इष्टजन थे, उनका जो मित्रों था, उनका परिवार जन था, उनसे मिलके उनका जो पेपर्स वगैरह ताम्र पत्र सब हम लोग ने निकाल के अभी पूरा ऑडियो विजुअल्स पूरा इतिहास हम लोग ने समेट लिया है। सिक्किम में 1973 से पहले उस समय में भी सिक्किम के लोग भारत के आंदोलन में, स्वाधीनता आंदोलन में किस तरह से भाग लिया करते थे, इस प्रश्न में हम लोग पूछ करते हैं। इसी दौरान में सावित्री देवी जो हेलेन लेप्चा है उनका संदर्भ में हम लोग ने काम किया है। वो विशेष करके मजदूरों को इकट्ठा करना, मजदूरों को स्वावलंबी कैसे बनाना, इस क्षेत्र में उन्होंने काम किया। सबसे पहले तो बीमारियों को देखा, दवाई औषधियां किया, उसके बाद में उन्होंने स्वावलंबी बनाने का काम किया। तब ये वो बड़ा स्वाभिमानी, वो तो निडर माता के रूप में परिचित है। उनका 3 नाम है। एक तो सबसे पहले नाम उनका हेलेन लेप्चा था। तो बाद में जाके ये नाम थोड़ा सा अंग्रेज का जैसा लगा, अंग्रेजी स्कूल से ये शिक्षित हुई थी, तो अंग्रेज का जैसा नाम होने के बाद में महात्मा गांधी ने उनको सावित्री देवी नाम दे दिया। तब उनका गांव में जो खरसांग और सिक्किम में उनका नाम साइली दीदी करके परिचित था। साइली मतलब होता है नेपाली भाषा में थर्ड, तीसरा होता है, तब साइली करके थर्ड करके साइली दीदी करके ऐसा नाम उस प्रसिद्ध हुई। तो उनको ताम्र पत्र भी मिला उस समय में स्वाधीनता संग्राम के, लेकिन वो थोड़ा सा समाज में वो ओझल हो गई, क्योंकि हमारा ऐसा है कि जो आगे निकल गए उनका इतिहासकारों ने समेट दिया, लेकिन जो ट्राइबल उन्होंने विशेष करके दुर्गम क्षेत्र में ही काम किया तो उनका नाम थोड़ा इतिहास में थोड़ा सा पीछे रह गया था। तो अभी बहुत अच्छा से उनका नाम आगे आ रहा है। सिक्किम में तो उनका नाम से मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है, तो और उनका कई रास्ता का नाम हेलेन लेप्चा का नाम से अभी बन रहा है।
0: वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी उन्होंने सक्रिय भाग लिया। स्वतंत्रता के बाद भी उन्होंने समाज सेवा का काम जारी रखा। 15 अगस्त 1972 को भारत सरकार ने उनके स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को सम्मानित करते हुए उन्हें ताम्र पत्र प्रदान किया। 18 अगस्त 1980 को हेलेन लेप्चा ने अंतिम सांस ली, लेकिन उनका जीवन आज भी हमें प्रेरणा देता है।
4: हेलेन लेप्चा, हिमालय की बेटी, आजादी की आवाज। अभी आपने ये लघु रूपक सुना। आलेख अंकुश रोनियार का था, वाचन स्वर प्रांजल।

स्वतंत्रता संग्राम केवल रणभूमि में लड़ी गई लड़ाई नहीं थी, ये घरों में लड़ी गई, विद्यालयों में लड़ी गई, लेखन और पत्रकारिता में लड़ी गई, गीतों और कविताओं में लड़ी गई। और इस संघर्ष में भारतीय महिलाओं ने अपनी विशिष्ट भूमिका निभाई। किसी ने आंदोलन का नेतृत्व किया, किसी ने जेल की यातनाएं सही, किसी ने भूमिगत रहकर क्रांतिकारियों की सहायता की, तो किसी ने अपने लेखन और विचारों से राष्ट्र की चेतना को जगाया। ऐसी ही कुछ साहसी महिलाओं की स्मृति को समर्पित है हमारी अगली प्रस्तुति, राष्ट्र जागरण की दीपशिखाएं, स्वतंत्रता संग्राम की अग्रणी महिला सेनानियां। आलेख और स्वर है प्रसारण कर्मी और प्राध्यापक बिंदु पांडे का।

0: जब हम स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं तो सबसे पहले स्मरण होती है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जिस अदम्य साहस का परिचय दिया वह भारतीय इतिहास की अमर गाथा बन चुका है। अंग्रेजी सत्ता के सामने उनका यह संकल्प, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, आज भी राष्ट्रीय स्वाभिमान का उद्घोष प्रतीत होता है। इसी संघर्ष की एक और तेजस्वी कड़ी बेगम हजरत महल। अवध की इस वीरांगना ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया और लखनऊ में विदेशी सत्ता को खुली चुनौती दी। स्वतंत्रता आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने वाली एक सशक्त आवाज थी सरोजनी नायडू। अपनी वोजस्वी वाणी और राष्ट्रवादी विचारों के माध्यम से उन्होंने हजारों महिलाओं को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा। वे मानती थी स्वतंत्र भारत का निर्माण तभी संभव है जब महिलाओं को समान अवसर और सम्मान प्राप्त हो।
1: I believe that I must disprove the age-old proverb that the woman has the last word and the longest word. I have the last word, no doubt, not because I am a woman, but because I'm acting today as the hostess of the Indian National Congress.
0: महात्मा गांधी के संघर्ष में एक मौन किंतु अत्यंत सशक्त शक्ति थी, कस्तूरबा गांधी। उन्होंने सत्य, अहिंसा और सेवा के आदर्शों को जीवन में उतारते हुए अनेक आंदोलनों में भाग लिया और जेल यात्राएं भी की। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि हर बड़े परिवर्तन के पीछे त्याग, धैर्य, समर्पण की एक शांत धारा भी बहती है। सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जब अधिकांश राष्ट्रीय नेता गिरफ्तार कर लिए गए, तब अरुणा आसफ अली ने ग्वालिया टैंक मैदान में तिरंगा फहराकर अंग्रेजी शासन को सीधी चुनौती दी। उनका साहस उस दौर के युवाओं के लिए प्रेरणा बना। स्वतंत्रता संग्राम की चेतना को जन जन तक पहुंचाने में साहित्य की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही और इस क्षेत्र में सुभद्रा कुमारी चौहान का योगदान अविस्मरणीय है। वो केवल एक कवित्री ही नहीं बल्कि सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी भी थी। असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्होंने जेल यात्रा की और राष्ट्रीय आंदोलनों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उनकी अमर कविता खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी ने भारतीय जनमानस में देशभक्ति और स्वाभिमान की ऐसी लौ प्रज्वलित की जिसने स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा प्रदान की। इसी आंदोलन के दौरान एक युवा महिला ने अपनी आवाज को स्वतंत्रता का हथियार बना लिया। यह थी उषा मेहता। उन्होंने गुप्त कांग्रेस रेडियो की स्थापना कर पूरे देश में स्वतंत्रता का संदेश पहुंचाया। जब अंग्रेजी सरकार समाचारों और सूचनाओं पर नियंत्रण स्थापित कर चुकी थी, तब उनके साहसिक प्रयासों ने स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा प्रदान की।
2: This is the Congress radio calling on 42.34 meter. Today we shall read to you a stupid reasoning of the CNC.
0: सुचेता कृपलानी ने भी स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने संगठनात्मक क्षमता और नेतृत्व कौशल का परिचय देते हुए भूमिगत आंदोलनों को सशक्त बनाया। बाद में वे स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी और यह सिद्ध किया कि संघर्ष से निकला नेतृत्व राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करता है। बंगाल की वीरांगना मातंगिनी हाजरा का बलिदान भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। 73 वर्ष की आयु में भी वे आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी। अंग्रेजों की गोलियां लगने के बाद भी उनके हाथों में तिरंगा नहीं छूटा और उनके मुख से वंदे मातरम का उद्घोष निरंतर निकलता रहा। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया, तब कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने रानी झांसी रेजिमेंट का नेतृत्व संभाला। उन्होंने महिलाओं को सैन्य प्रशिक्षण देकर यह स्थापित किया कि राष्ट्र रक्षा और बलिदान के क्षेत्र में स्त्रियां किसी से कम नहीं है।
3: नेताजी हमसे 5 घंटे बात किया, हमारे देश का और दुनिया के आधा हिस्सा को कैसे नजरअंदाज करें, यानी महिलाओं को। अगर महिलाओं को भी देश का प्रेम है, उन लोगों को आजादी का जरूरत है, इसलिए अब महिलाओं को भी हम लेने के लिए तैयार है, उनका भी एक फौज बनाएंगे।

अभी आपने सुनी लघु प्रस्तुति राष्ट्र जागरण की दीपशिखाएं। आलेख और स्वर था प्रसारण कर्मी और प्राध्यापक बिंदु पांडे का। इन दीपशिखाओं ने अपने समय को तो रोशन किया ही, आज भी उनका जीवन हमें ये याद दिलाता है कि परिवर्तन की शुरुआत अक्सर एक अकेले साहस भरे कदम से होती है। संस्कृति का संसार बहुत विस्तृत है। कभी वो करघे पर आकार लेता है, कभी किसी पुस्तक के पन्नों में, और कभी उन समुदायों की स्मृतियों में जीवित रहता है जिन्होंने प्रकृति और परंपरा के साथ सह अस्तित्व की अनूठी संस्कृति रची है। हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। ये दिवस भारतीय हथकरघा परंपरा और देश के बुनकरों के योगदान को सम्मान देने के साथ साथ स्वदेशी आंदोलन की उस ऐतिहासिक भावना की स्मृति से भी जुड़ा है जब 7 अगस्त 1905 को कोलकाता में स्वदेशी आंदोलन का औपचारिक आरंभ हुआ था।

किताबें हमारी स्मृति हैं और पुस्तकालय उस स्मृति का सार्वजनिक घर। हर वर्ष 12 अगस्त को राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस मनाया जाता है। ये दिन भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक डॉक्टर एस आर रंगनाथन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। पुस्तकालय केवल पुस्तकों का संग्रह नहीं बल्कि ज्ञान के संरक्षण और उसके प्रसार के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। और डिजिटल युग में भी वो पढ़ने, शोध और विश्वसनीय ज्ञान तक पहुंचने की संस्कृति को जीवित रखे हुए हैं। भारत की आदिवासी परंपराएं अपनी भाषाओं, लोक कथाओं, संगीत, नृत्य, कला और प्रकृति केंद्रित जीवन दृष्टि से बेहद समृद्ध हैं। हर वर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व के आदिवासी समुदायों के अधिकारों, उनकी सांस्कृतिक पहचान और उनके योगदान के लिए जागरूकता बढ़ाना है। करघे के धागों में बुनी हमारी हस्तशिल्प परंपरा, पुस्तकालयों में संरक्षित ज्ञान की दुनिया और आदिवासी समुदायों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ये तीनों मिलकर भारत की सांस्कृतिक विविधता का एक बेहद सुंदर और समृद्ध चित्र रचते हैं। और अब समय है उन विभूतियों के स्मरण का जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में भारत के सार्वजनिक और सांस्कृतिक जीवन को गहराई से प्रभावित किया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, उस्ताद अमीर खां, उस्ताद बिस्मिल्ला खां, राम किंकर बैज, वी एस गायतोंडे, जहांगीर सभावाला, फिरोज शाह मेहता, प्रफुल्ल चंद्र रे, पंडित रविशंकर शुक्ल और अभी हाल ही में दिवंगत हुए पंडित जगन्नाथ बेहरा। इन विभूतियों का स्मरण उन विचारों, कर्मों और सृजनात्मक ऊर्जा को याद करना है जिनसे हमारा सांस्कृतिक वर्तमान निर्मित हुआ। इन महान विभूतियों के अवदान को नमन करते हुए संपन्न होता है संस्कृति भारती का ये अंक। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री का शहनाई वादन। श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री शहनाई की प्रारंभिक शिक्षा श्री रंगाचारी काकंडिकी से प्राप्त की। उसके बाद श्री चन्वीर बन्नूर के मार्गदर्शन में लगातार 9 वर्ष तक शहनाई वादन की उच्च शिक्षा प्राप्त की। श्री चन्वीर बन्नूर डॉक्टर पंडित पुटराज गवाई के प्रमुख शिष्य थे। श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री कई पुरस्कारों से सम्मानित किए जा चुके हैं, जैसे कि कलाश्री पुरस्कार, कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार इत्यादि। श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री देश विदेश के कई प्रमुख संगीत सम्मेलन में अपना शहनाई वादन प्रस्तुत कर चुके हैं। आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ तबले पर श्री मले मलेश हुगार देसाई कल्लूर साथ दे रहे हैं।
1: This is Akashvani. In tonight's national program of music, we bring you a Shahnai recital by Shri Girimallappa Bhajantri. Shri Girimallappa Bhajantri started his initial training in Shahnai from Shri Rangachari Kakandaki. Later, for 9 years, he was under the able guidance of Shri Channaveera Bannur, a prominent disciple of Pandit Puttaraja Gavayi of Gadag. Shri Girimallappa Bhajantri is a recipient of many awards like Kalashri Award, Karnataka Rajyotsava Award, etc. He has performed in many important music festivals of India and abroad. In tonight's program, he is accompanied on the tabla by Shri Male Mallesh Hugar Desai Kallur.
0: Shri Girimallappa Bhajantri apne karyakram ka prarambh rag Rageshri se kar rahe hain. Isme do bandishe japtal aur द्रुत तीन ताल में निबद्ध है। सुनिए राग रागेश्री।
1: श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री बिगिन्स हिज शहनाई रिसाइटल विद राग रागेश्री इन विच ही इज प्रेजेंटिंग टू कंपोजिशंस सेट टू झपताल एंड द्रुत तीन ताल।

0: अब तक आप सुन रहे थे राग रागेश्री, आइए अब सुनते हैं राग जोग।
1: That was राग रागेश्री। श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री विल नाउ प्रेजेंट राग जोग।

0: अब तक आप सुन रहे थे राग जोग। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब संपन्न होता है, जिसमें आप सुन रहे थे श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री का शहनाई वादन। आपके साथ तबले पर श्री मले मलेश हुगार देसाई कल्लूर साथ दे रहे थे।
1: That was Raag Jog. With that, we come to the end of tonight's national program of music, in which you were listening to Shahnai recital by Shri Girimallappa Bhajantri, and he was accompanied on the tabla by Shri Male Malesh Hugar Desai Kallur.
0: यह कार्यक्रम आकाशवाणी के धारवाड़ केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: This program was recorded earlier in the studios of Akashvani Dharwad and relayed from Akashvani Delhi.

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही देर बाद आप ठीक 11 बजे सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौती का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभाती है।
1: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता की पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने IIT दिल्ली में उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया है। मुंबई में आज सहकार नव क्रांति कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि डिजिटल लेन देन में धोखाधड़ी बढ़ रही है और बैंकिंग सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत फॉरेंसिक सहायता की आवश्यकता है। श्री शाह ने बताया कि राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम तथा राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
2: आज हमारे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन और NFSU फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ जो समझौता हुआ, इससे हमारी छोटी सी छोटी बैंक की हर ब्रांच में भी ये सारी सुविधाएं बहुत कम लागत में देने का काम अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन करेगा। इससे साइबर सुरक्षा, डिजिटल फॉरेंसिक कर्मचारियों का इस दोनों क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान, ये सभी व्यवस्था एक साथ बैंक इन बॉक्स से हो जाएगी।
0: सहकारिता मंत्री ने एक सुरक्षा संचालन केंद्र का भी शुभारंभ किया। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली कैश फ्री पेमेंट्स डार्विन डायनेमिक्स, वर्ल्ट इंडिया, कार्स 24 और काउंसिल फॉर स्टार्टअप के साथ भी समझौता किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्टार्टअप के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के लिए UPI निःशुल्क रहेगा और सभी व्यक्तिगत लेन देन निःशुल्क बने रहेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि UPI के माध्यम से भुगतान करते समय उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार का लेन देन शुल्क नहीं देना होगा, जबकि अधिकांश व्यापारी लेन देन भी निःशुल्क रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यदि व्यापारी छूट दर शुल्क लागू किया जाता है तो ये केवल एक निश्चित सीमा से अधिक के सीमित व्यापारी लेन देन पर नाम मात्र दर से लागू होगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कहा कि ईरान कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य नहीं होगा। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलकों ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीते। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। आज राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में तेज बारिश हुई, राजधानी में कल सुबह भी बारिश की संभावना है। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।